0: वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां।

आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती की आप न्यूज ऑन AIR पर प्रातः के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

101.9 FM बैंड और प्रसार भारती की आप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की छठवीं तिथि तदनुसार 27 जून 2026 प्रातः के 5:58 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है इस मंगल धुन के साथ।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा बल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्बिनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे। वो वहां भारत वंशियों से भी मिलेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मैत्री और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी दृष्टि पत्र जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ गुजरात में करेंगे। कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और भारत टैक्सी से जुड़े 4,000 से अधिक सारथी शामिल होंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा को साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देशभर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए और उसके तटवर्ती राडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं को संकेत दिया था कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी।

0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिण लेबनान से हटने के निर्देश शामिल हैं। आयरलैंड के बेलफास्ट में टी20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए, जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। एफआईएच पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल रात भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। फीफा विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से पराजित किया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड पर। आइए सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों को हमारे मुंबई केंद्र से।

चिंतन। महर्षि वाल्मीकि का कथन है, किसी भी मनुष्य की इच्छा शक्ति अगर उसके साथ हो तो वो कोई भी काम बड़ी आसानी से कर सकता है। इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प मनुष्य को रंक से राजा बना देती है। भक्ति संगीत

सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव।

विविध रंगों की दाल पर आप हैं विविध भारती के संग। झरोखा सुनिए आज दिन भर के कार्यक्रमों का लेखा जोखा।

अब से कुछ देर बाद आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का अनाज भाग 232। संगीत सरिता में चल रही है श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। कलाकार हैं वायलिन वादक SL कंटारा। आज सुनिएगा 10वीं कड़ी, प्रस्तुति मनीषा जैन की, सुबह 7 बजे भूले बिसरे की। 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। 8:15 पर त्रिवेणी सुनिएगा। 8:30 पर चित्रलोक। 9:30 और 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित होगा संगीतकार राहुल देव बर्मन पर। सुबह 10 बजे पिटारा के अंतर्गत होगी गीतों भरी कहानी। आज की कहानी है उन दिनों की बात है, लेखक और वचन स्वर अरुण शेखर का।

11 बजे चित्रपट संगीत, 11:30 पर मैटिनी शो। मैटिनी शो के अंतर्गत चित्र भारती प्रसारित की जाएगी। 12:05 पर यादों की महफिल, 1 सुरीला सफर। दिन में 2 त्रिवेणी, 2:30 पर सदाबहार नगमे। 3 मनचाहे गीत। 3:30 पर नाट्य तरंग के अंतर्गत आप सुनेंगे नाटक कटीला रास्ता, इसका पहला भाग। मूल तमिल लेखक नित्यमूर्ति, हिंदी अनुवादक ए शौर्य राजन, निर्देशक वीपी दीक्षित बटुक। पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज में गीतकार सुधाकर शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग आज शाम 4:00। 5 छाया गीत, 5:30 पर तराने नए पुराने। 6:05 पर तराने नए पुराने कार्यक्रम जारी रहेगा। 6:35 पर संध्या रंजन। 6:45 पर संगीत सरिता के अंतर्गत वायलिन का विहंगम संसार, 10वीं कड़ी। जाने माने संगीतकार आरडी बर्मन द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला सुनवाई जाएगी शाम 7:00। 7:45 पर जिज्ञासा। 8 हवा महल के अंतर्गत सुनो कहानी श्रृंखला में मुंशी प्रेमचंद की कहानी नशा,

वाचन अमरकांत दुबे का, प्रस्तुति हर्षवर्धन कवई की। 8:15 पर चित्रलोक, 9:00 आपके लिए, 9:30 पर आज के फनकार आर डी बर्मन पर केंद्रित, 10:00 छाया गीत, 10:30 पर ढलती जाए रात, 11:00 चित्रपट संगीत और मैटिनी शो।

चित्रकूट की सभा में गुरुजन, मातृत्रय तथा अयोध्यावासियों की उपस्थिति में भरत श्री राम के सम्मुख अपने अंतरतम के उद्गार प्रकट कर रहे हैं। उन्हें इस बात की प्रतीति है कि अपने हितैषियों, बुद्धिमान जन तथा स्वामी के सामने अधिक नहीं बोलना चाहिए। श्री राम के प्रति भरत का स्नेह और समर्पण देखकर उपस्थित समुदाय प्रेमातिरेक से शिथिल पड़ जाता है। स्वयं श्री रघुनाथ जी सम्मान भरे वचन के साथ उनका हाथ पकड़ अपने पास बिठा लेते हैं।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रेकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की 10वीं और अंतिम कड़ी,
1: वायोलिन का विहंगम संसार। श्रृंखला की इस अंतिम कड़ी में हम स्वागत करते हैं सभी श्रोताओं का और जाने माने वायोलिन वादक पंडित एसएल कंडारा जी का। पंडित जी, आज इस अंतिम कड़ी में आपके गुरुजी श्रद्धेय पंडित राम नारायण जी के बारे में बात करेंगे।
2: बिल्कुल।
1: और चर्चा करेंगे राग भैरवी की भी।
2: जयंत जी, आपको बताना चाहता हूँ कि भैरवी कई शेड्स में मेरे गुरुजी ने बजाई है।
1: जी जी।
2: उसके विविध रूपों का प्रकटीकरण उनके वाद्य में हुआ।
1: हाँ।
2: उनका वाद्य तो आप जानते ही, सारंगी है, और सारंगी गज के वाद्यों में मदर इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है।
1: जी बिल्कुल।
2: मतलब वायलिन, चेलो, ये सब गज के वाद्य हैं, इसराज वगैरह। बट सारंगी इज ऑन टॉप ऑफ एवरी इंस्ट्रूमेंट।
1: जी।
2: और पंडित राम नारायण के बारे में मैं कुछ कहूंगा तो आप कहेंगे चूंकि मैं उनका शिष्य हूँ इसलिए उनको टॉप पे रख रहा हूँ, लेकिन दुनिया उनको टॉप मानती है। तो उन्होंने भैरवी बहुत अच्छे ढंग से अलग अलग शेड्स में बजाई है, लेकिन मैं जिक्र करना चाहता हूँ उनकी भैरवी से पहले एक और वाक्य का, कि जो श्रोताओं को भी शायद उनके इन्फॉर्मेशन के लिए ऐड करेगा। वो वाक्य ये है कि पंडित जी जब फिल्मों में बजाते थे
1: जी,
2: तो वो फिल्म थी जो दो हंसों का जोड़ा, गंगा जमुना, उस फिल्म की रिकॉर्डिंग का प्रोसेस चल रहा था, तो नौशाद साहब को लगा कि ये दो हंसों का जोड़ा उन्होंने भैरवी में बनाई
1: जी,
2: ये गीत।
1: हाँ जी।
2: तो ये किसका लिखा हुआ गीत है?
1: शकील बदायूनी साहब का।
2: अच्छा, देखिए, एक से एक उम्दा लेखक थे उस समय, एक से एक उम्दा संगीतज्ञ संगीतकार थे
1: जी,
2: और उनके साथ जो टीम बनती थी उसमें क्या क्या लोगों ने बजाया। पंडित राम नारायण, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित शिव कुमार शर्मा, और भी पहले अली अकबर खान साहब वगैरह, उन्होंने भी बजाया फिल्मों में
1: जी,
2: पंडित रविशंकर ने भी बजाया। तो क्या कैटेगरी के लोग थे उस समय जिन्होंने फिल्मों में कंट्रीब्यूट किया म्यूजिक, और इस वजह से फिल्म म्यूजिक जो है बहुत रिच हुआ, उसमें बड़ी संपन्नता आई।
1: जी हाँ जी।
2: एक जिक्र करना चाहता हूँ मैं कि किस तरह से

0: पुराने म्यूजिक डायरेक्टर अपने उस्ताद संगीतज्ञों का उपयोग करते थे
1: जी।
0: मेरे गुरुजी ने बताया कि दो अंशों का जोड़ा जो फिल्म गंगा जमुना का जो गीत है हाँ। उन्होंने नौशाद साहब ने बनाया, तो गुरुजी को कहा कि आप आ जाइए, ये गीत मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। गुरुजी अपनी सारंगी लेके पहुंचे और उन नौशाद साहब के घर पे पहुंचे तो उन्होंने गीत सुनाया और उन्होंने कहा पंडित जी इसमें मैं चाहता हूँ कि कुछ सारंगी के पीसेस रिकॉर्ड हो जाएं।
1: हाँ।
0: तो गुरुजी ने कहा कि आप बताइए मैं क्या बजाऊं, नोटेशन बता दीजिए
1: जी।
0: तो देखिए बड़े लोग जो होते हैं वो ऐसे ही बड़े नहीं हो जाते हैं। नौशाद साहब ने कहा कि मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, सारंगी के आप विद्वान हैं और भैरवी का गाना है लता जी ने गाया है और अब इससे ज्यादा आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और गुरु जी ने बैठ के कुछ घंटे भर में वो तीन चार जो भी पीसेस हैं बनाए, एक से एक उम्दा अद्भुत पीसेस हैं वो
1: बेशक,
0: और रिकॉर्ड किए, रिकॉर्ड हुए। देखिए क्या शऊर था लोगों का, म्यूजिक डायरेक्टर्स का क्या स्टेटस था उस जमाने में, कि वो उस व्यक्ति को पहचानते थे कि ये क्या काबिलियत रखते हैं। आज के मामले में ऐसा संभव नहीं है। वो जमाने में गुलाम अली खान साहब ने कंट्रीब्यूट किया, आमिर खान साहब ने कंट्रीब्यूट किया, डीवी पलुस्कर साहब ने कंट्रीब्यूट किया, किन किन लोगों ने फिल्म म्यूजिक में हिस्सा लिया, वो लुप्त हो गया, पूरी परंपरा लुप्त हो गई। और ये जो गीत आज जब भी बजता है दो अंशों का जोड़ा, तो बरबस ही कोई भी व्यक्ति पानी की दुकान पे हो, चाय की दुकान में हो, बाजार में हो, खड़ा खड़ा जब तक पूरा नहीं सुन लेता तब तक आगे नहीं हिलता। तो ये फिल्म संगीत का कैटेगरी और एक स्टेटस था, और मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि वो स्टेटस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर्स के भी थे। नौशाद साहब गुरुजी को छोड़ने आए कार तक और गेट खोल के उनको कार में बिठाया, और ये होता नहीं आजकल। तो ये संपन्नता जो संगीत की है वो इस पीढ़ी के साथ लगभग चली गई, जिसका मुझे भी दुख है, आपको भी दुख है, और सब हम सब लोग उसको मिस करेंगे। मेरा कहना है कि इस गीत के अलावा गुरुजी का एक रिकॉर्ड अगर आप भैरवी का लग सके
1: जी
0: तो श्रोताओं को जरूर सुना दीजिए
1: अवश्य।

0: पंडित राम नारायण की बजाय सारंगी पर ये थी राग भैरवी की झलक। और अब राग भैरवी पर आधारित पंडित जी अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं वही गाना, दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गए जी।
1: वाँ वाँ।
0: फिल्म का नाम है गंगा जमुना।
1: बिल्कुल।

0: भैरवी राग पर आधारित फिल्म गंगा जमुना का ये गीत आप सुन रहे थे श्रोताओं, लता जी के स्वर में, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत, और इसी के साथ वायोलिन का विहंगम संसार, ये श्रृंखला आज यहाँ समाप्त हो रही है। हम विविध भारती परिवार की ओर से, सभी संगीत प्रेमी सुनने वालों की ओर से वायोलिन वादक पंडित SL कंडारा जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, विविध भारती का और श्रोताओं का, जिन्होंने हमारे साथ रह के ये पूरी श्रृंखला सुनी, उन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: वायलिन का विहंगम संसार। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 10वीं और अंतिम कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वायलिन वादक पंडित SL कंडारा। आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने। तबला संगति संतोष मिश्रा की। श्रोताओं, इस श्रृंखला में तकनीकी सहयोगी निखिल धामापुरकर और वंदना ठाकुर।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

0: जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना वासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

आइए सुने भूले बिसरे गीत। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और 27 जून का ये दिन बहुत ही खास दिन होता है संगीत के दीवानों के लिए, एक संगीतकार की याद का दिन। 1939 था वो साल जब भारत अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था। कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया राहुल, लेकिन आगे चलकर वो पुकारने के नाम से कहलाया पंचम, और उसके बाद फिल्म संगीत का एक अनमोल सितारा बन गया।

साल 1961 था। महमूद ने एक फिल्म बनाई छोटे नवाब, और इस फिल्म के जरिए आए म्यूजिक की दुनिया के छोटे नवाब यानी राहुल देव बर्मन। बाकायदा डेब्यू हुआ और लता मंगेशकर के साथ हुआ। शैलेंद्र के बोलते घर आजा, घिर आए बदरा सांवरिया। और जरा सोचिए कि एक ऐसा आगाज हुआ जिसकी प्रोग्रेशन का अंदाजा नहीं था, यानी ये यात्रा अपने उन्नत रास्तों पर पहुंचकर कहां चली जाएगी ये लोगों को अंदाजा नहीं था, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआती संगीत था। आर डी बर्मन ने एक एक कदम आगे बढ़ाए। उनके कुछ शुरुआती गाने हैं आज बोले बिसरे गीत कार्यक्रम में। फिल्म का नाम है भूत बंगला, फिर से लता मंगेशकर की आवाज है, इस बार बोल हसरत जयपुरी के।

1965 में आई फिल्म भूत बंगला का ये गाना आपने सुना। हसर जयपुरी के बोल थे, आर डी बर्मन की तर्ज थी। हसर जयपुरी आर डी बर्मन अनयूजुअल पेयर, दोनों ने संभवतः यही एक फिल्म एक साथ की थी। और आपको बता दें कि भूत बंगला महमूद के निर्देशन वाली फिल्म थी और बहुत ही अनमोल फिल्म और बहुत ही अनयूजुअल अलग तरह का विलक्षण शानदार संगीत है। एक एक गाना अपने आप में कमाल। पंचम पर केंद्रित है आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। और अब तीसरा कौन फिल्म का गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, आनंद बख्शी के भूल हैं और आर डी बर्मन का संगीत। संभवतः यहां से आनंद बख्शी के साथ राहुल देव बर्मन की एक यात्रा शुरू होती है।

तीसरा कौन फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें थी, आनंद बख्शी के बोल, संगीत आर डी बर्मन का था। 1965 में ये फिल्म आई थी। आज पुल बिस्तरी गीत कार्यक्रम में कुछ बातें पंचम की और अभी एक छोटा सा अंतराल।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन AIR पर। सुबह के 7:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। श्रोताओ, आइए आपको हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी दे दें। अब से कुछ ही देर में ठीक 7:20 पर सुनिए प्रादेशिक समाचार हमारे गोरखपुर केंद्र से। भक्ति संगीत के कार्यक्रम अमृत कलश का समय होगा प्रातः 7:30 से। कार्यक्रम सुर संगम का समय होगा 8:15 से व प्रणाम अयोध्या आप सुनेंगे प्रातः 8:30 से। प्रणाम अयोध्या के अंतर्गत आज की बात का विषय होगा अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस। साथ ही सुनेंगे कार्यक्रम में एक झलकी यस सर। इसके अलावा कार्यक्रम में होंगे कुछ एक गीत और जानेंगे शहर की कुछ स्थानीय खबरें समाचार पत्रों के माध्यम से। आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम का समय होगा 9:00 से और बातें आसपास की आप सुनेंगे प्रातः 9:30 से। सुबह 10:00 से आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों को। अवधि लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग आप सुन सकेंगे 12:30 से। हेलो अयोध्या का समय होगा दिन में 1:00 से। 1:30 से होगा कार्यक्रम कुछ तुमने कहा और दिन में 2:00 से समय होगा गीतांजलि कार्यक्रम का। बहने सुनेंगी अपना कार्यक्रम नारी जगत 2:30 से, जिसमें आज सजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो सहेली होगा। हमारा आज का विषय होगा क्या आप कर रही हैं अपने स्मार्टफोन का स्मार्ट उपयोग। साथ ही आप सुन सकेंगे कार्यक्रम में कुछ एक गीत। दिन में 3:00 से सुनिए केंद्रीकृत विविध भारती सेवा के कार्यक्रमों को। हमारे युवा श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम युवाड़ी शाम 5:00 से, जिसमें आज सुनेंगे चर्चा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस। हमारी धरोहर के अंतर्गत हुमायूं का मकबरा दिल्ली और आर्थिक जगत में जानेंगे कूल एडिंग। साथी होगा कुछ एक गीत। लोक संगीत का कार्यक्रम होगा शाम 5:30 से और शाम सुहानी 6:10 से आप सुनेंगे। गुंजे स्वर गांव के कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 6:30 से। किसानवाड़ी कार्यक्रम का समय होगा 6:45 से, जिसमें आज चर्चा होगी मृदा परीक्षण से लाभ। साथी होगी भेंटवार्ता मृदा एवं बीज जनित रोग कारण लक्षण और बचाव। वार्ताकार होंगे डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद चौधरी और भेंटकर्ता हैं अशोक कुमार। इसके अलावा एक और भेंटवार्ता सुनिएगा सिंचाई और डिजिटल खेती। वार्ताकार होंगे श्री अरविंद सिंह, इनसे बातचीत की है राम प्रकाश पांडे ने। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों को सुनिएगा 7:30 से। 8:15 से आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही कलाकार और रात्रि 9:15 से कार्यक्रम होगा महफिले गजल। हेलो अयोध्या का समय होगा रात्रि 9:30 से और रात्रि 10:30 से सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों को। इसके अलावा समाचारों का अनुप्रसारण होगा अपने निर्धारित समय से। ये तिथि हमारे आज प्रसारित होने का वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिन्हें हम अपने गोरखपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
2: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
1: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
2: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
1: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
4: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकेत अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में देरी पर व्यक्त की नाराजगी, प्रदेश सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का दिया आदेश। श्री राम मंदिर के दान और चढ़ावा मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपितों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया जेल। मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट। नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का किया आह्वान। और प्रदेश में भीषण गर्मी से राहत मिलने के संकेत, कल रात से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रवेश करेगा मानसून। और अब समाचार विस्तार से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में पंचायत चुनाव में देरी तथा प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने वाले आदेश पर नाराजगी व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निश्चित है और किसी भी हाल में 5 साल खत्म होने से पहले अगले चुनाव सम्पन्न हो जाने चाहिए। ये टिप्पणी न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने अरविंद राठौर की याचिका पर सुनवाई करते हुए की है। याचिका में राज्य सरकार के 25 और 26 मई 2026 को जारी उन आदेशों को चुनौती दी गई है जिसके तहत यूपी पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12(3)(a) का हवाला देकर चुनाव टाल दिए गए और प्रधानों को प्रशासक के रूप में काम जारी रखने की अनुमति दी गई। अयोध्या के श्रीराम मंदिर दान और चढ़ावा मामले में कथित अनियमितताओं के आरोप में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों को कल स्पेशल रिमांड मजिस्ट्रेट निवेदिता सिंह की अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 29 जून तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्र, सुभाष श्रीवास्तव और श्री राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू शामिल हैं। श्रीराम मंदिर में चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित एसआईटी की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने एफआईआर दर्ज कराई है। आरोपियों को जेल भेजे जाने के बाद अभियोजन अधिकारी केसी वर्मा ने बताया कि सुभाष को छोड़कर बाकी आरोपियों से कुल मिलाकर 79,85,000 रुपये से अधिक की रकम बरामद की गई है। आरोपियों को 29 जून को एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रीराम मंदिर तीर्थ क्षेत्र दान मामले में एफआईआर दर्ज होने और 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद कहा कि आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मामले में एसआईटी की रिपोर्ट आते ही कार्रवाई शुरू हो गई है। कल देवरिया में 465 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 106 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन आस्था के साथ जो खिलवाड़ करेगा वो भुक्त भोगी होगा।
1: जन आस्था के साथ खिलवाड़ न हो। मैं 19 जून को अयोध्या के दौरे पे था। मैंने तब भी कहा था, अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। और अयोध्या के बारे में जो कतिपय समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा, एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे।
0: मुख्यमंत्री ने देवरिया में विकास की चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश का नौजवान जो पहले नौकरी के लिए पलायन करता था, आज वो अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ अपने क्षेत्र को दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुरक्षित माहौल के चलते निवेश आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में एक निजी एस्ट्रोमेडिक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना

0: संचालित हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 12 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं।
1: भारत आज के दिन पे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा की स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में आयुष्मान भारत की संचालित कर रहा है। आयुष्मान भारत उत्तर प्रदेश सरकार ने जो क्षेत्र जो तबके छूटे हुए थे उन लोगों को इसके साथ कवर किया है। आज के दिन पे लगभग 12 करोड़ से ऊपर लोगों को फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर कर दे रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री ने राज्य में 2017 से पहले स्वास्थ्य सुविधाओं की खराब स्थिति के लिए तत्कालीन सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने वर्तमान सरकार में चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र के उन्नयन का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनवा रही है। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2026 से 2029 की अवधि के लिए कल मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रूपये है। इस अवसर पर गृहमंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
2: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रदेश ने सोलर रूफटॉप स्थापना में नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश में अग्रणी राज्य के रूप में अपनी पहचान मजबूत की है। जून 2026 में आयोजित प्रगति समीक्षा बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अब तक 6,00,000 से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का लाभ दिया जा चुका है। यूपी नेडा के डायरेक्टर रविन्द्र सिंह ने बताया कि देश में कुल सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 17% है और यह देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है। मुहर्रम की 10वीं तारीख यौमे आशुरा के मौके पर कल प्रदेश भर में ताजिया जुलूस निकाले गए। ये दिन पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मनाया जाता है। जुलूसों के बाद देर रात तक करबला में ताजियों को दफन किया गया। लखनऊ स्थित तालकटोरा की करबला में बड़ी संख्या में लोगों ने इमाम हुसैन को याद किया। 10वीं मुहर्रम पर गोरखपुर में भी कल सुबह से ही ताजिया जुलूसों के निकलने का सिलसिला शुरू हुआ जो रात भर चलता रहा। एक रिपोर्ट।
3: मुहर्रम की 10वीं तारीख पर महानगर के सभी इमाम चौकों पर बैठाए गए ताजिए के साथ अकीदत मंदों ने जुलूस निकाला और करबला पहुंचकर ताजियों को करबला में दफन किया। इमाम चौकों पर रखे गए बड़े ताजिए जुलूस में शामिल हुए। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर।
0: मथुरा, सुल्तानपुर, फरुखाबाद, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, हमीरपुर, जौनपुर, उन्नाव, हापुड़ और महाराजगंज सहित राज्य के सभी जिलों में ताजिया जुलूस निकाले गए। इस अवसर पर प्रदेश भर में ताजिया जुलूस मार्गों और करबलाओं के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। प्रदेश में भीषण गर्मी से राहत मिलने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार कल रात से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मानसून प्रवेश करेगा। इसके बाद 30 जून से 3-4 दिनों तक प्रदेश भर में गरज चमक के साथ व्यापक वर्षा होने की संभावना है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में देरी पर व्यक्त की नाराजगी। प्रदेश सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का दिया आदेश। श्री राम मंदिर के दान और चढ़ावा मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपितों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया जेल। मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट। नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का किया आह्वान। और प्रदेश में भीषण गर्मी से राहत मिलने के संकेत। कल रात से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में

0: में प्रवेश करेगा मानसून। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
2: यदि युवा को ही रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
1: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम भक्ति संगीत का अमृत कलश।
4: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
5: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
6: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना एरिया माना। हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
7: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
8: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने। बीज तो कब के बो दिए।
7: मैं फसल की नहीं NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
8: मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
7: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रूपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
9: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
10: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

अमृत कलश कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम में। और कार्यक्रम की शुरुआत आइए करते हैं विपिन सचदेवा के गाए इस भक्ति में संगीत के साथ।

0: अवध क्षेत्र का सबसे विश्वसनीय आंखों का अस्पताल, आपका अपना श्रीराम नेत्रालय, अब नियावा रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद में भी उपलब्ध। 60,000 से भी अधिक सफल मोतियाबिंद ऑपरेशन का अनुभव वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर पूजा थापर एवं डॉक्टर संजीव थापर द्वारा संचालित। यहां उपलब्ध है अत्याधुनिक रेटिना एवं ग्लूकोमा क्लिनिक की सुविधाएं। साथ ही ये अयोध्या का पहला एसिलॉर एक्सपर्ट ऑप्टिकल सेंटर है, जहां चश्मे की जांच की जाती है विश्व स्तरीय ऑटो फोरॉप्टर एवं आई रूलर मशीन द्वारा। बच्चों के लिए खास मायोपिया कंट्रोल क्लिनिक की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आंखों की हर समस्या के लिए श्री राम नेत्रालय, पता नियावा रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद। कॉल करें 91-16-76-47-46।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टीसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: तेज धूप और बढ़ती गर्मी इंसानों के साथ साथ बेजुबान पशु पक्षियों के लिए भी मुश्किल समय लेकर आती है।
4: आइए इन पशु पक्षियों के लिए घर के बाहर और छत पर किसी खुले बर्तन में स्वच्छ पानी और चिड़ियों के लिए दाना रखें।
3: अपने घर के आसपास जानवरों को पानी और भोजन दें, शेड लगाकर छांव की व्यवस्था करें और घायल पशु पक्षियों की मदद करें।
4: आपकी छोटी सी पहल इन बेजुबान पशु पक्षियों की जिंदगी बचा सकती है।
3: आइए इस गर्मी इंसानियत दिखाएं,
4: जीव जंतुओं और पशु पक्षियों का ध्यान रखें।
3: छोटा सा प्रयास, बड़ा उपकार।
4: पशु पक्षियों और जीव जंतुओं से ही सजे ये संसार।
5: सुनत है सखी, सुनत है कार्यक्रम मंगनामा होए वाला है का खास?
6: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुनत है। अब फरमाइशी लोकगीत, लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
5: हाँ, जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
6: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
7: लोक सुरमाला, आपकी पसंद।
8: दोस्तों, अंतराल के बाद हाजिर है कार्यक्रम अमृत कलश लेकर आपके साथ और कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं सुरेश वाडेकर के स्वर में ये भक्तिमय प्रस्तुति।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए 3 दिन की राजकीय यात्रा पर आज रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंप ग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी गई। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगातार 17 मैच में बढ़त का सिलसिला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हार कर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हारमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी बद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
2: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: श्री गोयल ने इस समझौते के माध्यम से नए अवसर खुलने के साथ ही दोनों देशों के व्यवसायियों को सहयोग बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और साझा समृद्धि के लिए निवेश करने को आमंत्रित किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे।
3: अमूल, इफको और नाबार्ड जैसी 8 प्रमुख सहकारी संस्थाओं के सहयोग से सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा विकसित भारत टैक्सी 0 कमीशन मॉडल पर काम करती है, ताकि कमाई का अधिकतम हिस्सा सीधे चालकों को मिल सके। पिछले साल दिसंबर में इसकी प्रारंभिक शुरुआत के बाद से अकेले गुजरात में 1.5 लाख से अधिक चालक और 7 लाख से अधिक ग्राहक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जहां हर दिन 3,500 से अधिक सफर पूरे किए जा रहे हैं। यह सेवा गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा सहित 14 प्रमुख शहरों में आज से शुरू की जाएगी। अगले एक महीने में पूरे राज्य में इसका विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के

0: साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा कार्बन मुक्त और विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने में सक्षम है। ये बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ये हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
1: अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया है। राहत सामग्री में चिकित्सा कर्मी, भारतीय सेना की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। राष्ट्रपति रोड्रिगेस ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान ने उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। इस बीच ईरानी सेना की प्रवक्ता इब्राहिम अल फिकार ने कहा कि इस बार अमेरिकी हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि ईरान माकूल जवाब के लिए सही समय और स्थान का चुनाव करेगा। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाए जाने की बात कही थी। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा जारी की है। इस समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला की हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीकी मध्यस्थता में समझौते की रूपरेखा इसराइल सरकार और लेबनान के बीच तय हुई है। श्री रूबियो ने इसे शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया।
2: Today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and security.
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य गांवों के विकास और साझा रणनीति तैयार करेंगे। चर्चा में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे पर बातचीत प्रस्तुत की जाएगी। अंबिकापुर नगर निगम का ये कैफे प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम में गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
3: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
4: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
5: हमारे यहाँ टोटल कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचरे का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों का गार्बेज कैफे वर्ल्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया।
6: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। ये न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसका पुनः प्रसारण कल सवेरे 9:10 पर होगा। और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
7: FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। लंदन में मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई।

0: लेकिन दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने चार और गोल किए। चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने टीम के लिए सातवां गोल किया। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। उधर आयरलैंड के बेलफास्ट में पहले टी20 क्रिकेट मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बीच फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया। नॉर्वे नॉकआउट में पहुंच गया है, जबकि सेनेगल अगले राउंड में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। इसके अलावा उरुग्वे भी स्पेन से हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और कैबो वर्दे तथा सऊदी अरब का मैच बिना गोल के ड्रॉ रहा। ग्रुप जी में न्यूजीलैंड और बेल्जियम तथा मिस्र और ईरान कुछ देर बाद आमने सामने होंगे।
1: जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह के मादक पदार्थ नियंत्रण पर दृष्टि पत्र जारी करने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने गृहमंत्री के हवाले से लिखा है, देश से नशे का कारोबार 3 वर्षों में खत्म कर देंगे। पत्र के अनुसार 100 बड़े गिरोहों को समाप्त करने के लिए केंद्र ने रणनीति तैयार की। पंजाब केसरी के अनुसार 3 सूत्री रणनीति पेश, पता लगाओ, बाधित करो और नष्ट करो। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य देते हुए लिखा है, एआई को जिम्मेदारी के साथ अपनाना विकसित भारत के लिए जरूरी, इससे एआई आधारित उपकरणों का उपयोग करके बढ़ाई जा सकती है कार्यकुशलता। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला की मदद को भारत ने शुरू किया ऑपरेशन अमिस्ताद, सेना की विशेष राहत टीम भेजी गई। पत्र के अनुसार भूकंप में मृतक बढ़कर 920 हुए, 3000 घायल और 50,000 लापता। अमर उजाला के अनुसार त्रासदी के बीच गूंजी किलकारी, मलबे में बच्चे का जन्म। लोकसत्य ने भूकंप के खतरे और हम शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वेनेजुएला में कुछ ही सेकंड में 2 बड़े भूकंप में हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। पूरे विश्व में भूकंप की स्थिति भयावह होती जा रही है और अपना भारत भी खतरे की जद में है। दैनिक जागरण के अनुसार बंगाल में लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन मतांतरण के विरुद्ध बनेगा कानून। मुख्यमंत्री शुभेंदु बोले, बंगाल की धरती पर राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं। अमर उजाला की सुर्खी है, श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तय, आरोपियों से मिले 80 लाख रुपए। हिंदुस्तान ने मंदिर और दान की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, चढ़ावा चोरी करने वालों को दंड मिलना ही चाहिए, राम के मंदिर में हर व्यवहार राम भाव से ओतप्रोत होना चाहिए, राम जी की सेना या सेवा में चोरों का क्या काम। राजस्थान पत्रिका ने मिट्टी की पुकार शीर्षक से लिखा है, 94 वर्ष की उम्र में आंध्र प्रदेश की महिला ने छोड़ी अमरीकी नागरिकता, कहा मुझे अमरीकी नहीं भारतीय नागरिक बनकर मरना है। देशबंधु ने आर्थिक पृष्ठ पर जताया है, भारत के इंजीनियरिंग निर्यात ने बनाया रिकॉर्ड, मई में पहली बार छुआ $12 अरब का आंकड़ा।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए आज सेशल्स की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंप ग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हारकर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड पर। प्रातः के 8:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर संगम।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
0: कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और श्रोताओं, ये कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवाते हैं नुसरत फतेह अली खान की आवाज में ये प्यारा सा गीत।

आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।

अंतराल के बाद हाजिर है कार्यक्रम सुर संगम लेकर आपके साथ हो। कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में ये प्यारी सी गजल।

0: प्रणाम अयोध्या।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: बीएड, डीएलएड, बीटीसी, डीएचपी, डीफार्म, बीफार्म और जीएनएम जैसे कोर्सेज में प्रवेश प्रारंभ है। संपर्क करें विदुषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, गौड़ा बसंतपुर, कटेहरी, अंबेडकर नगर। प्रवेश के लिए कॉल करें 9005141838। सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
3: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
2: अब ECHS से इम्पैनल्ड। आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।
3: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
2: कैशलेस इलाज। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियामा, अयोध्या। कॉल करें 6386907006।
4: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीद है नए भारत की।
5: नहीं अछूता हो जिस
4: महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं मन की बात।
2: आंखों के पर्दे की समस्या, मोतियाबिंद, लेजर चिकित्सा या मोटे चश्मों से छुटकारा, 20 वर्षों से आपका अपना सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट, नियावा, फैजाबाद, अयोध्या। आंखों की सभी समस्याओं का आधुनिक और बेहतर उपचार, हजारों आंखों को नई रोशनी देने वाले प्रख्यात नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल द्वारा संचालित सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट, नियावा, फैजाबाद, अयोध्या। फोन करें 9838100840।
6: प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम में, और साथ ही स्वीकार कीजिए प्रविता का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सफलता का रहस्य बड़ा सोचना नहीं बल्कि उस सोच पर लगातार काम करना है। याद रखिए, जो चीजें आपको चुनौती देती हैं वही चीज आपको बदलने की ताकत भी रखती है। दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। जिंदगी की असली खूबसूरती उतार चढ़ाव में ही है। आसान रास्ते किसी को याद नहीं रहते, मुश्किलें ही इंसान को मजबूत बनाती हैं। दोस्तों, हर दिन एक नया मौका है अपनी गलती सुधारने का और खुद को फिर से बेहतर बनाने का। जी हाँ, इन्हीं कुछ सुविचारों के साथ शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम आज की बात से। अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस, जी हाँ ये है हमारा आज का विषय। अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस हर साल 27 जून को मनाया जाता है। भारत में इसे उद्यमी भारत MSME के रूप में भी जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन और नवाचार में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के महत्वपूर्ण योगदान को पहचानना है। आइए आपको बता दें कि भारत में MSME क्षेत्र की स्थिति क्या है। देश के कुल GDP में लगभग 30% योगदान, भारत के कुल निर्यात में 45% से अधिक योगदान, कृषि के बाद देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला दूसरा बड़ा क्षेत्र। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सतत विकास और वैश्विक अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यमों के योगदान के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए 27 जून को सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यम दिवस के रूप में इसे घोषित किया। MSME क्षेत्र के विकास और उद्यमों की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाएं और डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाए जा रहे हैं, जैसे उद्यम रजिस्ट्रेशन, छोटे व्यवसायों को पंजीकृत करने के लिए सरकार द्वारा आधिकारिक पोर्टल, PM विश्वकर्मा, पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों

को समर्थन देने की एक प्रमुख पहल। एमएसएमई समाधान। एमएसएमई द्वारा सामना किए जाने वाले विलंबित भुगतान विवादों को सुलझाने के लिए एक ऑनलाइन मंच। चैंपियंस पोर्टल एमएसएमई के लिए वास्तविक समय सहायता, शिकायत निवारण और सलाहकार सेवाएं प्रदान करने हेतु एक प्रणाली। दोस्तों, अब भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस की थीम है नवाचार और सतत औद्योगिक विकास के माध्यम से लघु एवं मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाना है। यह थीम सतत विकास और नवाचार, विशेष रूप से डिजिटल परिवर्तन और स्थिरता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। जी हाँ, ये तो थी आज की बात। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में एक प्यारा सा गीत।

लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में सुना भी आपने ये प्यारा सा गीत। और कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं एक झलकी। विषय है यस सर, लेखक प्रकाश शुक्ला और निर्देशक जयदेव शर्मा कमल।

0: Good morning, Miss Rita Faria.
1: Good morning, Mr. Makhanwala. मिस्टर मक्खनवाला।
0: यस मिस रीता।
1: मैंने आपको कितनी बार याद दिलाया है कि मैं रीता फारिया नहीं हूँ। रीता फारिया तो मिस वर्ल्ड थी, पर आप हैं कि बराबर कंफ्यूज करते रहते हैं।
0: मैं कहाँ कंफ्यूज करता हूँ मिस रीता, आप आईना तो रोज ही देखते होंगे, भला अपनी जैसी सूरत आपको दुनिया में कहीं नजर आती है?
1: ओ मिस्टर मक्खनवाला, यू टॉक सो स्वीट।
0: मैं तो छोटी सी सच्चाई बयान कर रहा था मिस रीटा, आप नाराज तो नहीं हो गई?
1: नो।
0: आप तो जानती हैं ना मिस रीटा कि मैं पिछले एक हफ्ते से छुट्टी पर था और इसी बीच नए साहब ने ज्वाइन कर लिया।
1: हाँ, कोई 3 दिन हुए ज्वाइन कर लिया।
0: तो मिस रीता, मैं जानना ये चाहता था कि ये नया साहब आदमी कैसा है। अब तक आपने उसे जरूर पहचान लिया होगा। यू आर सो इंटेलिजेंट मिस रीता।
1: हाँ, कुछ तो समझा है।
0: क्या समझा है बताइए ना प्लीज। मैं ये पूछना चाह रहा था मिस रीटा कि उठते बैठते उनका ध्यान अमूमन किस चीज पर ज्यादा रहता है?
1: ध्यान तो ज्यादातर मेरी गलतियों पर ही रहता है।
0: ओहो।
1: वैसे कभी कभी चलते फिरते मेरी शक्ल सूरत पर भी नजर डाल लेता है।
0: नो, मैं ये सब नहीं पूछ रहा था। आप मेरी बात अभी तक नहीं समझ पाई।
1: आई एम रियली वेरी सॉरी।
0: मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ मिस रीटा कि बातचीत या तौर तरीके से क्या जाहिर होता है, कि समय काटने को वो कौन सा काम अधिक पसंद करता है?
1: वैसे तो सारा समय फाइलों में ही बीत जाता है।
0: ओह।
1: पर हाँ, एक आध मैगजीन रोज ही साथ लाते हैं।
0: That's right, मिस रीटा, यही तो मैं जानना चाह रहा था।
1: तो आपने पहले ही बता दिया होता कि आप मैगजीन के बारे में जानना चाह रहे थे।
0: मुझे ख्वाब आते थे क्या?
1: जी, कुछ कहा आपने?
0: मैं ये पूछ रहा था मिस रीटा कि आपने ये भी जरूर देखा होगा कि वो कैसी मैगजीन होती है।
1: हाँ, देखने में अच्छी होती है।
0: No, I mean, उनमें क्या होता है? स्पोर्ट्स, फिलोसफी, पॉलिटिक्स, सेक्स?
1: नहीं, ये सब कुछ नहीं होता।
0: फिर
1: फोटो देखने से कुछ साइंस का मालूम पड़ता है।
0: साइंस मसलन?
1: मसलन चांद, तारे वगैरह वगैरह।
0: That's a point.
1: क्यों, कोई खास बात है मिस्टर मक्खनवाला?
0: कुछ नहीं मिस रीटा, मैं तो यूं ही कभी कभी आपसे बातें करने लगता हूँ। बाकी लोग तो

0: जैसे ही वैसे हैं, मैं इन सबको खूब समझता हूँ। पता नहीं मेरे पीछे इन बदमाशों ने बॉस के क्या क्या कान भरे होंगे।
1: Who knows?
0: लेकिन खैर, मेरे पास तो एक ही रामवाण है, उसी से सबको समझ लूंगा। गुरी राम ने कच्ची गोली नहीं खेली है मिस्री टॉप।
2: Yes, come in.
3: नमस्ते सर।
2: नमस्ते, बैठिए।
3: जी सर, थैंक यू।
2: कहिए।
3: बस सर, वो क्या नाम है के दर्शनों के लिए चला आया ना सर, मुझे सर जी आर मक्खन वाला कहते हैं।
2: ओ, जी आर मक्खन वाला।
3: जी, गुनीराम मक्खन वाला।
2: ओ, आई सी। अच्छा, तो आप ही हैं मिस्टर गुनीराम मक्खन वाला।
3: यस सर, पिछले हफ्ते छुट्टी पर था सर, कल ही वापस आया, लेकिन बड़ी कोशिश के बाद भी अब तक आपके दर्शन नहीं हो सके सर, बड़े बिजी थे ना सर।
2: हाँ, अभी चार्ज दिया ही है ना, फुर्सत जरा मुश्किल से निकल पाती है।
3: सो तो है ही सर, मैं क्या जानता नहीं सर अफसरों के पास कितना काम रहता है।
2: ओ, यू नो,
3: व्हाई नॉट सर। एक अरसे से मैं इसी कुर्सी की तो सेवा करता चला आ रहा हूँ सर।
2: ऐसा है।
3: आपकी मेहरबानी से सर, इस दफ्तर की राही रत्ती तक मैं जानता हूँ सर। और इसके अलावा सर, इस कुर्सी पर बैठने वाले हर बड़े साहब ने मुझ में हमेशा एक सच्चा सेवक पाया है सर। यस सर, कभी कोई बात हो सर तो इस सेवक को जरूर मौका दीजिएगा सर। वो बाकी तो सर इस ऑफिस के लोग ऐसे हैं सर कि बस कुछ न पूछिए, दिन भर एक दूसरे की चुगली, कभी इसकी बुराई सर तो कभी उसकी शिकायत। अब कहां तक बताऊं सर, अपने मुंह से ज्यादा कहा भी तो नहीं जाता सर।
2: ठीक है ठीक है, मैं सब सुन चुका हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आपके ये हाथ में क्या है, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग।
3: सर ये कुछ नहीं सर, ये बस जरा कभी कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेता हूँ सर, बस वही है। और
2: मैं भी देख सकता हूँ ये मैगजीन।
3: क्यों नहीं सर, सर आप ही के लिए तो है सर।
2: मेरे लिए
3: जी, वो मेरा मतलब ये था सर कि हम सभी आपकी सेवा के लिए है ना, फिर ये किताबें क्या चीज है सर।
2: मिस्टर मक्खन वाला।
3: यस सर।
2: आपको स्पेस एडवेंचर से खासा शौक लगता है।
3: क्या बताऊं सर, शौक तो इतना है सर कि बस, लेकिन सर हम लोग तो तस्वीर देख कर ही तबीयत बहला लेते हैं सर।
2: और आप क्या चाहते हैं।
3: चाहता तो था सर मैं भी यान में बैठकर चंद्रलोक की सैर करूं, और सर चांद की उजली सी धरती पर बिचरते हुए वहां की ठंडी ठंडी हवाओं में खो जाऊं।
2: लेकिन गुनीराम जी।
3: ये सर,
2: चांद पर कोई ऐसी ठंडी वंडी हवाएं नहीं चलती हैं।
3: जी जी हाँ, वो मेरा मतलब ये था सर कि
2: अभी थोड़ा और पढ़िए, वैसे शौक अच्छा है।
3: जी सर, मैं ये कह रहा था सर, मेरा मतलब था कि
2: क्या कोई खास बात।
3: ये सर
2: क्या है।
3: जी जी कुछ नहीं सर, कुछ नहीं
2: है
3: सर,
2: जाकर अपना काम करिए।
4: क्या बात है गुनीराम, आजकल जमीन पर पैर ही नहीं रखे, हमेशा चांद सितारों के बीच उड़ा करते हो।
5: देखो मेहता, मुझे खाम खां की छेड़छाड़ कतई पसंद नहीं है। मैं कुछ भी करूं, मेरा अपना शौक है। आसमान में उड़ता हूं तो कोई तुम्हारी छत में झांकता नहीं।
6: अरे भाई, तो बिगड़ते क्यों हो, मेहता ने तो साधारण सी बात।
5: मैं कहता हूँ, क्यों पूछी थी, चांद तारों की तस्वीर देखना कोई गुनाह है क्या।
4: तौबा तौबा, गुनाह। अरे भैया, खून करना भले ही एक बार गुनाह हो, चांद तारों की तस्वीर देखना कैसे गुनाह होगा, आखिर हमारे बड़े साहब भी तो अक्सर यही सब देखा करते हैं।
5: मैं तुम सबका भार नहीं दिलवा दूंगा, तुमने समझ क्या रखा है, क्या समझ रखा है तुमने गुनीराम
6: मक्खन वाला को।
5: मैं सबको देख लूंगा एक एक को।
7: मक्खन वाला।
0: यस मिस रीता।
7: आपको बड़ा साहब ने याद किया है, अभी इसी वक्त कोई इम्पोर्टेंट इशू डिस्कस करना मांगते हैं।
0: व्हाट सीम इम्पोर्टेंट इशू। अच्छा,

0: अरे गुनीराम, ये चांद सितारों वाली मैगजीन तो लेते जाओ।
1: मैं कहता हूँ शट अप यू ऑल।
0: क्या बात है मिस रीटा?
2: आइए आइए गुनीराम जी, बैठिए, आइए आइए, इधर आइए।
3: थैंक यू सर।
2: बैठिए
3: जी। यस सर।
4: गुनीराम जी।
3: यस सर।
4: मैंने आपको खास मशवरे के लिए बुलाया है।
3: हुक्म कीजिए सर।
4: आपको तो पता ही होगा कि पिछले जुलाई में 3 आदमी चंद्रमा पर गए थे।
3: यस सर।
4: और वहां उन्होंने हर देश का एक एक झंडा बिगाड़ा था।
3: यस सर।
4: आपने देखा तो होगा।
3: यस सर।
4: अच्छा, तो आपने देखा था।
3: जी जी, वो मेरा मतलब ये कि मैंने पढ़ा था सर।
4: ओ, पढ़ा था। तो ये भी पढ़ा होगा कि बदले में 3 व्यक्ति चंद्रमा की धरती के कुछ नमूने ले आए हैं, पता है ना आपको?
3: यस सर।
4: फिर वो नमूने संसार के हर देश में भेज दिए गए, पता है ना?
3: यस सर।
4: लेकिन अब इस मिट्टी को लेकर कुछ लोग बवाल मचा रहे हैं।
3: ठीक है सर, वो बात
4: ऐसा है। लगता है जिस मतलब से ये सब कुछ किया गया था वो बात कुछ बनी नहीं।
3: नहीं बनी होगी सर। ये पॉलिटिक्स बड़ी खराब चीज है सर, इसमें अक्सर ही बिगाड़ हो जाती है सर।
4: कुछ भी हो, अब तय ये पाया गया है कि हर देश अपना अपना आदमी चांद पर भेजेगा।
3: ये सर।
4: और चांद की धरती पर सारा लेन देन अपने आदमी के जरिए ही से हुआ करेगा।
3: ठीक बात है सर, दरअसल पहले से ही बात सोच लेनी चाहिए थी सर।
4: खैर, हिंदुस्तान वालों का अब भी कुछ ऐसे ही ख्याल है।
3: ठीक है सर, हम चांद पर अपना अधिकार थोड़ी खोने देंगे सर।
4: लेकिन गुनीराम जी।
3: सर।
4: वहां जाकर रहेगा कौन?
3: जिसे भेजा जाएगा सर वही रहेगा। आगे चंद्रमा पर जाने वाले पहले लोग भी तो आदमी ही थे सर। और सर, बीवी बच्चे वाले आदमी थे। और देश की खातिर भला कोई इतना भी काम नहीं करेगा सर?
4: हाँ, करना तो चाहिए। लेकिन गुनीराम जी, बात दरअसल ये है कि वहां रह पाना इतना आसान नहीं है। सच पूछा जाए तो मुझे वहां भेजे जाने वालों से बहुत हमदर्दी है।
3: ऐसी भी क्या बात है सर, इतने अहम काम के लिए अगर जान भी न्योछावर करनी पड़े तो किसी को हिचकिचाना नहीं चाहिए।
4: नहीं नहीं, जरूरत वहां जाकर मरने वालों की नहीं, जरूरत ऐसे समझदार आदमी की है जो वहां जाकर ठीक से काम चला सके।
3: यस सर।
4: और फिर जब उसे वहां जाकर रहना ही है तो क्यों ना ऐसे आदमी को भेजा जाए जिसे इन सब कामों में दिलचस्पी हो।
3: यस सर। यस सर, आप ठीक कहते हैं सर।
4: कुछ ऐसा ही ख्याल हमारी सरकार का भी है, इसलिए हर डिपार्टमेंट में सर्कुलर भेजा गया है।
3: अच्छा।
4: और इस बारे में राय मांगी गई है।
3: जी।
4: मेरा ख्याल है कि ये ठीक ही कदम है।
3: यस सर, बिल्कुल ठीक कदम है।
4: कोशिश ये है कि उन्हें ऐसा आदमी मिल सके जो चांद पर जाने के लायक हो।
3: जी सर।
4: गुनीराम जी।
3: यस सर।
4: हमारे यहाँ भी एक ऐसा सर्कुलर आया है, डू यू नो?
3: यस सर।
4: व्हाट? यस सर, आपने देखा है?
3: यस सर जी, मेरा मतलब मैंने सुना था।
4: कहाँ?
3: जी वो और दफ्तरों में भी तो आया है ना सर।
4: अच्छा, तो और दफ्तरों में ये खबर पहले ही फैल गई और हम अपने को इतना हुनरमंद समझते भी पिछड़ गए हैं। ये किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। हम बैठे ही रहे और दूसरा बाजी मार ली जाए, मैं ये बात कतई ही नहीं बर्दाश्त कर सकता। आप बर्दाश्त कर सकते होंगे?
3: यस सर।
4: बर्दाश्त कर सकते हैं?
3: जी जी जी। नहीं, मेरा मतलब ये था कि
4: मतलब कुछ नहीं, चांद पर वही आदमी जाएगा जो इसका असली हकदार है, समझे आप?
3: यस सर।
4: तो फौरन एक टेलीग्राम दिल्ली भेजिए और अभी तुरंत।
3: यस सर।
4: हाँ,
3: क्या क्या लिख दूं उसमें सर?
4: लिख दीजिए सेंड GR मक्खन वाला चुमून।
3: यस सर। जी सर। जी सर, आपने क्या बोला सर? GR मक्खन वाला?
4: मैंने गलत बोला क्या?
3: यस सर।
4: क्या?
3: जी जी नहीं, बिल्कुल नहीं, आप भला गलत कैसे बोलेंगे सर?
4: तो जाइए फौरन इस तार को लगवा दीजिए।
3: जी सर, मैं भी जा रहा हूँ सर। लेकिन सर। सर, मेरे बीवी बच्चे।
4: कुछ नहीं, मेक हेस्ट, फौरन टेलीग्राम दीजिए, वरना इतने हुनरमंद आदमी के होते हुए भी हम पीछे रह जाएंगे।
3: यस सर।
0: क्यों गुनी राम जी, किसके लिए वार्निंग टाइप कर रहे हो?
3: अपने लिए।
0: खैरियत तो है, यहाँ से तो तुम साहब के पास ठीक ठाक गए थे।
5: और साहब तुमसे इतने खुश थे?
1: हाँ, खुश तो अब भी हैं।
0: फिर ये सब क्या है?
1: मुझे भेज रहे हैं।
0: कहाँ?
5: कहाँ?
1: जहन्नम।

0: अभी आप सुन रहे थे जल की विषय था यस सर। लेखक थे प्रकाश शुक्ला और निर्देशक जयदेव शर्मा कमल। कार्यक्रम में आगे भी आपसे मिलते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: अवध क्षेत्र का सब

0: आती है विश्व स्तरीय ऑटो फोरॉप्टर एवं आई रूलर मशीन द्वारा। बच्चों के लिए खास मायोपिया कंट्रोल क्लिनिक की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आंखों की हर समस्या के लिए श्री राम नेत्रालय, पता नियावा रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद। कॉल करें 91-16-76-47-46।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फेरिए माना सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: अपने वाहन को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर इधर उधर पार्क ना करें, कृपया सुरक्षित पार्किंग स्थल पर ही गाड़ी को पार्क करें।
5: ट्रैफिक रेड लाइट का उल्लंघन कभी ना करें, आपकी जरा सी लापरवाही के कारण दुर्घटना घट सकती है। दाएं या बाएं मुड़ने से पहले अपने वाहन में लगे इंडिकेटर का इस्तेमाल करें।
4: अपने वाहन में ओवरलोडिंग से बचें और अपने वाहन से हमेशा अच्छी माइलेज पाने के लिए समय समय पर वाहन की मेंटेनेंस करवाते रहें।
5: गलत तरीके से ओवरटेक ना करें और अपनी लेन में ही गाड़ी चलाएं। बार बार हॉर्न का प्रयोग ना करें।
4: दो पहिया गाड़ी चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, यह आपकी सुरक्षा और आपके हित में भी है।
5: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपके ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं। आपके संदेश
6: संदेश से आते हैं,
5: आपके गीत
6: मैं ये गीत सुनाता हूँ।
5: आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम में अपनी पसंद के फिल्मी गाने आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 9 बजे से। फरमाइश भेजते समय सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए ASAG लिखें, फिर स्पेस देकर फिल्म का नाम, गीत के बोल, प्लेबैक सिंगर्स के नाम, अपने नाम और जिले का नाम लिखकर भेज दें। आकाशवाणी अयोध्या के व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर।

श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए अब आपको शहर की कुछ खास स्थानीय खबरों से अवगत करा दें समाचार पत्रों के माध्यम से। ताजिए सुपुर्दे खाद, या हुसैन की गूंजी सदाएं, इमाम हुसैन की याद में अकीदत और गम के साथ ताजियों का जुलूस निकाला, करबला तक सुरक्षा के रहे पुख्ता इंतजाम। 1 जुलाई से मानसून होगा सक्रिय, सरयू जयंती पर 29 को होगा अभिषेक, सजेगी झांकी। रामनगरी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से मिले 27 चिकित्सक। अवध विश्वविद्यालय में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे कुलाधिपति, 11 बजे विश्वविद्यालय में नवीनीकृत भवन व सरोवर का करेंगे लोकार्पण। रविवार को महिला एवं बालिका सशक्तिकरण कार्यक्रम। रामपथ के लिए कटे 700 से अधिक वृक्षों के स्थान पर होगा पौधरोपण, विकास प्राधिकरण खोदेगा गड्ढा जिसमें वन विभाग लगाएगा पौधे। इन्हीं कुछ खास खबरों के साथ अब संपन्न होता है हमारा आज का कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कार्यक्रम आपके संदेश है, आपके गीत सुनने वाले हमारे सभी दोस्तों का स्वागत है कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं आपके मैसेजेस को पढ़ने का सिलसिला। और ये पहला मैसेज जो हमारे पास आया है वो गाइड फिल्म के इस गीत के लिए, दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से हमारे पास ये मैसेज आया है। मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मीका नवाज, बेबी चाहत और सादिया का। तो आइए आप सभी को सुनवाते हैं आपकी पसंद से गाइड फिल्म से ये प्यारा सा गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन AIR पर। सुबह के ठीक 9 बजे हैं और लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत।
1: आपके अपने आकाशवाणी अयोध्या से सुनिए सुनैन आई हॉस्पिटल द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आई केयर फॉर यू कल रविवार को शाम 5:30 से।

दोस्तों कार्यक्रम चल रहा है, आपके संदेश आपके गीत और कार्यक्रम में अगला मैसेज हमारे पास जो आया है दंतरेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारसवड़ी वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा जी का आपने सुनना चाहा है राजा फिल्म से ये गीत।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर
1: आकाशवाणी अयोध्या।
2: घर घर जन जन तक दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
3: जग घूमे थारे जैसा ना कोई।
0: यह है आपका अपना FM रेडियो चैनल 101.9
1: आकाशवाणी अयोध्या,
0: जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
2: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashwani@gmail.com।
4: शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
5: दोस्तों, अंतराल के बाद हाजिर है कार्यक्रम लेकर आपके साथ आपके संदेश और आपके गीत। कार्यक्रम में अगली जो फरमाइश हमारे पास आई है रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ और कालिया जी की। आपने सुनना चाहा है सनम फिल्म से ये गीत, तो आइए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद पे सनम फिल्म का ये प्यारा सा गीत कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ में।

दोस्तों कार्यक्रम चल रहा है आपके संदेश आपके गीत आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से और कार्यक्रम में शामिल करते हैं अगला संदेश जो कि हमारे पास आया है गांव चौहल्दा बागपत से संजय ढींगिया और नमन ढींगिया जी का। आपने सुनना चाहा है गोपी फिल्म से ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों कार्यक्रम के अंत में आइए आपको सुनवाते हैं उमराव जान फिल्म से ये गीत। पसंद करने वाले हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, रिंगनी छत्तीसगढ़ से।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन AIR पर। सुबह के 9:30 हुए हैं और लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बातें आसपास की।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के

0: अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
2: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
1: अब ECHS से इम्पैनल्ड। आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।
2: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
1: कैशलेस इलाज। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियामा, अयोध्या। कॉल करें 6386907006। आंखों के पर्दे की समस्या, मोतियाबिंद, लेजर चिकित्सा या मोटे चश्मों से छुटकारा, 20 वर्षों से आपका अपना सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट, नियामा, फैजाबाद, अयोध्या। आंखों की सभी समस्याओं का आधुनिक और बेहतर उपचार, हजारों आंखों को नई रोशनी देने वाले प्रख्यात नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल द्वारा संचालित सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट, नियामा, फैजाबाद, अयोध्या। फोन करें 9838100840।
3: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
4: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
3: मैं फसल की नहीं, NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
4: मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
3: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रूपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
5: दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम बातें आसपास की में। दोस्तों, अयोध्या भगवान श्री राम का जन्म स्थान है, ये हम सभी जानते हैं, और साथ ही यहाँ कई मंदिर, तीर्थ स्थल और ऐतिहासिक स्मारक हैं, जो कि इसकी समृद्ध विरासत को दर्शाते हैं। इन्हीं मंदिरों में से एक है अम्मा जी मंदिर। जी हाँ, आज हम आपसे इसी मंदिर से संबंधित कुछ बातें करेंगे। तब तक पहले सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।
6: ये जो

दोस्तों कार्यक्रम चल रहा है बातें आसपास की और आज हम आपसे इसमें बातें करेंगे अम्मा जी मंदिर पर जो कि अयोध्या में स्थित है। अयोध्या का अम्मा जी मंदिर एक अत्यंत शांत और आध्यात्मिक दक्षिण भारतीय शैली का मंदिर है। यह सरयू नदी के किनारे अशरफी भवन के आगे गोलाघाट के पास स्थित है। ये मंदिर दक्षिण भारतीय शैली में बना है और यह मुख्य रूप से भगवान राम के दिव्य रूप को समर्पित है।

0: आपके अपने आकाशवाणी अयोध्या से सुनिए सुनैन आई हॉस्पिटल द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आई केयर फॉर यू कल रविवार को शाम 5:30 से।
1: आकाशवाणी अयोध्या लाया है आपके लिए एक सुनहरा मौका।
2: भेजिए फेसबुक पेज पर अपने सुविचार, शायरी, कोट्स
1: या वो लाइंस जो हो आपको पसंद,
2: और साथ में अपना नाम, पता
1: और वो गीत जो आप सुनना चाहते हैं।
2: फेसबुक पेज पर कार्यक्रम कुछ तुमने कहा के कमेंट बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए अपनी पसंद का गीत, अपने विचार।
0: तो प्रोग्राम कुछ तुमने कहा सोमवार से शुक्रवार तक सुनिए दिन में 1 से 2 तक, और शनिवार रविवार को दिन में 1:30 से 2 के बीच।
3: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का

0: लोकगीत सुनिए व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर। सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com।
2: दोस्तों कार्यक्रम चल रहा है बातें आसपास की और आज हम आपसे बातें कर रहे हैं अम्मा जी मंदिर विषय पर। इस मंदिर की स्थापना लगभग एक सदी पहले योगी पार्थ सारथी अयंगर और श्रीमती सिमंगलम द्वारा की गई थी। योगी अयंगर और एक महान विद्वान थे जिन्होंने स्वामी विवेकानंद को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

दोस्तों आपको बता दें कि मंदिर का प्रबंधन सरस्वती भंडारम ट्रस्ट द्वारा किया जाता है।

दोस्तों मंदिर में दर्शन के लिए आप सुबह और शाम की आरती के समय मंदिर में जा सकते हैं, जो ध्यान और शांति के लिए सबसे उत्तम समय माना जाता है।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बातें आसपास की 101.9 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं। अब आइए सुनते हैं मुंबई से प्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।
1: ये उन दिनों की बात है जब मोबाइल से इमोजी भेजकर इश्क जाहिर करने का जमाना नहीं आया था। मोबाइल जैसी चिड़िया का उद्भव भी नहीं हुआ था। गूगल नाम का जिन्न भी तब तक अस्तित्व में नहीं आया था। जो भी खोजना हो किताबों से ही खोजना होता था। किताबें लाइब्रेरी में होती थी, साथ ही एक दूसरे को पढ़ती हुई निगाहें भी। रास्ता लोगों से ही पूछना होता था। रास्ते पूछने में कई बार रिश्ता बन जाता था। ये उन दिनों की बात है जब रिश्तों में अलाव थे, जब रिश्तों में ताव थे, जब रिश्तों में हाव भाव थे, जब रिश्तों में जान थी जिसे लोग हथेली पर लेकर घूमते थे, जब शहरों में रिक्शे पर जा रही लड़कियों के पीछे पीछे आशिक उन्हें उनके घर के पास तक छोड़कर आते थे, जब विश्वविद्यालय के नवनियुक्त अध्यापक साइकिल से भी नौकरी पर आते थे, जब लड़के दूर बैठे बैठे मजाक मजाक में लाल वाली, हरी वाली, लंबी वाली, सांवली वाली, गोरी वाली आपस में बांट लिया करते थे, जब अनजाने में ही किसी को अपना बना लेने का चलन था।

मैंने प्यार किया फिल्म की धूम थी, उसका एक संवाद बहुत प्रसिद्ध था। दोस्ती का एक उसूल होता है मैडम, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। मैंने प्यार किया की कैप जिस पर लिखा होता था फ्रेंड फैशन में थी, तो टोपियां तो थी पर कबूतर नहीं थे जो प्रेम पत्र ले जाते, तो ऐसी मंडली में कोई न कोई कबूतर बना लिया जाता था जो बिना शरारत के जस का तस प्रेम पत्र पहुंचा देता था। ये उस समय की बात है जब

कई लड़के शहर में रहने के ठिकाने के चक्कर में वकील बन जाते थे, मतलब विश्वविद्यालय से कोई न कोई कोर्स करते ही रहते थे, कहीं न कहीं एडमिशन लिए ही रहते थे, जिसमें लॉ सबसे सही रहता था क्योंकि 5 साल की छुट्टी, और अगर एक दो बार फेल भी हो गए तो सुने पर सुहागा, जिससे हॉस्टल में रहने की परमानेंट व्यवस्था बनी रहे। जब लाइब्रेरी में जोड़े प्रेम की पींगे बढ़ाते थे, किताबों की अदला बदली होती थी और ये किताबें लिफाफे का काम करती थी। ये बात चल रही है नवाबों के शहर कहे जाने वाले लखनऊ की। हालांकि यहाँ लक्ष्मण पार्क भी है, जब तब लखनपुरी का जिक्र होता रहता है।

जब सिनेमा हॉल के आसपास से गुजरने पर भी घर में डांट पड़ती थी, जब जय भारत सिनेमा हॉल में पुरानी फिल्मों के टिकट 3 रुपए और साइकिल पार्किंग के 25 पैसे होते थे, जब इश्क करना बड़ी हिम्मत का काम हुआ करता था, उस समय मवाली, कसम पैदा करने वाली जैसी फिल्मों के साथ सरस्वती चंद्र, मेरा नाम जोकर जैसी फिल्में भी हॉल में लगती थी। तो ये कहानी है श्रीमान एक्स की, जो बहुत संघर्षशील कलाकार हुआ करते थे, परंतु प्रेम के मामले में बिल्कुल फिसड्डी थे। वैसे देखा जाए तो कला का मूल प्रेम ही है। अब किशन भगवान को ही ले लो, सबसे बड़े कलाकार और सबसे बड़े प्रेमी।

0: श्रीमान एक्स की 12वीं तक की पढ़ाई लड़कों वाले स्कूल में ही हुई। समझिए यहाँ तक का जीवन पूरी तरह सूखे में गुजर गया। जब विश्वविद्यालय में एडमिशन हुआ तो वहाँ कन्याएं भी थी और हिंदी की क्लास में तो बहुतायत से, यानी हरियाली ही हरियाली। पहली बार कोएड, यानी कि जहां लड़के लड़कियां साथ पढ़ते थे, इस बात का अनुभव हो रहा था। अब समझिए कि श्रीमान एक्स की प्रेम कहानी शुरू होने का मौसम बन चुका था। उनके जीवन में अब तक प्रेम की फुहार तक न पड़ी थी, इसलिए बहुत ही खड़ूस टाइप के व्यक्ति बन गए थे श्रीमान एक्स। एक बार एक नाटक में प्रेम का अभिनय करना था। उसमें अपनी प्रेमिका से प्रेम का निवेदन करने वाले दृश्य का रिहर्सल करना था। श्रीमान जी के हाथ पैर सब कांपने लगे अपनी प्रेमिका का दुपट्टा छूने में। इतने में ही श्रीमान एक्स के पसीने छूट गए। तो प्रेमिका का अभिनय कर रही मोहतरमा ने समझाया कि आप आराम से अभिनय कीजिए, इतना घबराने की बात नहीं है। तो श्रीमान जी थोड़ा सहज हुए।
1: बाजू

ये उन दिनों की बात है जब जाड़े का मौसम था, रंग बिरंगे लिबासों से सजे धजे लोग आते थे। हालांकि गरीबों के लिए मौसम बहुत दुखदाई भी होता है, जैसे तैसे रातें कटती हैं। नए साल की शुरुआत होने वाली थी, इस बीच एक कन्या श्रीमान एक्स को अच्छी लगने लगी। जी हाँ, अच्छी लगने लगी। सुंदर सांवली सलोनी, लहराते गेसू, मोरनी सी चाल, सुराहीदार गर्दन, कुल मिलाकर रीतिकालीन कवियों की नायिका सी लगती थी। क्लास में नायिका भेद के वर्णन के दौरान वो सुश्री वाई के सपनों में खो जाते थे। हेलो हाय का कोई अवसर नहीं मिल पाता, कारण कि वो हमेशा अपनी एक सहेली के साथ रहती थी। खैर, मौसम मंगड़ाइयां ले रहा था, हवाओं में ठंड थी पर भावनाओं में पर्याप्त गर्मी थी, जिसका एहसास श्रीमान एक्स को बखूबी हो रहा था।

तो नए साल की आहट से श्रीमान एक्स के दिल में मुशायरे होने लगे, कवि सम्मेलनों की झड़ी लग गई, इश्क मोहब्बत का गाना जो भी सुनते उन्हें लगता उन्हीं के दिल की आवाज है। हालांकि कड़े संघर्ष के दिन थे, घर त्याग चुके थे, इसलिए अपनी पढ़ाई, रहने खाने के खर्च सबकी व्यवस्था करना आसान नहीं था। खाना पकाने के लिए मिट्टी का तेल मुश्किल से मिलता था, राशन कार्ड था नहीं, इसलिए विश्वविद्यालय में जाते समय भी साइकिल में 5 लीटर वाली प्लास्टिक की पिपिया यानी कि डिब्बा बंधा रहता था, जो उनकी अमीरी का ढोल पीटता रहता, उनके संघर्ष की महागाथा का ऐलान कर रहा होता। इसी में से प्रेम के लिए भी कुछ वक्त चुराना था। देखा जाए तो यही एक एहसास था जो ठंडी में भी गर्मी का एहसास बनाए रखता था। इसी के सहारे दिन गुजर रहे थे।

तब नए साल और त्योहारों में ग्रीटिंग कार्ड भेजने का चलन था। उसमें फूल पत्ती बनाने, शेरो शायरी लिखने का फैशन था। कार्ड की तरह तरह की दुकानें रंग बिरंगे कार्डों से सज उठती थी। एक महीने पहले से ही लोग कार्ड खरीदने भेजने में जुट जाते थे। सारे रिश्तेदारों दोस्तों को कार्ड भेजे जाते थे। रिश्ते के अनुसार उसमें हिंदी अंग्रेजी भाषा में शुभकामनाओं का गुलदस्ता भेजा जाता था। 2 रुपए से लेकर 100-200 तक के कार्ड होते थे, एक से एक डिजाइन के कार्ड। किसी में घर बना होता, किसी में क्रिसमस ट्री, तो किसी में दिल को चीरता हुआ तीर भी होता। यानी विभिन्न प्रकार के कार्डों की धूम रहती। श्रीमान एक्स के मन में विचार आया कि यही सुनहरा मौका है सुश्री वाई को हलो बोलने का। अब कैसा कार्ड खरीदा जाए, कुछ सोच नहीं रहा था। ऐसा कोई पूर्व अनुभव भी नहीं था। और दूसरी बात,

सुश्री वाई की पसंद नापसंद की कोई जानकारी नहीं थी। हाँ, कविता लिखने की समझ जरूर आ गई थी, पर दिलभेक शायरी उनके पास नहीं थी जो सीधे सीधे असर कर दे। वो तो अज्ञे, धूमिल, मुक्तिबोध, दुष्यंत कुमार और धर्मवीर भारती के दीवाने थे। इसमें कनुप्रिया काम आ सकती थी। आप गलत समझ रहे हैं, कनुप्रिया उनकी कोई दोस्त नहीं थी, बल्कि धर्मवीर भारती की अद्भुत रचना। इस उधेड़बुन में, इस असमंजस में

मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए, मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए, एक पैर रखता हूं कि सौ राहें फूटती हैं। मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूं, मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूं। बहुत अच्छे लगते हैं उनके तजुर्बे और अपने सपने, सब सच्चे लगते हैं। अजीब सी अकुलाहट दिल में उभरती है, मैं कुछ गहरे में उतरना चाहता हूं, जाने क्या मिल जाए। इस कविता के भाव जैसा ही था श्रीमान एक्स का भाव, तो सबसे मजबूत हथियार कविता ही थी। कार्ड कैसा भी खरीदा जाए पर कविता शानदार लिखी जाएगी। समस्या ये थी कि कोई ऐसा मित्र भी नहीं था जिसके साथ अपनी भावनाएं साझा की जाएं, तो जैसे तैसे कार्ड खरीदा गया।

कुछ ही दिन बाकी रह गए थे नववर्ष के आगमन में। मौसम भी अपनी रंगत बदल चुका था। छात्र संघ के चुनाव भी कुछ ही दिनों में होने वाले थे, इसलिए नुक्कड़ सभाएं चल रही थी। बाहरी नेताओं का आना जाना भी शुरू हो चुका था, जो अपने अपने प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटा रहे थे। इस मौके पर कई प्रतिनिधि पर्चे और गुलाब के फूल बांट रहे थे। श्रीमान एक्स को लगा ये अवसर भी हो सकता है सुश्री वाई को फूल देने का, लेकिन अपने ही विचार को उन्होंने खंडित कर दिया, ये सोचकर कि ये तरीका सही नहीं है। हालांकि प्यार और वार में सब जायज है कि कहावत सुनी थी, लेकिन उस पर अमल नहीं करना चाहते थे। श्रीमान एक्स का मानना था कि हर कहावत तर्क संगत हो ऐसा भी नहीं है। कई कहावतें तो परिस्थितियों वश बना ली गई थी, पर हर परिस्थिति में उन्हें लागू करना ठीक नहीं। साथ ही उन्हें किसी नेता के पीछे घूमना पसंद नहीं था। कलाकार मन बहुत विद्रोही और भावुक होता है। उन दिनों बहुत सारे नेता विश्वविद्यालय में इसलिए एडमिशन लिए रहते थे कि उनको चुनाव लड़ना है। पिताजी की उम्र को होने को आए थे, पर प्रण था कि बिना चुनाव जीते विश्वविद्यालय नहीं छोड़ना है, सो अभी तक लगे पड़े थे। इसमें लड़कियां भी पीछे नहीं थी कि चुनाव जीतने के जितने भी हथकंडे हो सकते थे सब आजमाए और वो काम भी आए। खैर, ये तो हुई माहौल की। इसी माहौल में बहुत सारे प्रेम प्रसंग हिलोरे ले रहे थे, लेकिन जो खुद भंवर में हो उसे दूसरे का डूबना कहां दिखाई देता है, इसलिए इस मामले में कोई किसी और से कुछ सीखना नहीं चाहता।

में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा जा, जा।

आखिर वो दिन आ ही गया जब श्रीमान एक्स को सुश्री वाई से हैप्पी न्यू ईयर बोलना था। कार्ड खरीद लिया गया था पर उस पर दिल के जज्बात उतारना बाकी था। सोचा चलो विश्वविद्यालय में ही लिख देंगे। बड़े उत्साह, घबराहट और न जाने कितनी भावनाओं की खिचड़ी के साथ पहुंचे। अब खिचड़ी क्या, तहरी कहना ज्यादा सही रहेगा। कौन सी भावना का प्राधान्य है समझ में नहीं आ रहा था। साइकिल स्टैंड में साइकिल खड़ी की, हिंदी विभाग की तरफ पहुंचे कि कोई दिखाई नहीं दिया। सोचा चलो बरामदे में बैठकर कुछ न्यू ईयर की कविता बनाई जाए। अचानक सुश्री वाई की झलक दिख गई। अब श्रीमान एक्स के हाथ कांपने लगे। कुछ ठीक से लिखा नहीं गया। उन्हें बुलेट मोटरसाइकिल की धक धक सुनाई पड़ने लगी, लेकिन वो उन्हीं के दिल की धड़कन थी जो बेतहाशा धड़क रही थी। जैसे तैसे कुछ सामान्य सा लिखा, आपको नववर्ष की शुभकामनाएं, आप सदा प्रसन्न रहें। मतलब जैसे आशीर्वाद दे रहे हूं। ये लिखने में विरोधाभासी भावनाओं का ज्वार था। हाथ ऐसे कांप रहे थे जैसे बर्फ पड़ रही हो, 4 डिग्री तापमान हो। पसीना ऐसे छूट रहा था जैसे मई जून की दोपहरी हो। इन्हीं भावनाओं को समेटे हिमालय पर जाने जैसा साहस जुटाकर सुश्री वाई को खोजते खोजते श्रीमान एक्स मनोविज्ञान विभाग में पहुंचे। दूसरे तल पर सुश्री वाई अपनी सहेली के साथ खड़ी अपनी ही धुन में बतिया रही थी। पहले तो श्रीमान एक्स को लगा कि बस इनको ऐसे ही खड़े देखते रहे, उसकी मुस्कुराहट को जीते रहे।

0: लेकिन फिर ख्याल आया और सोचा कि बड़ी हिम्मत जुटाकर यहां तक आया हूं, बात आगे बढ़ा ही दी जाए, फिर कब मौका मिले पता नहीं, फिर दोबारा इतनी हिम्मत जुटे न जुटे आगे बढ़ गए। कांपते गले से कहा, हेलो। वो बोली, जी कहिए। जी कुछ नहीं, हैप्पी न्यू ईयर। मतलब हैप्पी में इतनी मुर्की थी कि कोई संगीत का उस्ताद सुन लेता तो पूछ बैठता, भैया कितने दिनों का रियाज है। बस इतना ही कह पाए थे श्रीमान एक्स, और बदले में थैंक यू मिल गया था। उस कंपन को शब्दों में नहीं लिखा जा सकता, उसका दोबारा अभिनय भी नहीं किया जा सकता। वो दिन है और आज का दिन, लोग पल भर के साथ में परिवार बना लेते हैं, लेकिन श्रीमान एक्स उन लम्हों को अभी तक किताबों में रखे गुलाब की तरह संजोए हैं।
1: आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार

दिनों की बात है। अभी आप सुन रहे थे अरुण शेखर की लिखी ये गीतों भरी कहानी। वाचन स्वर अरुण शेखर का था, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की।

0: शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती आप सुन रहे हैं, देश के सुरीली धड़कन विविध भारती, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत में। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपके दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

आशा भोसले और राहुल देव बर्मन की आवाजों में द ट्रेन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। आज है संगीतकार और गायक राहुल देव बर्मन का जन्मदिन और इसी मौके पर उनके ही संगीतबद्ध किए गीत और कुछ गीत ऐसे जिनमें उनकी आवाज भी है ये सुनवाए जा रहे हैं आपको कार्यक्रम चित्रपट संगीत में।

0: राहुल देव बर्मन की आवाज में उन्हीं का संगीतबद्ध किया ये गीत आप सुन रहे थे। शोले फिल्म का ये गीत आनंद बख्शी ने लिखा। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत विविध भारती पर।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

0: सत्य पे सत्ता फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले, किशोर कुमार, राहुल देव बर्मन, भूपिंदर और सपन चक्रवर्ती की आवाजें, गुलशन बावरा के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आप

0: फैटी लिवर इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है.
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर. ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी.
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने.
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है. और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं.
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर.
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत.

0: किशोर कुमार, आशा भोसले और राहुल देव बर्मन की आवाजों में पुकार फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। शब्द रचना गुलशन बावरा की, संगीत राहुल देव बर्मन का।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। आइए सुनते हैं राहुल देव बर्मन के संगीत से सजा ये गीत, जिसे गाया है आशा भोसले, किशोर कुमार, राहुल देव बर्मन ने। रॉकी फिल्म के इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।

0: रॉकी फिल्म के इस गीत में आप सुन रहे थे आशा भोसले, किशोर कुमार, राहुल देव बर्मन और साथियों को। और इसके साथ ही आज का चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: ये आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
2: साइंस, लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन।

नमस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के जून महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में

मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट और स्मृति शेष में नमन जानी मानी गायिका सुमन कल्याणपुर को। सबसे पहले संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में 21 जून को मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी सन 1982 में। 21 जून का ही दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इस दिन होता है समर सोल्स्टिस यानी ग्रीष्म संक्रांति। साल

का एक सबसे लंबा दिन, ताकि आप संगीत की स्वर लहरियों का ज्यादा मजा ले सकें। संगीत सिर्फ एक कला नहीं, संगीत जीवन का सुकून है। संगीत न होता तो कितनी सूनी होती ये दुनिया। आज चित्र भारती के संपादकीय में हम विश्व संगीत दिवस पर लाए हैं एक खास पेशकश, ऐसे कलाकारों की बातें जो वैसे तो शास्त्रीय संगीत में सक्रिय रहे, पर जब वो फिल्म संगीत के मैदान में आए तो उन्होंने अपनी और ज्यादा चमक बिखेरी और हमें दिए कुछ अनमोल गाने, यानी कुछ ऐसे गायक और संगीतकारों की बातें जो शास्त्रीय संगीत की दुनिया से आते हैं। शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत हमेशा दो अलग अलग ध्रुव रहे हैं। एक लंबे समय तक शास्त्रीय संगीत की दुनिया में फिल्म संगीत को कमतर माना जाता रहा और शास्त्रीय संगीत के कलाकारों ने फिल्म संगीत से बाकायदा दूरी बनाकर रखी। पर फिर ऐसा वक्त आया जब शास्त्रीय संगीत की दुनिया के दिग्गजों ने फिल्म संगीत की जमीन पर अपने कदम रख ही दिए। अगर शुरू से बात करें तो बेगम अख्तर जैसी दिग्गज गायिकाओं ने फिल्मों में काम भी किया और गाने भी गाए। सन 1930 के जमाने में उन्होंने एक दिन का बादशाह, नल दमयंती और जवानी का नशा जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। सन 1942 में उन्होंने महबूब खान की फिल्म रोटी में संगीतकार अनिल बिस्वास के निर्देशन में गाना भी गाया। इसके अलावा सत्यजीत रे ने सन 1958 में एक फिल्म बनाई जलसा घर। इस फिल्म में उस्ताद विलायत खान साहब का संगीत था। ये फिल्म अपने लाजवाब संगीत के लिए जानी जाती है। बेगम अख्तर ने इस फिल्म में

ऐसे मौकों पर फिल्म संगीत अपनी अप्रतिम ऊंचाई तक पहुंच जाता है। शास्त्रीय संगीत के कई दिग्गजों ने फिल्म संगीत में अपना योगदान दिया है। सन 1952 में विजय भट्ट ने एक फिल्म बनाई बैजू बावरा। इस फिल्म के लिए संगीतकार नौशाद ने राजी किया मालवा घराने के संस्थापक उस्ताद अमीर खान साहब को। कितना सुखद था कि इस फिल्म का एक गाना पंडित डी वी पलुस्कर और उस्ताद अमीर खान साहब ने साथ

ये जिक्र जरूरी है कि उस्ताद आमिर खान साहब ने सिनेमा के लिए शायद सबसे पहले नौशाद के ही संगीत निर्देशन में गाया था। फिल्म थी सन 1954 में आई शबाब। दूसरी बार उन्होंने सिनेमा के लिए तब गाया जब वी शांताराम ने फिल्म बनाई झनक झनक पायल बाजे, साल 1955। सन 1956 में राजा नवाथी की फिल्म आई बसंत बहार। इस फिल्म में ऐसा मौका आया जब फिल्म की सिचुएशन के मुताबिक शास्त्रीय संगीत की दिग्गज हस्ती पंडित भीमसेन जोशी को हराने की जिम्मेदारी पार्श्व गायक मन्ना डे को सौंपी गई। मन्ना डे तनाव में आ गए और चुपचाप पूना चले गए। उनकी पत्नी ने उन्हें समझाया कि आपका जो फर्ज है वो आपको निभाना होगा, ये तो सिर्फ फिल्मी गाना है, आपको ये गाना रिकॉर्ड करना ही होगा। और तब जाकर ये गाना रिकॉर्ड हुआ जो कालजयी बन गया।

अब आते हैं हिंदी सिनेमा की एक अजीमुशान फिल्म की ओर। ये फिल्म थी के आसिफ की मुगले आजम। इस फिल्म में एक खास सिचुएशन ऐसी है जिसके लिए के आसिफ को चाहिए थी पटियाला घराने के दिग्गज गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज।

किसी तरह उन्हें मनाया गया। कहते हैं कि उन्होंने के आसिफ से एक बड़ी रकम की मांग की थी, जिसे आसिफ साहब ने फौरन मान लिया था। और इस तरह से मुगले आजम में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज में दो गाने रिकॉर्ड हुए। एक गाना था ये, और दूसरा गाना था

1960 में आई फिल्म कोहिनूर। इस फिल्म में एक गाने में सितार बजाया था उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब ने। कहते हैं कि इस गाने में अभिनय के लिए दिलीप कुमार ने महीनों उस्ताद जी से सितार की तालीम ली थी। इसी तरह से फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें के इस गाने में तबला बजाया था बनारस के बेमिसाल तबला वादक गुदई महाराज यानी पंडित सामता प्रसाद जी ने। वी शांताराम ने सन 1964 में बनाई फिल्म गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में संगीत था रामलाल जी का, जो खुद एक सिद्ध शहनाई वादक थे। इस फिल्म का शीर्षक गीत गाया था जयपुर घराने की दिग्गज गायिका विदुषी किशोरी अमोनकर।

0: क्योंकि यहाँ हमने रामलाल जी की शहनाई का जिक्र किया तो इसी बहाने याद कर लें जाने माने शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब को। सन 1959 में आई विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई। इस फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक में शहनाई बजाई थी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब ने, पर गानों में बजी शहनाई रामलाल जी ने खुद बजाई थी। सन 1966 में एक फिल्म आई थी लड़की सह्याद्री की। वी शांताराम के निर्देशन वाली इस फिल्म में मेवाती घराने के प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज ने एक गीत गाया था।
1: वंदना करो अर्चना करो।
0: ये गीत राग अहीर भैरव पर आधारित था। गीतकार थे भरत व्यास और संगीतकार थे वसंत देसाई। बहुत बाद में पंडित जसराज ने फिल्म 1920 में ये गाना गाया। सन 1976 में आई फिल्म कादंबरी। इस फिल्म में संगीत दिया था उस्ताद विलायत खान साहब ने। उन्होंने इस फिल्म में आशा भोसले से अमृता प्रीतम की ये रचना गवाई थी।

जानी मानी गायिका विदुषी बेगम परवीन सुल्ताना ने भी कई फिल्मी गाने गाए हैं। उनका सबसे मशहूर गाना है फिल्म कुदरत का वो गीत, जिसे आर डी बर्मन ने स्वरबद्ध किया था। इस गाने के गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी। पर उन्होंने इसके अलावा भी कई फिल्मों में गाया है। विदुषी परवीन सुल्ताना ने फिल्म गदर में ये गीत गाया। इस गाने में उनके साथ थे पटियाला घराने के जाने माने गायक पंडित अजय चक्रवर्ती।

0: सन 1985 में अमोल पालेकर ने फिल्म अनकही बनाई। इस फिल्म का संगीत जयदेव ने दिया था। पंडित भीमसेन जोशी ने इस फिल्म में दो गाने गाए थे,
1: रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज।
0: सन 1985 में फिल्म आई सुरसंगम, जिसके जरिए शास्त्रीय संगीत की दुनिया के

0: जानी बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और जानी माने संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा ने ऐसे तो कई फिल्मी गानों में अपने अपने साजों का कमाल दिखाया है, पर आगे चलकर उन्होंने जोड़ी बनाई शिव हरि की जोड़ी और कई फिल्मों में संगीत दिया। ऐसी ही एक फिल्म थी सिलसिला
1: जो तुम तोड़ो पिया, मैं नहीं तोडूं रे।
0: जानी मानी सितार वादक पंडित रविशंकर ने कई फिल्मों में संगीत दिया, जैसे नीचा नगर, पाथेर पांचाली, अपराजितो वगैरह। पर उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा में क्या कमाल के गाने बनाए थे।
2: जाने कैसे

0: पंडित रविशंकर के संगीत से सजी एक और फिल्म थी गोदान।
1: ओ बेदर्दी क्यों तड़पाए जिए राम रज जाए ते, ओ निर्दर्दी मैं पछताई तुझसे निहाल।
0: सन 1997 में सई परांजपे ने फिल्म साज बनाई। इस फिल्म में उस्ताद जाकिर हुसैन ने न केवल अभिनय किया था बल्कि कुछ गाने भी बनाए थे। चूंकि जिक्र चला है तो आपको बता दें कि उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब ने भी कई फिल्मों में संगीत दिया था। यह है उनका संगीतबद्ध किया एक गाना।

आपने देखा कि शास्त्रीय संगीत की दिग्गज हस्तियों ने फिल्म संगीत का हाथ कभी कभी पकड़ा है। जब शास्त्रीय संगीत की बड़ी हस्तियां फिल्मी गानों से जुड़ती हैं, तो फिल्म संगीत और ज्यादा निखर जाता है। ये था विश्व संगीत दिवस के मौके पर चित्र भारती का संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में। और अब मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। मुंबई में 15 जून से 21 जून तक आयोजित किया जा रहा है 19वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म समारोह का आयोजन नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय करता है। ये एक ऐसा फिल्म समारोह है जिसमें डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्में दिखलाई जाती हैं। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना डॉक्यूमेंट्री फिल्म समारोह है। आपको बता दें कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आरंभ सन 1990 में हुआ था। ये फिल्म समारोह हर दूसरे बरस आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र को गोल्डन कॉन्च पुरस्कार दिया जाता है और 10 लाख रुपए नगद मिलते हैं। इस समारोह में इस बरस कुल मिलाकर 55 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रतियोगिता श्रेणी के सभी पुरस्कारों का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जूरी के द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता फिल्मों के अलावा AIFF जूरी रेट्रोस्पेक्टिव, बेस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स, MIFF प्रिज्म, कंट्री फोकस डॉक्यूमेंट्री और रीस्टोर्ड क्लासिक्स जैसे कई विशेष पैकेज इस फिल्म समारोह का हिस्सा हैं। इस फिल्म समारोह के दौरान पैनल चर्चा, एक खुला मंच, सेमिनार और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। ये फिल्म निर्माताओं और फिल्म प्रेमियों के लिए एक अनूठा मंच है, जहां आकर वो अपने विविध दृष्टिकोण साझा कर सकते हैं और आगे बढ़ने के अवसरों का पता लगा सकते हैं। इस फिल्म समारोह में एक सेक्शन है प्रिज्म, जिसमें भारत और दुनिया भर की चोटी की शानदार डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई जाएंगी। इस फिल्म समारोह में वेव्स डॉक बाजार का भी आयोजन किया जा रहा है। ये एक ऐसा मंच है जो फिल्म निर्माण की यात्रा को पोषित करेगा और गति प्रदान करेगा।

0: करेगा। इसमें है एक व्यूइंग रूम जहां रजिस्टर्ड रिप्रेजेंटेटिव को एक समूह के सामने अपनी डॉक्यूमेंट्री, लघु फिल्म या एनिमेशन फिल्म प्रदर्शित करनी होगी। इस तरह से ये जगह वितरण सौदे हासिल करने, सह निर्माताओं को आकर्षित करने और फिल्म महोत्सव स्क्रीनिंग के लिए पैसे जुटाने का एक लॉन्च पैड बनेगा। इसके अलावा एक इमर्सिव मार्केट भी है जो पहली बार शामिल किया जा रहा है। इसमें इमर्सिव कंटेंट क्रिएटर्स, प्रोड्यूसर्स और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के लिए एक मिलन स्थल होगा जहां आकर वो आपस में कोलैबोरेट कर पाएंगे। VR, AR, XR और इंटरएक्टिव अनुभवों पर केंद्रित ये मार्केट नई परियोजनाओं को प्रदर्शित करने और सहयोग को बढ़ावा देने का काम करेगा। इस बार के फिल्म समारोह में कई मास्टर क्लासेस भी आयोजित की जाएंगी, जैसे फास्ट फिल्म क्या माइक्रो ड्रामा सिनेमा का फास्ट फैशन है, या फिर विचार से रूपरेखा तक एक दृश्य की संरचना। ये थी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। और अब स्मृति शेष में आज हम नमन कर रहे हैं जानी मानी पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर को। 31 मई को सुमन कल्याणपुर हमारे बीच नहीं रही। स्मृति शेष। कम लोग जानते हैं कि सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को भवानीपुर बंगाल में हुआ था। ये जगह अब बांग्लादेश में है। पांच बहनों में सबसे बड़ी सुमन की परवरिश मुंबई में हुई। ये वो जमाना था जब लड़कियों को बाहर खेलने की इजाजत नहीं थी। ऐसे में उनकी दिलचस्पी गायन में हो गई।
1: 1953 में जब मैं आर्ट स्कूल में थी, मुझे किसी फिल्म के लिए गाने का मौका मिला, मगर केवल गाने ही रिकॉर्ड हो पाए, फिल्म नहीं बनी। उसके बाद एक मराठी फिल्म में गाना गाया, उसका नाम था शुक्राची चांदनी। लेकिन बात यह है कि उस फिल्म की चांदनी भी स्टूडियो के सेट पर भी उतरी नहीं, वो भी नहीं बन पाया। फिर उसके बाद शेख मुख्तार की फिल्म बनी मंगू, जिसका संगीत मोहम्मद शफी साहब ने दिया है। इस फिल्म के लिए मेरा गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ये देख कर के लता दीदी स्वयं वहां आई हैं और बहुत देर तक मुझसे बात करती रही, बिल्कुल सगी बहन की तरह।

0: इसके बाद उन्हें कुछ और गाने मिले, जैसे मियां बीवी राजी,
1: छोड़ो छोड़ो मेरी बहिया, सांवरे छोड़ो छोड़ो मेरी बहिया,
0: बात एक रात की,

और राजकुमार। सुमन कल्याणपुर के जीवन का सबसे बड़ा दुख ये रहा कि उनकी आवाज लता मंगेशकर से मिलती जुलती थी, तभी तो उनके गानों को लता मंगेशकर के गाने समझ लिया जाता था।

0: बहुत बरस पहले सुमन कल्याणपुर विविध भारती के स्टूडियो में आई थी और उन्होंने फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम पेश किया था।
1: कई बरसों के बाद आज फिर से मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है। आप हमें सुरक्षित जीवन प्रदान करते हैं, देश की आन बान के लिए अपने प्राणों की आहुति तक देने में पीछे नहीं हटते, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि हम आपके लिए कुछ नहीं सोचते। हम कलाकार अपनी कला से आपका मनोरंजन करते हैं, अपने गीतों से आपके हर क्षण में सहभागी बनते हैं। आप युद्ध में हों या शांति में, सुख में हों या दुख में, परिवार के साथ हों या अकेले, भीड़भाड़ वाले शहर में हों या सीमा के एकांत मोर्चे पर, हर जगह हर पल हम अपनी कला से अपने गीतों के जरिए आपके आसपास ही रहते हैं। आप सुन पाएं या ना सुन पाएं, मगर यकीन मानिए हम आपको ही आवाज़ देते रहते हैं।

मुझे बचपन से ही गाने का बड़ा शौक था। मेरे पिताजी और माताजी को भी संगीत का शौक था और इसीलिए हम सब बहन भाई संगीत में रुचि रखते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो उस जमाने में कुछ लोकप्रिय गीत गाया करती थी। उस जमाने के गायिकाओं में से नूरजहां जी और लता दीदी के गीत मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे। जिन गीतों ने मुझे बहुत आकर्षित किया वो गीत एक से बढ़कर एक मधुर हैं। और ऐसे कई गीत हैं जो मुझे बहुत ही पसंद हैं। जब भी कोई नया गीत हमें मिल जाता तो मैं और मेरी सहेली शारदा बल से हमारे छत पर बैठकर अक्सर वो गीत गाया करते थे। उनमें से कुछ गीतों की शुरुआत मैं आपको गाकर बताती हूँ। नूरजहां जी का ये गाना मुझे बहुत पसंद है।

0: मुझे याद है लता दीदी एक बार हमारे पड़ोस में आई थी, तब मैं स्कूल में पढ़ती थी। मैं बार बार इधर से उधर, उधर से इधर आ जा रही थी, बस लता दीदी को देखने के लिए, कुछ बोलने के लिए। मगर बोलना तो क्या, उनको देख भी ना पाई। खैर, धीरे धीरे समय बीत गया, मैं भी बड़ी हो गई।
1: एक समय ऐसा आया जब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच रॉयल्टी को लेकर मनमुटाव हो गया था। ऐसे में लता जी ने रफी साहब के साथ गाना बंद कर दिया था। इस पूरे दौर में सुमन कल्याणपुर ने मोहम्मद रफी के साथ कई युगल गीत गाए। फिल्म दिल ने फिर याद किया।

सुमन जी के गीतों में शामिल हैं कुछ भोजपुरी गाने भी। सुमन कल्याणपुर चली गई, लेकिन उनकी आवाज हमेशा कायम रहेगी और हमारे मन की वादियों में यादों के फूल खिलाती रहेगी।

ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का इस महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती मुंबई में किया गया।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशल्स रवाना हो गए। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। रवाना होने से पहले जारी अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री वहां भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच घनिष्ठ संबंध दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत बनाने में सहायक हैं। वेनेजुएला में भूकंप में मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3000 लोग इस आपदा में घायल हुए हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से चल रहा है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया।

0: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू किया है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले बृहस्पतिवार को पूरी कर ली गई। हरियाणा सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में 1 अक्टूबर से बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के ईंधन नहीं देने की नीति लागू करेगी। इसका उद्देश्य क्षेत्र की वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने यह निर्णय लिया। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि 1 मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा। मौसम विभाग ने उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल और आज याद कर रहे हैं गायक और संगीतकार राहुल देव बर्मन को।

राहुल देव बर्मन का संगीतबद्ध किया ये गीत आप सुन रहे थे। आंधी फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में था। गुलजार के बोल कार्यक्रम यादों के महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: नरम गरम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे राहुल देव बर्मन और सपन चक्रवर्ती की आवाजें गुलजार के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिनमें आज याद कर रहे हैं हम संगीतकार और गायक राहुल देवबर्मन को।

0: राहुल देव बर्मन की आवाज में उन्हीं का संगीतबद्ध किया गीत आप सुन रहे थे, जिसे लिखा गुलजार ने और ये गीत हमने आपको सुनवाया किताब फिल्म से। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

आशा भोसले और राहुल देवबर्मन की आवाजों में अपना देश फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल, राहुल देवबर्मन का संगीत, कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मुंबई से प्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 एफएम और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है अवधि लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग।
1: जिंदगी बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना खेड़िए मारा। आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
4: RHL गोल्ड DMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
5: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: हेलो
8: हेलो, सुनो, टेलीफोन नंबर।
9: माय नंबर इज
10: 7376804090। लाइव हेलो अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।
0: स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम लोक रंग में। पहला अवधि लोकगीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सावित्री सिंह व साथियों की आवाज में, नटका।

0: बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना।
1: डॉलकर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in।
5: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
6: आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से आप सुन रहे हैं अवधि लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। अगला गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं शीतला प्रसाद वर्मा और साथियों की आवाज में, ये विवाह गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शीतला प्रसाद वर्मा व साथियों की आवाज में ये विवाह गीत, और अब आइए आपको सुनवाते हैं अमरनाथ यादव व साथियों की आवाज में ये निर्गुण गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अवधि लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग 101.9 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजे हैं, प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या।
1: आपके अपने आकाशवाणी अयोध्या से सुनिए सुनैन आई हॉस्पिटल द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आई केयर फॉर यू कल रविवार को शाम 5:30 से।
2: रखो पर्यावरण का मान, पशु पक्षी और पेड़ है धरती की जान। वन्य जीव जंतु और अनमोल प्राकृतिक संसाधन जो इस पृथ्वी पर हम सबको जीवित रखने में मदद कर रहे हैं, आइए हम इनको बचाने का संकल्प लें। धरती को हरा भरा सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाएं, पानी बिजली और प्राकृतिक गैसों का कम से कम उपयोग करें। पर्यावरण को जहरीले धुएं, रसायनों, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक पॉलिथीन और हर तरह के प्रदूषण से मुक्त रखें, ताकि ये धरती इसी तरह से मानव सभ्यता की रक्षक बनी रहे।
0: हेलो अयोध्या कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। देखते हैं हमारे पहले श्रोता कौन है जो लाइन पर बन चुके हैं। हेलो।
3: हेलो, हाँ मैडम नमस्ते।
0: नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या नाम है आपका?
3: अर्जुन कुमार सोनकर, छोटा रमना देवखाली रोड अयोध्या।
0: अर्जुन जी, आज कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे आप?
3: जी मैं दुश्मन मैडम।
0: दुश्मन फिल्म का गीत सुनेंगे। और बताइए, आज तो बारिश हुई है?
3: हाँ बारिश तो हुई मैडम, लेकिन गर्म है बहुत है।
0: गर्मी उमस हो गई है।
3: हाँ मैडम गर्म है, उमस भी बहुत ज्यादा है।
0: चलिए अब बारिश की शुरुआत हो गई है तो मौसम भी अच्छा लग ही रहा है और धीरे धीरे चलिए बहुत दिनों से गर्मी से हम लोग जो है जूझ रहे थे, तो आज की बारिश ने जो है बहुत
3: सुकून मिली है,
0: बहुत सुकून दिया है। चलिए हम आपका गीत प्ले कर दें। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया
3: जी। मेरा

0: भाई देखते हैं हमारे इस धागे को जोड़ने, हमारे कार्यक्रम को जोड़ने कौन आ गया है। हेलो।
1: हेलो जी।
0: जी कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्ते, क्या नाम है आपका? शिव प्रसाद मौर्य जी बात कर रहे हैं। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? कोंडा से बात कर रहे हैं। शिव प्रसाद जी कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे आज आप?
1: मदर इंडिया का फिल्म सुना दीजिए मैडम गाना।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या कर रहे हैं इस समय आप?
1: इस समय तो खाना पीता पी कर आराम से लेते हैं, हवा खा रहे हैं, लेना चला रहे हैं।
0: गोंडा में बारिश हुई है या नहीं? गोंडा में बारिश हुई है आज या नहीं?
1: हल्का फुल्का हुआ है, कोई बारिश खास नहीं हुआ, लेकिन यह है थोड़ा बहुत तो
0: राहत मिल गई है। चलिए बहुत अच्छी बात है। आप आराम करते हुए अपना अपनी पसंद का ये गीत सुनिए।

0: बिल्कुल सही बात है, जैसा आदमी करता है वैसा ही उसको उभरना पड़ता है। हेलो,
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या नाम है आपका?
1: नाथ पांडे, गोंडा जिला से बात कर रहे हैं।
0: गोंडा से ये दूसरी कॉल लग गई है। कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे आप?
1: राजन से ससुराल का गाना सुना।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? हमारे पहले जो श्रोता थे वो भाई खाना वाना खा के आराम कर रहे थे, आप क्या कर रहे हैं?
1: विद्यालय से आए हैं, विद्यालय खुल गया है।
0: अच्छा, स्कूल स्कूल में आप पढ़ाते हैं, टीचर हैं आप?
1: जी
0: भाई, बहुत अच्छी बात है। चलिए, आप इस गाने को एंजॉय कीजिए। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचे अयोध्या के हर घर तक? तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गढ़ेया, अयोध्या। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: श्रोताओं आप सुन रहे हैं हेलो अयोध्या कार्यक्रम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। तो देखते हैं हमारे कौन से श्रोता हैं जो लाइन पर बन चुके हैं। हेलो
3: जी नमस्ते।
2: नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या नाम है आपका?
3: जी मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
2: उज्जैन से आपने कॉल की है?
3: जी हाँ।
2: प्रेम जी क्या करते जी हैं आप?
3: मैं खेती किसानी का काम करता हूँ और एक भजन गायक भी हूँ।
2: अरे वाह, बहुत ही अच्छी बात है कि आप खेती किसानी के साथ साथ और भजन के बहुत शौकीन हैं।
3: हाँ जी शौकीन, मतलब आपको बताऊँ हमारा 8 लोगों का ग्रुप बना हुआ है।
2: जी जी।
3: उसमें हम 4 लोग भजन गाते हैं, 2 हारमोनियम बजाते हैं, 1 ढोलक और 1 तबला बजाते हैं।
2: चलिए सभी में कुछ ना कुछ है, कोई बजाता है तो कोई गाता है, बहुत अच्छा लगा सुन के।
3: और मतलब हफ्ते 2-4 दिन में हमारा प्रोग्राम हमारे आसपास के एरिया में होता रहता है।
2: बहुत ही अच्छी बात है ये तो। और कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे आज आप?
3: हीरो नंबर 1 फिल्म का सुनवा दीजिएगा, सोना कितना सोना है।
2: चलिए बिना देर किए हुए हम आपके पसंद का गीत आपको सुनवाते हैं। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
3: थैंक यू सो मच।
2: वेलकम।

0: हेलो
1: हेलो मैम, गुड आफ्टरनून.
0: गुड आफ्टरनून. कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगी? क्षमा पांडे. मुंबई से बात कर रही हैं. कौन सा गाना आज आप सुनेंगी?
1: सजरंगी भाई जान का सुना दीजिए.
0: बहुत अच्छी बात है क्षमा, आपने मुंबई से कॉल की है. और क्या करती हैं आप?
1: हाउसवाइफ
0: हूँ. हाउसवाइफ हैं. फैमिली में कौन कौन है?
1: मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं.
0: अच्छा क्षमा,
1: बहुत बड़ा परिवार है साथ में.
0: बहुत सारा मतलब ज्वाइंट फैमिली है आपकी?
1: ज्वाइंट फैमिली है.
0: ज्वाइंट फैमिली में रहना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अकेले तो कोई मजा नहीं आता है ना?
1: जी बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है. सब लोग इकट्ठा रहते हैं.
0: बिल्कुल सही बात है.
1: अभी तो गर्मी छुट्टी में सब लोग आए और अच्छा लग रहा है.
0: ये बात सही है. गर्मी की छुट्टियों में जितने सारे हमारे दूर दराज के रिश्तेदार हैं वो हमसे मिलने आ जाते हैं क्योंकि बच्चों की छुट्टियां जो हो जाती हैं.
1: जी छुट्टी छुट्टी तो आते हैं सब.
0: बिल्कुल. तो क्षमा हम आपका गाना सुनवा दें आपको.
1: जी मैम,
0: कॉल करने के लिए बहुत
1: बहुत
0: शुक्रिया.
1: थैंक यू.
0: वेलकम.
1: कॉल रिसीव करने के लिए, गाना सुनाने के लिए. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा.
0: थैंक यू.
1: बहुत दिन बाद मेरी कॉल लगी थी.
0: थैंक यू क्षमा. और अपनी पसंद का गाना सुनिए.
2: तू बुलाता है तेरे दर पर सर झुकाए मैं भी आया हूँ जिसकी बिगड़ी

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, कहाँ से बात करें, क्या नाम है आपका?
1: मास्टर राधेश्याम बोल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट काकरण से।
0: नमस्ते
1: नमस्ते मैम।
0: राधेश्याम जी, क्या करते हैं आप?
1: मैं इंटर कॉलेज में लेक्चरर हूँ मैथ का।
0: बहुत अच्छी बात है कि आपसे बात हो पा रही है। और कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, आपको गाना सुनवा दें।
1: फिल्म का नाम है सनम और गाने के बोले आंखों में नींद ने दिल में करार।
0: बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, चलिए हम आपके लिए प्ले करते हैं और इस सॉन्ग को एंजॉय कीजिए। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक्स मैम।

दोस्तों हेलो अयोध्या कार्यक्रम को आप तक सुचारू रूप से पहुंचाने में कंट्रोल रूम से हमें तकनीकी सहयोग दे रहे थे विनोद कुमार चौधरी जी। आप इस सॉन्ग को एंजॉय कीजिए।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 एफएम और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। दोपहर के 1:30 हुए। प्रस्तुत है फेसबुक फरमाइशी कार्यक्रम कुछ तुमने कहा।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: और भाई साहब, क्या हाल है
3: यार? हाल चाल तो हम लेते रहेंगे, लेकिन अभी आपने इस सड़क का हाल बेहाल कर दिया, इस पर थूक कर। और ये क्या, अब आप रैपर भी यहीं फेंक देंगे? बगल में डस्टबिन है।
2: बात तो आपने बिल्कुल सही कही है भाई साहब, आगे से ऐसा नहीं करूंगा।
3: अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहर की स्वच्छता और सुंदरता बहुत जरूरी है। स्वच्छ भारत के निर्माण और देश की छवि सुधारने का ये सही समय और मौका है।
4: ये तपती धूप सिर्फ हमें ही नहीं सताती, जरा सोचिए उन बेजुबान पंछियों के बारे में जिनका गला सूख रहा है लेकिन वो पानी मांग नहीं सकते।
5: और वो सड़क पर रहने वाले जानवर जो छांव और एक घूंट पानी की तलाश में मीलों भटकते हैं।
4: इस भीषण गर्मी में इंसानियत का धर्म निभाएं, अपनी छत, बालकनी या घर के बाहर एक मिट्टी के बर्तन में साफ पानी जरूर रखें।
5: पंछियों के लिए पानी के साथ थोड़ा दाना भी रखें और हो सके किसी छायादार जगह पर पानी की व्यवस्था करें।
4: ध्यान रहे, मिट्टी का बर्तन सबसे अच्छा है क्योंकि इसमें पानी ठंडा रहता है, बस रोज पानी बदलना ना भूलें।
5: आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जान बचा सकता है।
4: इस गर्मी प्यास को हराएं, इंसानियत का फर्ज निभाएं।
0: स्वागत करते हैं हमारे सभी श्रोताओं का फेसबुक फरमाइशी कार्यक्रम कुछ तुमने कहा में, जिसे लेकर आज आपके साथ है आपकी दोस्त प्रियंका। दोस्तों, जिंदगी एक खूबसूरत संगीत की तरह है, हर खुशी एक मधुर धुन है और छोटी मोटी मुश्किलें जीवन में ताल और लय बनाए रखने के लिए जरूरी ठहराव की तरह होती है। संगीत वो शक्ति है जो निराशा में भी आशा की किरण जगाती है। तो आइए देखते हैं कि हमारे कौन कौन से श्रोता हैं जो संगीत से जुड़ने के लिए फरमाइश कर रहे हैं। पहली फरमाइश आई है मुल्तान नगर दिल्ली से सुरेंद्र खुराना की। बाबा कुटीर रायगढ़ से फरमाइश की है शिव चौहान ने। अबू धाबी यूएई से फरमाइश की है शेख।

जियाउर रहमान ने कृष्णा पार्क दिल्ली से फरमाइश करने वाले श्रोता हैं। सुखविंदर सिंह जौड़ा नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से फरमाइश की है। महाराज कीर्तन गोस्वामी ने बड़ी कैबी चौराहा वाराणसी से फरमाइश की है। अरुण कुमार मालवीय ने सिद्धार्थ नगर दरियापुर से फरमाइश की है। गजानन येले ने गाजीपुर से फरमाइश की है। सुरेश जायसवाल ने बटीडा रोड डबवाली से फरमाइश की है। राजेंद्र नारंग ने परभड़ी महाराष्ट्र से फरमाइश की है। रूपेश संघई ने नाथाना पंजाब से फरमाइश करने वाले श्रोता है। हरजिंदर छिंदा दुर्गा कॉलोनी झांसी से फरमाइश की है। राजू मिगलानी ने छत्तीसगढ़ से फरमाइश करने वाले श्रोता है। पटवा जी मधुबनी बिहार से फरमाइश की है। अरविंद कुमार ने बागपत से फरमाइश की है। संजय ढिंगिया ने विदिशा मध्य प्रदेश से फरमाइश की है। कल्याण सेन ने एसएसबी नगर नवाशहर से फरमाइश की है। सुखविंदर साधु ने सिरसा हरियाणा से फरमाइश की है। राधेश्याम वर्मा ने राजधानी रायपुर से फरमाइश की है। नीलू मेघ ने गिरिडीह झारखंड से फरमाइश की है। मोहम्मद यासीन अंजान ने अंबाला हरियाणा से फरमाइश करने वाले श्रोता है। रवि कुमार राहुल भागलपुर से फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं। ये बिहार से फरमाइश इन्होंने की है। विनोद कुमार यादव है हनुमानगढ़ राजस्थान से फरमाइश की है। मोहम्मद रजाक ने कवर कॉलोनी बड़वाह से फरमाइश की है। प्रवीण श्रीमाली ने बहलोल नगर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से फरमाइश की है। प्रेम सिंह वरवाल ने राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से फरमाइश की है। सोहन लाल साहू ने और कालका से फरमाइश की है। सुभाष चंद्र बजाज ने आप सभी सुनना चाहते हैं हम फिल्म का गीत मोहम्मद अजीज और शोभा जोशी की आवाज में।

दोस्तों, संगीत की तरह ही हमारी जिंदगी भी कई सुरों से मिलकर बनती है। वो उतार चढ़ाव जो हमें मजबूत बनाते हैं और जीवन को आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ, और हम भी आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली फरमाइश हमारे किन श्रोताओं ने भेजी है। दोस्तों, अगली फेसबुक फरमाइश हमारे पास आई है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा की। रतलाम मध्य प्रदेश से फरमाइश की है नरेंद्र सिंह पवार ने। उज्जैन मध्य प्रदेश से फरमाइश की है विनोद मूरत ने। उसावा जिला बदायूं से फरमाइश करने वाले श्रोता हैं सोमेंद्र यादव। लोहारी डी करवदा छत्तीसगढ़ से फरमाइश की है अशोक कुमार साहू ने। कलानौर से फरमाइश की है नरिंदर शर्मा जेटली ने। पुराना शहर बरेली से फरमाइश की है अनोखे लाल ने। डोगर गांव छत्तीसगढ़ से फरमाइश की है राजपाल गजवीय ने। मजनू कटिल्ला से फरमाइश की है कमल बालूजा ने। निजामाबाद से फरमाइश की है शेख अल्लाह बख्श ने। उज्जैन मध्य प्रदेश से फरमाइश करने वाले श्रोता हैं भेरू लाल धाकड़। शाही मार्केट बिजनौर से फरमाइश की है आसिफ चौधरी ने। लक्कड़ बाजार खंडवा से फरमाइश की है मोहम्मद रफीक पवार ने। जाखोद राजस्थान से फरमाइश की है अशोक श्याम कुंवर ने। धमतरी छत्तीसगढ़ से फरमाइश करने वाले श्रोता है चंद्रकांत साहू। औरंगाबाद महाराष्ट्र से फरमाइश की है अनिल कुमार घोटके ने। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से फरमाइश की है नाना लामसे ने। शाहदरा दिल्ली से फरमाइश की है तुलसी मस्कीन ने। अलीगंज एटा से फरमाइश की है दीपक शाकिया ने। लदावली मुरादाबाद से फरमाइश की है अजीत कसाना ने। बागपत से फरमाइश की है जगमोहन सिंह प्रजापत ने। हमीरपुर उत्तर प्रदेश से फरमाइश की है मनीराम पाल ने। दूल्हापुर मुरादाबाद से फरमाइश की है मुकेश कश्यप ने। मुंगेली छत्तीसगढ़ से फरमाइश की है उत्तरा दिवाकर ने। और जबलपुर मध्य प्रदेश से फरमाइश की है माधव नामदेव ने। तुम बिन फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में।

0: आपके अपने आकाशवाणी अयोध्या से सुनिए सुनैन आई हॉस्पिटल द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आई केयर फॉर यू कल रविवार को शाम 5:30 से।
1: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीद है नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। मन की बात।
2: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधी लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोक गीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश

0: लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से आप सुन रहे हैं फेसबुक फरमाइशी कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। दोस्तों, जब शब्द कम पड़ जाते हैं तब संगीत भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करता है। ये खुशी, दुख, प्रेम और उत्साह सभी भावनाओं का आईना होता है। और आगे देखते हैं कि हमारे किन श्रोताओं ने फरमाइश लिख भेजी है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से फरमाइश की है मुकेश गोस्वामी ने। हरिद्वार उत्तराखंड से फरमाइश करने वाले श्रोता है ताज अंसारी। रिंगनी छत्तीसगढ़ से फरमाइश की है दिनेश वर्मा ने। सांगली जिले के जत शहर से फरमाइश की है अल्ताफ उजरे ने। बगेरा दुर्ग से फरमाइश की है संतोष नामदेव ने। हिंगोली महाराष्ट्र से फरमाइश की है शाहजी बोटखे ने। नरवेल महाराष्ट्र से फरमाइश की है पुंजाजी नावकर ने। सहारनपुर से फरमाइश की है राधा नामदेव ने। नेपानगर मध्य प्रदेश से फरमाइश की है सुदर्शन शाह ने। अनारकली बाजार जगराव से फरमाइश की है सुनील पाठक ने। रतलाम मध्य प्रदेश से फरमाइश की है विक्रम मालवीय ने। सहारनपुर से फरमाइश की है मसरूर हसन ने। मोहाली पंजाब से फरमाइश की है बब्बल मेहता ने। मंदसौर मध्य प्रदेश से फरमाइश की है ईश्वर मेहर ने। सोलापुर से फरमाइश की है विष्णु टेलर ने। सिरसा हरियाणा से फरमाइश की है सुभाष लूना ने। हनुमानगढ़ राजस्थान से फरमाइश की है वेद प्रकाश मीणा ने। दलपतपुर से फरमाइश करने वाले श्रोता है ओम पाल गंगवार। वीरमगाम से फरमाइश की है अजीत भावसर ने। नंगल खेड़ा पंजाब से फरमाइश की है बालकृष्ण ने। कोल सिटी बरकाना से फरमाइश की है मोहम्मद अफजल ताज ने। चितलवाड़ी अकोला से फरमाइश की है अमोल इंगले ने। बीड शहर महाराष्ट्र से फरमाइश की है नंदकिशोर घटे ने। उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से फरमाइश की है उमा सिंह ने। संबलपुर कांकेर से फरमाइश की है फागूराम यादव ने। और गोराया जालंधर से फरमाइश की है संदीप कुमार ने। आप सभी सुनना चाहते हैं राजा हिंदुस्तानी फिल्म का गीत अलका याग्निक की आवाज में।

दोस्तों, संगीत जीवन की निरस्ता को दूर कर उसे रंगों और खुशियों से भर देता है। ये हमारी आत्मा का वो भोजन है जो हमें अंदर से मजबूत और सकारात्मक बनाता है। और देखते हैं, नांदेड़ महाराष्ट्र से फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं बालू गढ़बले। जोधपुर राजस्थान से फरमाइश की है रमेश चौहान ने। कोकरा वाली श्रीगंगानगर शहर से फरमाइश की है वरासा ने। धनौरी तेलीवारा उत्तराखंड से फरमाइश की है निसार सलमानी ने। सिरसा हरियाणा से फरमाइश की है सतवीर सिंह विजारनिया ने। फिरोजपुर पंजाब से फरमाइश की है स्वर्ण गिल ने। गंज डुनवारा से फरमाइश की है मोहम्मद कलीम अंसारी ने। हरहरपुर मटकली बरेली से फरमाइश की है शाहरून नूर अंसारी ने। टीकमगढ़ मध्यप्रदेश से फरमाइश की है राजेश ने। पंचकूला चंडीगढ़ से फरमाइश की है तुलसीदास मस्कीन ने। फैजाबाद अयोध्या से फरमाइश की है रामदास यादव ने। मंगीसापुर से फरमाइश की है जाकिर मंसूरी ने। इटाला महाराष्ट्र से फरमाइश की है शंकरलाल जायसवाल ने। परेला टीकमगढ़ से फरमाइश की है ब्रजेंद्र विश्वकर्मा ने। जलालाबाद से फरमाइश की है सुरेश गगनेजा ने। गांव बांडीवाला से फरमाइश की है ओम बगड़िया ने। नवाबगंज कोंडा से फरमाइश की है शिवराम निषाद ने। जौनपुर से फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं इरशाद अहमद अंसारी। रोपर पंजाब से फरमाइश की है मीका वीरक ने। श्रीगंगानगर राजस्थान से फरमाइश करने वाले श्रोता हैं लालगिरी गोस्वामी। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से फरमाइश की है रविन्द्र सिंह छाबड़ा ने। और खैल बाजार पानीपत से फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं नरेश मल्होत्रा नीटू। आप सभी सुनना चाहते हैं रंग फिल्म का गीत अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फेसबुक फरमाइशी कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। 101.9 एफएम और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2 बजे हैं, प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: सुनत हो सखी, सुनत हो कार्यक्रम मंगना माँ हो वाला है का खास?
5: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुनत है। अब फरमाइशी लोकगीत, लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
4: हाँ, जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर।
5: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
6: लोक सुरमाला, आपकी पसंद।
0: स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का आपके पसंदीदा कार्यक्रम गीतांजलि में, और ये पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कुणाल और श्वेता पंडित की आवाज में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 एफएम और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। 2:15 होने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार, जिसे हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंचेंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हार्मनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सेशल्स में भारत के राजदूत रोहित रथीश ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
2: $175 million इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, उसको आगे कैसे बढ़ाएं, उसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उसमें काम भी शुरू हुआ है और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट $175 million पैकेज, उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विजिट में। दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें, इसकी भी बातचीत होगा।
0: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है।

0: उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है।
1: प्रधानमंत्री मोदी के कामों की बात करें तो वो एक ऐसे देश का नेतृत्व कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से जबरदस्त तरक्की कर रहा है और एक वैश्विक शक्ति के रूप में पहचान बना रहा है, एक ऐसा देश जिसकी वैश्विक स्तर पर फैसलों में अहम भूमिका रहती है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा।
2: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले दो वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
3: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो। वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: श्री अमित शाह ने डेयरी उत्पादों से संबंधित अमूल सहकारी अभियान की भी सफलता का उल्लेख किया।
3: एक टैक्सी बनाने का विचार आया कोऑपरेटिव बेसिस पर, तो सब लोग परेशान थे कि भाई पैसा कहाँ से लाएंगे। तो मैंने कुछ कोऑपरेटिव संस्थाओं को कहलवाया भी, बुलाया भी। मुझे आनंद है कि NCDC, IFFCO, CRIPCO, NDDB, NABARD, NCEL, अमूल, ये सब ने मिलकर बड़ी से बड़ी कंपनियों से लोहा लेने के लिए ड्राइवरों की, सारथियों की अपनी एक कोऑपरेटिव बनाने का फैसला।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में MSME दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में MSME क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है।
4: That is the only way that our MSME can go to the next level, and it is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress.
0: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लक्ष्य, खाद्य एवं औषधि सुधार तथा संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा

0: 3 जुलाई से शुरू होगी। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी होने की सूचना मिली थी। परिषद ने कहा है कि परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर डाली जाएगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले पूरी हो गई। कोलकाता के तारातला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आज बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान है। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक के भाग्यराज का आज चेन्नई में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे तमिल सिनेमा में अपनी प्रभावशाली पटकथाओं और संवाद लेखन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 25 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया और लगभग 75 फिल्मों में अभिनय किया। राज्य सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
1: समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहंते ने कहा कि परमाणु ऊर्जा को हाइड्रोजन उत्पादन जैसी उभरती हुई स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के साथ जोड़ना टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा जिसमें भरोसेमंद और कार्बन मुक्त बिजली देने की खास क्षमता है, वह बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन में मदद करने के लिए उपयुक्त है। ये सुविधा एक तकनीक प्रदर्शन इकाई के तौर पर स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित CUCI थर्मोकेमिकल प्रक्रिया का इस्तेमाल करके परमाणु ऊर्जा से हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करना है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि 1 मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के विशिष्ट कृषि उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। नई दिल्ली में आज 3 दिवसीय त्रिपुरा वैश्विक अनानास महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव से अनानास के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की संस्कृति, हस्तशिल्प तथा पर्यटन को भी वैश्विक पहचान मिलेगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। राउंड ऑफ 32 में मिस्र का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट दौर में जगह बना ली। बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में भारत ने कजाकिस्तान को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ग्रुप सी में चीनी ताइपे, कजाकिस्तान और फिलीपींस के साथ है। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी लोकायन 26 अभियान के अंतर्गत अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर बंदरगाह पहुंच गया है। यात्रा का उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और भारत तथा अमेरिका की नौसेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना है। पोत अपने प्रवास के दौरान समुद्री सहयोग और सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों में शामिल होगा। इससे पहले INS सुदर्शनी ने

0: वर्जीनिया के नॉरफॉक में आयोजित सेल 250 समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशेल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब नारी जगत के अंतर्गत बहने सुने अपना कार्यक्रम हेलो सहेली।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना,
3: नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम,
4: RHL गोल्ड टीम टीसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com
6: भागती दौड़ती जिंदगी में क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं सच में खुश हूँ या सिर्फ जी रहा हूँ?
7: हर दिन की थकान, मन का बोझ और अंदर की बेचैनी, कहीं ना कहीं ये सब हमें खुद से दूर कर देती हैं।
6: लेकिन एक रास्ता है जो आपको फिर से आप से मिलाता है।
7: जी हाँ, और वो है योग।
6: जब आपका मन, शरीर और आत्मा एक हो जाएं, वही सच्चा योग है।
7: एक ऐसी ऊर्जा जो आपको भीतर से मजबूत बनाती है।
6: थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, तन को वज्रासन की मजबूती दीजिए,
7: मन को पद्मासन की शांति दीजिए
6: और दिमाग को सूर्य की तरह तेज बनाइए।
7: योग करिए, निरोग रहिए।
8: सजीव फोन इन प्रोग्राम हेलो सहेली में आप सभी बहनों का स्वागत है और साथ ही आपको पुष्पा का नमस्कार। तो बहनों, नंबर डायल करिए 73-76-80-40-90 और शामिल हो जाइए अपने मनपसंद फोन इन प्रोग्राम हेलो सहेली में। और आज जिस विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे तो उसका विषय है, क्या कर रही हैं आप अपने स्मार्टफोन का स्मार्ट उपयोग। तो भाई, बहुत सारे आपके मन में विचार होंगे इस विषय पर हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जल्दी से आप 73-76-80-40-90 डायल करिए और हमें आपका बस इंतज़ार है कि आप जल्दी से जल्दी आप हमारे साथ जुड़ जाइए। और देखिए बहनों, कॉल्स तो भाई, रिंग तो हमें सुनाई पड़ गई, देखते हैं कौन सी हमारी जो है बहन है। और भाई 73-76, हेलो,
9: नमस्ते,
8: स्वागत है आपका। अपना नाम बता दीजिए।
9: महक
8: जी, स्वागत है। कहाँ से कॉल किया आपने? अयोध्या से किया है। तो आप अपने स्मार्टफोन का स्मार्ट उपयोग करती हैं क्या? मतलब आप जो मोबाइल फोन चलाती हैं,
9: यस मैम,
8: तो आपको क्या उससे फायदे हैं, पहले तो फायदे बता दीजिए।
9: मैम, हमें ये फायदे, अगर हम पढ़ते हैं, लिखते हैं तो फिर उससे हमें अच्छी अच्छी चीजें, नई नई चीजें प्राप्त होती हैं और हमें इसका गलत उपयोग नहीं करना चाहिए, पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए।
8: बिल्कुल।

0: और कुकिंग वगैरह नई नई डिशेस बनानी हो वो भी तो आपको इसी से जानकारी मिलती है। चलिए महक जी, आपने भाई आपको तो मालूम है कि क्या क्या फायदे हैं इसके, और नुकसान भी आपको शायद पता ही होगा कि हाँ किस हद तक हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और हमारी बहनें लगातार जो है जुड़ रही हैं, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई आज के समय में अगर हमारा स्मार्टफोन हमसे दूर हो जाए तो हमें बड़ी बेचैनी सी होती है। हेलो, है ना, आपने भी ये गौर किया होगा कि अगर हमारा जो स्मार्टफोन है अगर हमसे दूर हो जाता है तो बड़ी बेचैनी सी होती है, जैसे लगता है जिंदगी स्मार्टफोन के बिना अधूरी है। ऐसा है क्या? तो भाई ऐसा क्या है हमारे इस स्मार्टफोन में जिसे हमें इतना लगाव होता है, हम इससे दूर नहीं हो पाते? तो भाई शिक्षा और ज्ञान का भंडार है, संचार का माध्यम है। हेलो, हमें इससे डिजिटल सेवाएं उपलब्ध होती हैं। हेलो, हाँ स्वागत है आपका, नाम बता दीजिए अपना।
1: पूनम
0: जी, कहाँ से आपने कॉल किया है?
1: पूरा बाजार
0: अयोध्या से। तो आप मोबाइल फोन से आप क्या अच्छी चीजें आप करती हैं? मोबाइल फोन आप चलाती हैं तो आपको उससे क्या क्या फायदे हैं?
1: क्या फायदे हैं? मैं पढ़ने लिखने वाला और कोनो काम भी।
0: कुछ आप सीख पाती हैं मोबाइल से अपने?
1: जी।
0: क्या सीख रही हैं? कुछ ऐसी चीज जो आप बताइए जो आपने सीखा हो।
1: देखिए बहुत कुछ सीखा जाता है, फूल पार्टी और बनाया जाता
0: है। कोई आपको शौक है कोई चीज का, जैसे आप कुछ करना चाहती हैं जिसमें आप मोबाइल ने आपका सहयोग किया हो? चलिए पूनम जी, आपने कॉल किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहनों हम यही कह रहे हैं ना कि शिक्षा और ज्ञान का भंडार है, बहुत सारी चीजें हैं, रोजगार व्यवसाय के लिए भी ये बहुत जरूरी है। हेलो,
2: हेलो नमस्ते, मैं अनु पांडे बात कर रही हूँ गोंडा की।
0: गोंडा से अनु पांडे जी, स्वागत है आपका। तो अनु जी आप क्या कहना चाहेंगी?
2: जी मैं
0: मोबाइल स्मार्टफोन के बारे में क्या कहना चाहेंगी आप?
2: मैं स्मार्टफोन के बारे में तो मैं यही बोलना चाहूंगी, वो तो खुद पे निर्भर करता है मैं उसके उपयोग कैसे कर रही हूँ। अगर मैं अच्छे से उपयोग कर रही हूँ तो उससे बहुत सारे फायदे हैं, मैं बहुत सारी चीजें सीख सकती हूँ, जैसे पढ़ाई हो गया, कुकिंग हो गया, मुझे सीनरी बनाना है, कुछ भी बनाना हो गया, घर को सजाना हो गया। जैसे गेम में रुचि है तो मान लो हमारे पास टाइम नहीं, बहुत बिजी है तो हम कमेंट्री नहीं सुन सकते, लाइव देख नहीं सकते, तो हम फोन पे स्कोर देख सकते हैं, उससे हमारा टाइम भी बच जाएगा और हमको पता भी चलता रहेगा कि अभी क्या स्कोर हुआ क्या हुआ। तो इससे बहुत सारे फायदे हैं।
0: कुछ ऐप वगैरह आपने जो सरकारी जो ऐप होते हैं या और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है जो अगर हम लोग डाउनलोड करके रखते हैं तो उससे हमें बहुत फायदे होते हैं, हमें घर बैठे बहुत सारा काम हमारा हो जाता है।
2: हाँ, मैं ऑनलाइन काम हो जाता है, जैसे हम ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं और कोई भी रोजगार निकला तो उसके बारे में हमको पता चल जाता है।
0: बिल्कुल अनु जी, आपको तो बहुत सारी जानकारी है और हमारी बहने हम तो यही चाहते हैं कि स्मार्टफोन वो चलाती हैं तो बहुत सारे जो फायदे हैं स्मार्टफोन से।
2: हाँ। और मैंने फायदे जैसे हमको कहीं हम शॉपिंग करने जा रहे हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो हमको कैश लेकर साथ में चलने की जरूरत नहीं है, हम फोन से ही पे कर देंगे। तो बहुत सारे फायदे हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं तो मान लो बच्चे फोन देखने के लिए जिद कर रहे हैं तो हम बच्चे को कुछ ऐसी लत लगाए जो पढ़ने की चीजें देखे, जैसे उनको कहानी वहानी लगा कर दे देखने के लिए, तो वो अगर देखने लगेंगे तो उसी तरफ उनका भी इंटरेस्ट आएगा, तो उससे उनको सीखने को भी मिल जाएगा और फोन भी चला लेंगे, कुछ देख भी लेंगे।
0: चलिए अनु जी, आप अपने विचार आपने हमसे साझा किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई हमारा स्मार्टफोन है तो काम का, एक वरदान जैसा हम तो यही कहेंगे कि इसका उपयोग समझदारी और जिम्मेदारी से अगर किया जाए तो भाई ये जो है ज्ञान सुविधा और प्रगति की ओर हमें ले जाता है, जबकि अगर हम इसका गलत उपयोग करते हैं या रील्स देखने में अपना टाइम बर्बाद करते हैं कि तो भाई ये। हेलो, तो अगर हम इसको रील्स देखने में बैठ के घंटों बिता देते हैं तो हमारा समय तो खराब होता है, स्वास्थ्य

स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए भी बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। हेलो, हमारी बहनें लगातार जुड़ने की कोशिश कर रही हैं। हम चाहते भी हैं कि हमारी बहनें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कार्यक्रम में शामिल हों और अपने विचार जो है उनके मन में जो चल रहा है वो हमसे साझा करें। और 73-76-80-40-90 ये नंबर है हमारा। हेलो, और जो हमारा आज का विषय है, क्या आप कर रही हैं अपने स्मार्टफोन का स्मार्ट उपयोग? भाई, स्मार्टफोन का स्मार्ट उपयोग कैसे करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि ऑनलाइन पढ़ाई है, प्रशिक्षण के लिए बहुत ही अच्छा और ये सुविधाजनक माध्यम होता है। हेलो हेलो, बात अगर करें नई भाषाएं सीखने की, जैसे अभी हम लोगों को कोई नई भाषा सीखनी है तो हम लोग कहाँ जाएंगे, कौन से टीचर को ढूंढेंगे? तो भाई, घर बैठे हम बहुत सारी भाषाएं, अगर हमारे अंदर चाह है सीखने की तो घर बैठकर हम बहुत तरह से बहुत सारी चीज़ें। हेलो हेलो, घर बैठकर हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। नई टेक्निक है या कोई कौशल। हेलो, किसी क्षेत्र में हम अपना रोजगार करना चाहते हैं, कुछ व्यवसाय करना चाहते हैं, तो उसमें भी जो है होता है हमारा जो स्मार्टफोन हमारी बहुत मदद करता है। नई नई चीज़ें हैं, नई टेक्निक है, उसको हम जानना चाहते हैं, तो भाई अपना बस बटन दबाइए और जानकारी आपके सामने। कहाँ कितनी ऊंचाइयों तक आपको जाना है, इसमें हमारी जो है काफ़ी हेल्प करता है हमारा स्मार्टफोन। हेलो,

0: हेलो। और बनो, संचार के माध्यम में तो इसका जवाब नहीं है। परिवार और मित्रों से जुड़ने की बात अगर हो, भले ही वो हमसे सात समंदर पार बैठे हों, लेकिन देखती है ना, क्षण भर में ही बात तो हम कर ही लेते हैं। और जो वीडियो कॉल होता है ना, उस पे हम हाल परिस्थिति, किस हाल में हैं, किस जगह पे हैं। हेलो। तो ये सब जो है हमें उपलब्ध हो जाता है। वह क्षण भर की देरी होती है कि बस हमने नंबर डायल किया और जो है हेलो। तो बहनों, ये सारी चीजें हैं कि हेलो हेलो हेलो। तो हम यही चाहते हैं, हमारी बहनें जो है लगातार प्रयास कर रही हैं, किन्हीं कारणों से उनका जो है कॉल नहीं लग पा रही है, हमें बहुत हेलो। मैंने एक सुनते हैं अपने कार्यक्रम में, एक गीत शामिल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
1: हेलो 9821026212 BPL। अरे 9820026235 मैक्स टच।

0: हेलो, आपकी कॉल लग गई है, आप बात करिए। और हमारा आपको हम बता दें विशेष रूप से कि हमारा ये महिलाओं का विशेष प्रोग्राम आता है, तो हमारी बहनें इसमें जुड़ती हैं और हम उनसे ही चाहते हैं कि वो अपने विचार साझा करें। हेलो, रेडियो से थोड़ा दूर हो जाइए आप। हेलो,
1: इट्स ऑलराइट, इट्स ऑलराइट, इट्स ऑलराइट, इट्स ऑलराइट।

0: हेलो।
1: हाँ मैम, मैं अदिति बोल रही हूँ।
0: अदिति जी स्वागत है आपका, कहाँ से कॉल किया आपने?
1: मैं अयोध्या से बोल रही हूँ।
0: अयोध्या से। आज देखिए हमारा टॉपिक है, क्या आप कर रही हैं अपने स्मार्टफोन का स्मार्ट उपयोग?
1: यस मैम।
0: तो आपने कुछ नंबर्स वगैरह डायल कर रखे हैं, हेल्पलाइन नंबर्स हैं जैसे, वो आपने सेव कर रखे हैं अपने फोन में?
1: यस मैम, सेव कर रखे हैं, उनको यूज भी करती हूँ।
0: यूज भी करती है ना? कुछ नंबर याद है जो आप शेयर कर सकती हैं?
1: मैम याद तो नहीं है।
0: चलिए मैम, कोई बात नहीं। अदिति जी आप और क्या कहना चाहेंगी स्मार्टफोन से? क्या
1: कहना चाहेंगी, स्मार्टफोन है तो सही अच्छी चीज, लेकिन उसका सही उपयोग करना ही उचित है। क्योंकि वो बहुत बड़ा नुकसान भी पहुंचाता है।
0: बिल्कुल, किस तरह से नुकसान पहुंचाता है कुछ बताएंगी आप?
1: मैम उसके रेस से कैंसर हो सकता है, और उसकी बैटरी में मैम रेस उसको उससे ब्लास्ट हो सकता है अगर ज्यादा यूज करो तो। मैम उसका बहुत सारे नुकसान है, इसका सही उपयोग करना बताएं मैम।
0: उपयोग बताइए।
1: हम शेड्यूल बनाए अपने फोन का उपयोग, दिन भर की योजना बनाने, मीटिंग शेड्यूल करना, टू डू लिस्ट मैनेज करने के लिए मिंट मोबाइल करें। सोशल मीडिया इंटरनेट ऐप्स को दिन में केवल एक या दो बार निश्चित समय के लिए ही खोलें।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और क्या कहना चाहेंगी?
1: ऐसा करने से आप बिना मतलब के स्क्रॉल करते रहने से बच जाते हैं।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें आपने बताई अदिति जी। और फ्रॉड से बचने के लिए कुछ आइडियाज हैं आपके पास?
1: क्या चीज मैम?
0: फ्रॉड जो होता है ना स्मार्टफोन के द्वारा ही,
1: एक ऐप होती है मेरे फोन में तो वो असली लिस्ट और असली प्रॉब्लम बता देता है।
0: चलिए अदिति जी आपने कॉल किया, आपका आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

हमारी बहनें लगातार हमसे जुड़ने का प्रयास कर रही हैं और जुड़ भी रही हैं, और देखते हैं हमारी अगली हमारी हेलो तो भाई हम ये कहना चाहेंगे हमारी जो बहनें हैं विशेष रूप से उनके लिए ये प्रोग्राम होता है और हम चाहते हैं कि हमारी बहनें ही इसमें जुड़ें और अपने विचार हमसे साझा करें। तो भाई मोबाइल रखना स्मार्टफोन रखना वो तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें हमारे कुछ ऐप्स हैं कुछ एप्लीकेशंस हैं जो हम डाउनलोड करके अगर रखते हैं तो हमारे हेलो तो बहुत हेलो बहुत काम की होती हमारी चीज़ें ये अगर हम उसको डाउनलोड करके रखते हैं। अब जैसे हेल्पलाइन नंबर्स ही होते हैं, अगर हम हमारे मोबाइल में है नहीं तो हम कैसे आपातकाल स्थिति जब आती है तो हम तुरंत नहीं कॉल कर सकते हैं सहायता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हेलो देखिए पुलिस हेल्पलाइन नंबर है 112, फायर का नंबर आपको पता ही होगा 101, एम्बुलेंस का होना चाहिए आपके मोबाइल में सेव होना चाहिए 102 या 108। महिला हेल्पलाइन 1090, ये सब नंबर से ये सेव होना चाहिए हमारे फोन में, क्यों बहनों? हेलो हेलो हाँ आपकी आवाज आ रही है थोड़ा सा। हेलो नाम बता दीजिए अपना, कहाँ से कॉल किया आपने? रेडियो से थोड़ा दूर हो जाइए, मुझे लग रहा है आपकी आवाज। हेलो तो बहनों जिला आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम 1077, ऐसे बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं जो हमें अपने मोबाइल में सेव करके रखना चाहिए और जरूरत पे उसका इस्तेमाल करना चाहिए। हेलो हमारी बहनें कोशिश लगातार कर रही हैं और वो जुड़ना भी चाहती हैं। भाई विषय ऐसा है कि वो कुछ ना कुछ तो उनके मन में विचार होंगे कि जो हमसे साझा करें। और बहनों देखिए मोबाइल में ही जो है कितने सारे ऐप मतलब होते हैं जिसको अगर हम डाउनलोड करके रखते हैं, जैसे डिजी लॉकर है। डिजी लॉकर का तो आपको पता ही होगा कि उसमें अपना हमारी जो मार्कशीट है, डिग्री सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, कोई भी वो पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, सब चीज़ें उसमें हम संभाल कर लॉकर में रख सकते हैं। समझ लीजिए कि एक बहुत ही सुरक्षित जगह होती है जो जिसमें अगर हम उसको रख देते हैं तो फिर किसी तरह से कोई ख़तरा नहीं होता है कि आपका कहीं चोरी हो जाए, कहीं कोई चुरा ले, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। कहीं भी आपको ज़रूरत हो तो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की तरह ही काम करता है ये। आप इसको शेयर कर सकती हैं और ये सारे ऐप्स हैं जो बहुत ही मतलब हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। तो बहनों देखिए हमारी बहनें लगातार प्रयास कर रही हैं, हम उनकी कॉल्स भी लेंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं पहले एक गाना ले लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।

0: हेलो
1: यस
0: हेलो,
1: मैम,
0: स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका?
1: रोहित।
0: रोहित। बेटा, कोई आपके घर में, कोई आपकी बहन दीदी है, कोई पास में
1: यस मैम,
0: बात करा दीजिए।
1: मैं मम्मी है।
0: मम्मी से बात करा दीजिए। हेलो
2: हेलो।
0: हेलो जी, आपकी कॉल लगी आकाशवाणी अयोध्या में। क्या आप मोबाइल फोन चलाती हैं?
2: हाथों
0: चलिए चलिए, आपने आप शामिल हुई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा प्रयास करिएगा। देखिए बहनों, अभी हम बात कर रहे थे कि जो है डिजी लॉकर है, तो इसमें डिजिटल तरीके से आपको शेयर कर सकते हैं, डिजिटल साइन भी इसमें हो जाती है, और ऐसे ही उमंग एप्लीकेशन भी है, बहुत फायदेमंद भी है। अब इसमें देखिए 1500 से ज़्यादा सरकारी सर्विसेज इसमें हमको मिल जाते हैं। बहुत सारे जो गवर्नमेंट सरकारी जो विभाग होते हैं, जिसके हमारे बहुत सारे काम होते हैं, जिसमें हमें ऑफिस जाना पड़ता है, कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो ये ऐप ऐसा है कि इसमें हमको बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे जो इसमें है सुविधाएं हमको मिल जाती हैं। हम घर बैठे अपना काम जो है कर सकते हैं, तो हमारे फोन में जो है जरूर ये सब होना चाहिए। हेलो, यहाँ तक कि देखिए इसमें जो है हम इससे जो है बर्थ सर्टिफिकेट तक इसके लिए जो है अप्लाई इसमें कर सकते हैं। स्कॉलरशिप के बारे में जानना हो, अपने पेंशन की डिटेल जाननी हो, सब कुछ आप जो है घर बैठे जो है आप इस एप्लीकेशन के द्वारा कर सकते हैं। और जो है बहनों, आधार की भी नई मोबाइल ऐप जो है इस समय उपलब्ध है, किसी के आधार कार्ड। हेलो हेलो, कॉल लग गई, आपकी आवाज आई, धीरे से कुछ बोल रही हैं आप। हेलो हेलो, तो बहनों आधार की नो नई मोबाइल ऐप है, और होता है ना कि इसमें जैसे आपने अगर अपना आधार, आपका आधार कार्ड इससे जुड़ा हुआ है बहनों, तो कोई भी जैसे फ्रॉड है, कोई स्कैम है, तो आपके आधार से कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। समझ लीजिए कि आपका एकदम सेफ जोन में आपका आधार कार्ड होगा, कोई भी अगर आपका यूज करना चाहेगा।

0: तो वो इसमें सफल नहीं हो पाएगा। और इसके फीचर्स ऐसे होते हैं ना कि आप जो है आप फेस का भी इसमें जो है स्कैन करके अपना जो है आप इसमें जोड़ सकते हैं अपना। और हमारे बहुत सारे जैसे कि आधार इसमें अगर हम लिंक कर लेते हैं अपना। अब देखिए बहनों, हम घड़ी की तरफ देख रहे हैं कि इशारा कर रही है कि हमारा जो कार्यक्रम का समय है वो समाप्त होने वाला है। तो बहनों, अगले नारी जगत कार्यक्रम में आपसे जरूर मिलेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए पुष्पा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की

0: देख रहे हैं कि इशारा कर रही है कि हमारा जो कार्यक्रम का समय है वो समाप्त होने वाला है। तो बहनों, अगले नारी जगत कार्यक्रम में आपसे जरूर मिलेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए पुष्पा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

0: अभी बहनें सुन रही थी नारी जगत के अंतर्गत अपना कार्यक्रम हेलो सहेली। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। दोपहर के 3 बजे हैं। अब आइए सुनते हैं मुंबई से प्रसारित केंद्रीकृत विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियां एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
2: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के दूसरे व्यक्तियों के अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ढप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
2: कार्यक्रम मन चाहेगी,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400

अनचाहे गीत कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। जैसा कि आप जान ही गए इस कार्यक्रम में जो चिट्ठियाँ भेजती हैं, पसंद भेजने की क्या तकनीक है और किस तरह से इसे भेजना है, क्या नियम है। और अब ये जान लेते हैं कि कार्यक्रम में पहला गीत किसकी पसंद से शामिल होने वाला है। तो पसंद है आप सभी की छत्तीसगढ़ डोंगर गाँव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये, साथ ही सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। आप सभी की पसंद पर हम सुनवा रहे हैं। अजनबी फिल्म से एक गीत सुनिए, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत, और अगला गीत कौन सा है उससे पहले बता दें कि किसकी पसंद पर हम सुनवा रहे हैं गीत। पसंद आई है अम्बेडकर चौक खुरई से राम सखी परमानंद, सौरभ गौरव, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरन रोहित, छोटू डुंडुन और उनके परिवार की। और आप सभी ने पसंद किया है मुकेश की आवाज में हिमालय की गोद में फिल्म का ये गीत। आनंद बख्शी के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। तो सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।

मुकेश की आवाज में हिमालय की गोद में फिल्म का ये गीत आपने सुना, आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। कार्यक्रम मन चाहे गीत में अगला गीत है कन्यादान फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज में ही ये गीत है, नीरज के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। इसकी फरमाइश भेजी है छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर एस, अश्विनी कुमार और गणेश राम ने। साथ ही पुणे से पंकज बाड़ूदे, आर्या, प्रियंका, बीटी बाड़ूदे और चंद्र प्रभा बाड़ूदे ने भी कन्यादान के इस गीत को सुनना चाहा है। तो आप सभी की पसंद पर सुनते हैं गीत।

तो कुछ इसी तरह से खत हम तक पहुंच रहे हैं, आप सभी के मनचाहे गीत कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और आपकी फरमाइशें पूरी हो रही हैं आपके नाम के साथ। तो हमारे साथियों ने अलग अलग तो खत भेजे हैं, अलग अलग जगहों से एक ही गीत की जब फरमाइश आती है तो बड़ा ही अच्छा लगता है। हालांकि अगला जो गीत है वो अलग अलग फिल्म के गीत के लिए फरमाइश आई है और ये फरमाइश हमें भेजी है गुलाबरा छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से भाई राजू निखाड़े, अनिता निखाड़े, ऋषभ और सुरेश निखाड़े ने, और साथ ही बड़ा बाजार देवास से जाकिर हुसैन नजमी, तस्लीम नजमी, मुर्तजा नजमी ने भी अलग अलग फिल्म का यही गीत सुनना चाहा है। तो चलिए आप सभी की पसंद पर लता मंगेशकर की आवाज में सुनिए अलग अलग फिल्म से आनंद बख्शी के बोल से सजा ये गीत जिसे राहुल देव बर्मन ने संगीत से सजाया।

लता मंगेशकर की आवाज में अलग अलग फिल्म का ये गीत आपने सुना, राहुल देव बर्मन की तर्ज आनंद बख्शी के बोल। कार्यक्रम मनचाहे गीत में अगला जो फरमाइशी गीत है वो भाभी फिल्म से है और इस गीत के लिए फरमाइश भेजी है आप सभी ने सांगवड़े कोल्हापुर महाराष्ट्र से जिनराव, पृथ्वीराज, ऋतुराज पाटिल, प्राची प्राजक्ता, प्रगति पाटिल, आप सभी की फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं भाभी फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा, चित्रगुप्त का संगीत।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत और कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम आ चुके हैं। कार्यक्रम का अंतिम गीत किनकी पसंद पर हम सुनवाने वाले हैं आपको बता दें, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकी पवार, मोहम्मद हसनैन पवार, बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनिता गंगराड़े, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका गंगराड़े, ग्राम छैगांव देवी जिला खंडवा से अशोक कुमार वाघे, वंदना वाघे, भूपेंद्र वाघे, झवर वाघे, तनुश्री आरोही और कान्हा वाघे। आप सभी ने फरमाइश भेजी है वंदना फिल्म के गीत की। आप सभी की फरमाइश पर ये गीत सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज, असद भोपाली के बोल, रवि का संगीत।

वंदना फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, असद भोपाली के बोल, रवि का संगीत। इसके साथ ही आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इसके साथ अपनी दोस्त नेहा शर्मा को भी दीजिए इजाजत। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। आज के इस कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं कटीला रास्ता, इस नाटक का पहला भाग। ये नित्यमूर्ति के मूल तमिल नाटक शोध नैत पाते का हिंदी रेडियो रूपांतर है। रूपांतर किया है ए शौर्य राजन ने। निर्देशक हैं वीपी दीक्षित बटुक।

0: डॉक्टर रतनगिरी, मेरी ओर से हार्दिक बधाइयाँ।
1: भारती,
0: अब मैं केवल आपकी भारती नहीं हूँ, समझे? अब मैं हूँ डॉक्टर भारती, MBBS।
1: फिर भी वो?
0: जी, मैं आपके गांव की हम पेशा लेडी डॉक्टर हूँ।
1: भारती सुनो तो।
0: अब छिपाओ दुराव अच्छा नहीं लगता डॉक्टर साहब। आपकी प्रेयसी और भावी पत्नी डॉक्टर उमा देवी मेरी परम प्रिय सखी हैं। कम से कम इस बात को मत भूलिएगा।
1: ओ भारती, कृपा करके मेरी बात तो सुनो।
0: उसकी कोई जरूरत नहीं, सब जानती हूँ। मंगल ललूर गांव के बड़े रईस श्रीमान मरुद नायकम के इकलौते सुपुत्र हैं आप, और मद्रास शहर के बहुत बड़े व्यापारी की इकलौती सुपुत्री है डॉक्टर उमा देवी। दोनों का शुभ।
1: लेकिन भारती, इसमें तुम्हारी भी गलती है।
0: मेरी गलती? बातें तो बड़ी ऊंची की थी आपने, कहां गई वो सब बातें?
1: मैं भूला नहीं हूँ। ये सही है, हमने निश्चय किया था कि हम एक साथ पढ़ाई पूरी कर जीवन साथी बनकर गांव लौट आएंगे और जनता की सेवा करेंगे।
0: लेकिन हमारा वो निश्चय, वो संकल्प अब कोरा सपना हो गया है।
1: कोरा सपना नहीं हो गया भारती, समय तथा युग के अनुसार थोड़ा बदल गया है बस।
0: समय और जमाने के मुताबिक पैंतरे बदलना, रंग बदलना क्रिकेटों का काम है, पढ़े लिखे उपाधिधारी और विचारवान व्यक्तियों का नहीं है, समझे?
1: इसीलिए तो मैं विदेश जाकर उच्चतम शिक्षा पाने की कोशिश में।
0: हाँ हाँ, आप उसी कोशिश में हैं। मैं जानती हूँ आपकी कोशिशें। भावी ससुर साहब की सहायता से विदेश जाकर उच्चतम शिक्षा पाने वाले हैं आप, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए।
1: भारती, तुम मुझे अब भी समझने की कोशिश नहीं कर रही हो।
0: खूब समझ गई हूँ आपको डॉक्टर साहब। विदेश जाकर पढ़ना और बहुत बड़े रईस की इकलौती बेटी का जो लेडी डॉक्टर भी है पति बनना, ये दो बड़े लक्ष्य आपकी आंखों पर पट्टी बांध चुके हैं, की हुई प्रतिज्ञाओं को भुलवा चुके हैं।
1: भारती, केवल प्रेम को लेकर जिंदगी नहीं बना करती, जिंदगी बसर करने की बुनियाद है पैसा। प्रेम के साथ पैसा भी हमें चाहिए।
0: वाह, केवल प्रेम को लेकर जिंदगी नहीं बन सकती, खूब कहा आपने। दौलत की बुनियाद पर प्रेम का दुर्ग खड़ा करना चाह रहे हैं आप, कीजिए, शांत से कीजिए।
1: भारती देखो, तुम्हारी पीड़ा समझ रहा हूँ मैं। हम दोनों की शादी नहीं हो पाएगी इसी बात से तुम बहुत दुखी हो और मुझ पर अपना क्रोध उतार रही हो। देखो भारती, समझदारी इस बात में है कि हम कैसे अपनी जिंदगी बेहतर बना पाते हैं। जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश में रहना और उसी के अनुसार सोचना कोई गलत काम नहीं है। अच्छा तो यह है कि हम बीती बात भूल जाएं, वर्तमान के बारे में सोचें और भविष्य पर दृष्टि रखें।
0: अतीत को भूल जाएं, वर्तमान के बारे में सोचें, ठीक ही है। होशियारी से जिंदगी गुजारने की सोचना तो जरूरी है, क्यों ना सोचा जाए।
1: मुझे खुशी है कि तुम समझने लगी हो अब।
0: जी हाँ, समझने लगी हूँ।
1: रियली?
0: हाँ, जिंदगी चाहे जैसे नहीं गुजारनी है, गुजारनी है अपनी इच्छा और अपने लक्ष्य के अनुसार। जीवन के

0: इस सच्चे सिद्धांत को समझ गई हूँ मैं।
1: भारती?
0: सिर्फ भारती नहीं, आई एम डॉक्टर भारती। डॉक्टर अदमगिरी, आपके शानदार जीवन और उज्जवल भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं। मुझे आज्ञा दीजिए, बाय बाय।
2: भारती, ये क्या बात है?
0: मेरी शादी में नहीं आ रही हो? तुम्हारा बाहर जाना इतना जरूरी है क्या? अब क्या करूं उमा, मेरी इच्छा तो यही है कि तुम्हारी शादी के मौके पर जरूर रहूं, लेकिन कर्तव्य को भी नहीं डाला जा सकता ना।
2: हाँ हाँ हाँ,
0: बढ़िया ही कर्तव्य निभाने वाली। तुम्हारे गांव में ऐसा क्या कर्तव्य आ पड़ा जिसे निभाना जरूरी हो गया? बताओ तो जरा।
2: भविष्य में वो तुम्हारा भी गांव होगा उमा।
0: ससुराल का गांव पीहर से कम नहीं है, और फिर तुम्हारे पतिदेव तो मेरे गांव के हैं।
2: तो तुम उन्हें जानती हो?
0: क्यों नहीं, भली प्रकार जानती हूँ। मैं उसी गांव की हूँ और मेरे मामा वहाँ रहते हैं। अच्छा ये बताओ, हनीमून के लिए कहाँ कहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया तुमने?
2: अब क्या बताऊँ भारती, पापा ने आगे की पढ़ाई के लिए सारा इंतजाम करा दिया है। उनके व्यापार उद्योग क्षेत्रों के मित्र तो सब जगह फैले हुए हैं ना,
0: तब तो विदेश में आगे की उच्चतम शिक्षा का इंतजाम करा दिया होगा।
2: ठीक है, उसे ही एक तरह से हनीमून समझो। अब शादी में सिर्फ 10 ही दिन तो रह गए हैं, तुम इस बीच बाहर जाने का इरादा छोड़ क्यों नहीं देती?
0: मेरी विवशता है उमा, हमारे गांव के डॉक्टर बहुत बूढ़े हो चुके हैं, उनका काम चलाने के लिए एक डॉक्टर की जरूरत है, उनका कार्यभार संभालने के लिए किसी ना किसी को तो जाना ही है, मैं ही वो काम संभालने जा रही हूँ।
2: तुम भी खूब हो भारती, शहर के डॉक्टर गांव में जाने से कतराते हैं, धंधा चले ना चले साइन बोर्ड लगाकर बैठ जाते हैं शहर में, और एक तुम हो गांव जाकर सेवा करने पर तुली हो।
0: इसीलिए तो जा रही हूँ, वरना आप लोग गांव चली जाओ कहकर भगा देंगे तो।
2: लेकिन फिर भी सिर्फ 10 दिनों की ही तो बात है।
0: आई एम सो सॉरी उमा।
2: ओफो भारती, तुम बड़ी हठी हो।
0: कुछ बातों में औरतों का हठीलापन अच्छा ही होता है और जरूरी भी है। अच्छा उमा, तुम्हारे सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए मेरी बहुत बहुत बधाइयां।
2: शुक्रिया।
0: मुझे आज्ञा दो।
2: तुम्हारे हट के आगे और चारा ही क्या है भारती।

0: हवाई जहाज को क्यों उतार के ले गई? खोई खोई सी क्यों खड़ी हो? अस्पताल नहीं जाओगी?
1: अभी जाती हूँ मामा, नर्स नागमणि के इंतजार में हूँ।
0: पूरा मत मानना भारती, तुम बड़ी डॉक्टर हो, तुम्हारे इंतजार में लोग रहे ये तो ठीक है, पर किसी और के इंतजार में तुम रहो ये जचता नहीं।
1: ये बात नहीं है मामा जी, मैं अपने काम की जरूरत के लिए इंतजार करती हूँ, किसी व्यक्ति के इंतजार में नहीं हूँ।
0: तुम ठीक अपने पिता की तरह हो, उन्हें राष्ट्र की स्वाधीनता, राष्ट्रीय संग्राम आदि के बारे में जितना लगाव था उतना ही लगाव तुम्हें अपने कर्तव्य के बारे में है। एक तरह का नशा ही चढ़ा हुआ था उन्हें, अब वैसा ही नशा तुम पर सवार है।
1: वो नशा नहीं था मामा जी, वो भक्ति थी। नशा तो जंगली नाले की तरह है, जो एक दिन उमड़ आता है तो दूसरे दिन उतर जाता है, पर मामा जी भक्ति ऐसी चीज नहीं है, वो तो सदा बहते रहने वाली धारा है।
0: मैं क्या जानूं बेटी, मैं ठहरा गंवार, खेत जोत कर रोजी चलाने वाला।
1: ऐसी बात नहीं है मामा जी, आपकी मेहनत और लगन की ही मेहरबानी है कि मुझ अनाथ लड़की को आपने पाल पोस कर बड़ा किया और पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया।
0: वो मेरा वचन पालन था जो मैंने अपनी बहन को दिया था, स्वतंत्रता आंदोलन में कूट पड़ते वक्त तुम्हारे पिता की उम्र 22 साल की थी, शादी के कुछ ही महीनों की बात है।
1: और माता जी?
0: उस समय यानी 30 साल पहले तुम्हारी माँ मेरे साथ रहती थी, तुम्हारे पिताजी जेल में थे।
1: फिर क्या हुआ?
0: देश के स्वतंत्र होने के बाद ही मैं घर में घुसूंगा, तब तक मेरे लिए घर गृहस्थी कुछ नहीं है, यही कहते थे तुम्हारे पिता।
1: और आजादी मिलने के बाद?
0: तुम्हें जन्म देने के बाद तुम्हारी माँ अपनी आजादी

0: आजादी की खोज में चल बसी। शायद अधेड़ उम्र में प्रसव होने की वजह से यह हालत हुई होगी।
1: बेचारी दुखियारी माँ।
0: उसी व्यथा में तुम्हारे पिताजी भी घुल घुल कर मर गए। वे तुम्हारी माँ को बहुत प्यार करते थे।
1: स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में जो जमीन उन्हें भेंट की गई थी उसको लेने से तो पापा जी ने इनकार कर दिया था ना।
0: और क्या, टुकड़ा भर जमीन मिलेगी इस अरमान से थोड़े ही उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। खैर उस बात को जाने दो, मैं तो दूसरी ही बात कहने आया था, भूल ही गया।
1: क्या बात है मामा जी।
0: हाँ याद आ गई। इस बात का ख्याल रखना बेटी, यहाँ के सरपंच मरूद नायकम, बड़े मीरासदार रईस कुमार स्वामी जैसे लोगों का मन रखना भी जरूरी है। उनसे झंझट मोल लेना ठीक नहीं होगा। इन लोगों के सहयोग से ही ये आम अस्पताल बना है और इन्हीं के सहारे ये चल रहा है।
1: काफी देर हो गई है, नर्स नागमणि अब तक नहीं आई, मैं चली जाती हूँ मामा जी।
0: ठीक है, मेरी बात याद रखना, तुम आखिर एक लड़की हो, ये मत भूलना।
1: हाँ हाँ आप जिन

0: डॉक्टर साहब, चार दिनों से बुखार लगातार चल रहा है, बहुत कमजोर हो गया हूँ। जरा कह दीजिए बिना पानी मिलाए अच्छी दवा देने।
1: मिक्सचर वाली दवा तो पानी के बिना नहीं बन सकेगी। टिकिया लेंगे आप? ऐसा ही लिख कर दे देती हूँ, दुकान से खरीद लीजिएगा।
0: डॉक्टर जी पैसा नहीं है। डॉक्टर जी
1: कोई बात नहीं, ये लीजिए पैसे।
2: डॉक्टर साहब उस आदमी को दवा मत दीजिए, वो हमारे रईस साधे कुमार स्वामी जी के दुश्मन का आदमी है।
1: तुम आ गई नागमणि, इतनी देर कैसे हुई? इस आदमी को दवा देने से रोक क्यों रही हो?
2: एक ही करके पूछिए ना।
1: कहो तो।
2: वो अपने पंचायत प्रेसिडेंट है, उनके घर जाना पड़ा, उनको बुखार है।
1: ठीक है,
2: फिर आपको तुरंत ले आने को कहा।
1: क्यों, वो यहाँ नहीं आ सकते?
2: इस गांव का यही दस्तूर है, आप नहीं जानती बड़े लोग अस्पताल में कैसे आएंगे।
1: अफसोस, बुखार को इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए कि वो बड़े और छोटे लोगों को पहचान सके।
2: आप नई आई हैं, इसीलिए यहाँ के रीति रिवाज नहीं जानती, वरना ऐसा नहीं कहती।
1: मुझे अपने इस अस्पताल से ही मतलब है, मैं और कुछ नहीं जानती और जानना भी नहीं चाहती हूँ।
0: डॉक्टर साहब मैं चलूं?
1: हाँ जा सकते हो भाई, पर देखो वो टिकिया जरूर खरीद लेना, रोज सुबह और शाम को खाना भोजन के बाद।
0: आप जुग जुग जिए डॉक्टर साहब, जुग जुग जिए।
2: डॉक्टर साहब वो आदमी हमारे रईस साहब के दुश्मन का नौकर है, इसीलिए।
1: मरीज का ना कोई दुश्मन होता है ना दोस्त, डॉक्टर के लिए भी यही बात है।
2: ओफो, आप अभी छोटी उम्र की हैं, समझती नहीं है, मैं अनुभवी औरत कह रही हूँ, मेरी बात पर ध्यान दीजिए। अब तक कई डॉक्टर आ चुके हैं, जा भी चुके हैं।
1: नागमणि तुम एक नर्स हो, तुम्हारा काम दूसरों को धमकाना नहीं है, समझ रही हो?
2: लगता है तब तो आप प्रेसिडेंट के घर नहीं जा रही हैं।
1: प्रेसिडेंट हो या उससे भी बढ़ चढ़कर कोई और, अस्पताल उनके यहाँ नहीं जाएगा। अगर वो चाहे तो किसी बड़े डॉक्टर को घर बुला लाएं, ऐसी औकात है उनकी।
2: याद रखिए ये अस्पताल उन्हीं की मदद से चल रहा है।
1: नागमणि
2: जाकर यही कह दूं उनसे कि डॉक्टर साहब का कहना है आप किसी बड़े डॉक्टर को बुला लाएं, अस्पताल आपके घर नहीं आएगा।
3: वेदाचलम, लगता है भारती को गांव का कायदा समझ में नहीं आया है, नई उमंग है ना। मैंने सुना है नर्स नागमणि को नौकरी से हटाने की बात कर रही है, किस भुलावे में है ये?
4: नायकम जी मैं समझा देता हूँ उसे, इस बार माफ कर दीजिएगा, आखिर तो आपकी दया माया से बना हुआ अस्पताल है ये।
3: नर्स हो या डॉक्टर, उसे नौकरी में रखना हमारी मर्जी पर है, समझे? नागमणि की कितने ही सालों पुरानी सर्विस है, उसे भारती बर्खास्त कराएगी, ये मजाल है उसकी।
4: नायकम जी ये अपने बाप पर गई है, उसी की तरह ये भी थोड़ी तेज तबीयत की है।
3: तब इसकी भी उसके ही जैसी हालत होगी, मेरे ही अस्पताल में काम कर रही है और मेरे ही घर आकर इलाज नहीं करेगी। ये सब नहीं चलेगा।

0: चिंता ना कीजिए, मैंने अपना इस्तीफा लिखकर दे दिया है।
1: भारती तुम?
2: अच्छा तो ये बात है,
1: पर इस्तीफा क्यों दे रही हो बेटी?
0: क्योंकि इसी तरह मैं अपने अंतःकरण के अनुसार काम कर सकती हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ।
1: पर तुम्हें ये भी तो सोचना चाहिए था कि ये गांव के बड़े आदमी हैं।
0: मामा जी मैं छोटी हूँ ना, बहुत छोटी हूँ, इसीलिए बड़े आदमियों के साथ सुलह कर चलना मुझे नहीं भाता, तभी तो इस्तीफा देकर बाहर आ गई हूँ।
2: सुना आपने?
1: इसके लिए मुझे खेद है साहब, मैं इस लड़की को समझा दूंगा।
2: ठीक है, देख लेंगे इसे भी, इस वक्त तो हम चले जाते हैं।
1: भारती, भारती तुमने नागमणि के मामले में ज्यादती की है, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें।
0: चुपचाप अन्याय को देखते रहना मेरे बूते की बात नहीं है मामा जी।
1: बिटिया मैं बूढ़ा हो चला, मरीज भी हूँ, इस दशा में गांव वालों से दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं। ओफ ओह, पता नहीं ये क्या कर बैठे।
0: दुष्टों धूर्तों के पल्ले ना पड़ूं, अपनी रक्षा कर सकूं, इतना होश मुझे है, आप चिंता छोड़िए मामा जी।
1: तुम भी अजीब लड़की हो। ओह अरे सीना दर्द कर रहा है।
0: क्या हुआ मामा जी? मामा जी क्या हुआ? सीने में दर्द? अभी आती हूँ, थोड़ा अपने को संभालिए। अभी आई।
1: पानी, थोड़ा पानी, पानी। पसीना छूट रहा है।
0: ले जाइए, ये लीजिए पानी। दिल के दौरे के कारण इनकी हालत है। मामा जी एक इंजेक्शन लगा देती हूँ, आप आराम से सो सकेंगे।

0: आंखें कैसे टपक पड़ी?
1: देख लो,
0: क्या ससुराल की भूमि के दर्शन करने चली आई हो?
1: अरे भाई, पहले आसमान से नीचे तो उतरो।
0: गाड़ी को तुम आसमान कहती हो?
1: ये लो, उतर आई तुम्हारी धरा पर।
0: अरे ए उमा, भैया कहा कैसा?
1: अरे भाई, पागलों की तरह हंसी चली जा रही हो, आखिर बात क्या है?
0: तुम्हारा रूप देखकर पागल हुई हूँ।
1: क्या बढ़िया वेश बना रखा है तुमने, एक मामूली वॉयल की साड़ी, हाथ में ये छोटा सा बक्स, सीधा कंघी किया हुआ सिर।
0: वाह, ठेठ देहाती दाईमा लगती हो।
1: ठीक ही तो है, लेडी डॉक्टर आखिर क्या है, दाईमा का ही तो दूसरा रूप है।
0: तुम अपनी बात कभी काटने भी देती हो?
1: बात बात पर काटने दौड़ पड़ने की तुम्हारी आदत गई नहीं आखिर?
0: मजाक मजाक छोड़ो उमा। अच्छा पहले ये बताओ, तुम कैसे इधर आई?
1: जानम्मा
0: जी,
1: ऐसा करो तुम ये बक्स लेकर घर चले जाओ। हाँ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी।
0: जी बहुत अच्छा। अच्छा पहले ये बताओ कि ये जानम्मा कौन है, तुम्हारी नई नर्स साहिबा?
1: हाँ उमा, मैंने अस्पताल से इस्तीफा देकर अपनी अलग डिस्पेंसरी खोल ली है।
0: वो सब तो मैं पहले ही सुन चुकी हूँ।
1: ये जानम्मा उसी डिस्पेंसरी की नई आया है और इसी के साथ नया कंपाउंडर भी रखा है, अल्लाह बख्श।
0: अच्छा अच्छा,
1: फिर दोनों ही जान लड़ाकर काम करते हैं। ये नए लोग पुराने लोगों से ज्यादा वफादार हैं। अस्पताल के मरीजों की सारी भीड़ को ये दोनों ही संभालते हैं।
0: तुम्हारे मामा जी का क्या हाल है, तुम्हारी नई डिस्पेंसरी से बड़े खुश होंगे वो?
1: खुश तो हैं उमा, पर बेचारे हृदय रोग से पीड़ित हैं, दिन पर दिन निर्जीव से होते जा रहे हैं, और फिर दूसरे मरीजों के साथ उन्हें भी संभालना होता है, और यहाँ की कमी कमजोरियों को तो तुम जानती हो।
0: भारती, तुम सचमुच बड़ी ग्रेट हो, वरना इस मनहूस देहात में बिना किसी सुविधा सहूलियत के कैसे रह पाती? इतना बड़ा काम संभालना तुम्हारा ही हौसला है।
1: ऐसे मनहूस देहात मत कहो उमा,
0: तो
1: ये मेरी जन्मभूमि है, मैं इसकी कर्जदार हूँ, इस भूमि की सेवा से मुझे हौसला मिला है।
0: बस तुम जैसे तीन चार पागल जने और मिल जाए।
1: अच्छा ये सब रहने दो, ये बताओ तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे पति महोदय क्या कर रहे हैं?
0: मैं आराम से वक्त काट रही हूँ।
1: अरे उमा, ये क्या कह रही हो, विदेश जाकर पढ़ाई हो? और
0: मैं कहाँ पढ़ी थी, उन्होंने ही पढ़ा था, प्रशिक्षण पाया था, मैं सिर्फ साथ देने गई।

0: डिग्री ले आई, बस डिग्री ले आई हूँ। ऐसे डींग मारने भर से कोई फायदा नहीं है।
1: क्या बताऊं भारती, मेरे ससुराल वालों को भी मेरी पढ़ाई व नौकरी में कोई दिलचस्पी नहीं है।
0: उमा, पहले तुम्हारा तो अपना एक इरादा होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए। अगर तुम्हें पैसा कमाने से कोई मतलब नहीं है तो सेवा भाव से ही तुम्हें इसमें लग जाना चाहिए था।
1: लेकिन मेरे पति भी ये चाहते हो तब तो।
0: ये बात है, डॉक्टर रतनगिरी की ये मानसिकता सचमुच वो बधाई के पात्र हैं। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ तुम्हारे पतिदेव डॉक्टर रतनगिरी आजकल क्या कर रहे हैं?
1: अरे तुम्हें नहीं मालूम, वो बहुत मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट हो गए हैं। मद्रास में बहुत बड़ा नर्सिंग होम बनवा लिया है, खूब प्रैक्टिस चल रही है।
0: तुम्हारी बात में एक छोटा सा सुधार है।
1: वो क्या?
0: बनवा नहीं लिया है, तुम्हारे पिताजी ने बना कर दिया है।
1: तुम आकर देखोगी तो दंग रह जाओगी, कितनी नई नई मशीनें औजार साधन सामग्रियां हैं, इतना सजाया दजाया गया है कि देखकर तबीयत खुश हो जाती है।
0: क्यों ना हो, बहुत बड़े स्पेशलिस्ट है ना,
1: अक्सर विदेश घुमाते हैं, हृदय रोग चिकित्सा संबंधी विश्व विशेषज्ञों की परिषदों सभाओं और बैठकों में भाषण देने जाते हैं, बड़ा नाम है उनका।
0: हाँ हाँ जाना ही चाहिए। तुम साथ नहीं जाती?
1: अच्छा क्या आजकल भी गए हुए हैं?
0: तुम नहीं गई?
1: मैं जाने की स्थिति में नहीं हूँ।
0: अरे कांग्रेचुलेशंस उमा, मेरी प्यारी उमा माँ बनने वाली है।
1: चुप रहना, कोई सुन लेगा तो मजाक उड़ाएगा। घर में चलो ना, नाश्ता करके जाना।
0: नहीं उमा प्लीज, देखो पहली बात तो यह है कि मैं डिलीवरी केस अटेंड करके आई हूँ, अब सब लोग छुआछूत मानेंगे, अंदर नहीं आने देंगे। और दूसरी बात, तुम्हारे पतिदेव के आने के बाद ही आऊंगी, नव दंपति को एक साथ देखना ही अच्छा है।
1: श्योर, जरूर आना, मेरी शादी में तो बहाना बनाकर चली गई थी।
0: अरे अब क्या बहाना बनाना है, जरूर आऊंगी उमा, जरूर आऊंगी। अच्छा मैं चलती हूँ।
1: ओके।

0: बारिश तेज होती जा रही है। डिस्पेंसरी के बंद होने के बाद इसको भी बंद हो जाना चाहिए।
1: क्यों कंपाउंडर साहब, अब तक घर नहीं गया?
0: कैसे जाएं डॉक्टर साहब, आप रोज बरोज रहम धर्म की कमाई ज्यादा हासिल कर लेती हैं, लिहाजा बरसात भी ज्यादा होती है।
1: आप भी खूब है, आपको हर बात में मजाक सोचता है।
2: अरे वो तो कोई लड़की दौड़ी आ रही है।
1: हाँ, अरे लगता है कहीं कुछ गड़बड़ी है, बारिश में भीगती हुई दौड़ी चली आ रही है। तो मुसीबत तो नहीं खड़ी हो गई? अरे अरे ये तो हमारी ग्राम सेविका शकुंतला है। शकुंतला क्या बात है बताओ?
3: डॉक्टर साहब मुझे बचाइए, मेरा जीवन बर्बाद करके।
1: अरे अरे ये तो बेहोश हो गई, हाय इसकी तो साड़ी भी फटी हुई है, लगता है किसी ने इसके साथ ज्यादती की है। अब
4: पहले इस लड़की को अस्पताल के भीतर ले चलो, जल्दी करो।
1: चल चल कंपाउंडर,
4: वो बस ले आओ जल्दी से।
5: बेटी इस लड़की को पनाह देने से तुम खामखा झंझट मोल लोगी।
4: मामा जी मैं इसको सिर्फ पनाह ही नहीं दे रही हूँ, इसे बर्बाद करने वाले को सजा भी दिलाकर छोड़ूंगी।
5: भगवान के लिए चुप रहो, ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है।
4: मुझे किसी का डर नहीं है।
5: बेटी कभी कभी सच्चाई को झूठ के सामने चुप हो जाना पड़ता है।
4: ऐसी बात नहीं है मामा जी, सच्चाई की जबान साफ सुथरी और नेक होती है, वह दूसरी है कि वो देर में खुलती है। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि झूठ के आगे सच्चाई गूंगी हो गई है।
5: लगता है इसके साथ
4: बड़ी भयावह स्थिति हुई है। ये बेचारी पड़ोस के गांव से लौट रही थी, बीच रास्ते में तीन चार गुंडों ने इसे घेर लिया और उठा कर ले गए।
5: आगे मत कहो, प्राणों में एक आग सी लग जाती है, दिल दहल उठता है।
4: मामा जी आपने दवा खाई थी, कल से आपका दिल दर्द कर रहा था ना, अब कैसे आप?
5: अब ठीक हूँ बिटिया, मैं काफी सावधानी बरतता हूँ।
4: मामा जी अन्याय को आखिर मात खानी ही पड़ेगी।
5: भारती तुम लड़की हो फिर अकेली भी हो।
4: मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा साथ देने वाला बड़ा शक्तिशाली है, वो है भगवान, और फिर मेरी चेतना भी मेरे साथ है, आप भी तो हैं। इतना ही नहीं मामा

0: गरीब गांव के गरीब लोग भी मेरे साथ हैं।
1: सुनने में तो सब अच्छा है, पर हकीकत यह है कि पूंजी और प्रभाव के धनी लोगों के सामने हम तिनके के बराबर हैं। मैं कहता हूँ ये तुम्हारे बस की बात नहीं है।
0: क्यों नहीं है? डॉक्टर की हैसियत से मैं गवाह हूँ, मैंने उसका इलाज किया है।
1: ये न भूलो कि तुम मर्द नहीं हो।
0: काश मैं मर्द होती।
2: डॉक्टर अम्मा!
0: कोई दरवाजा खटखटा रहा है।
2: डॉक्टर अम्मा!
0: देखती हूँ कौन है।
1: रात के 10 बज चुके हैं।
2: डॉक्टर अम्मा!
0: अरे नानी तुम क्या बात है, इतनी बेचैन क्यों हो?
2: मुझे माफ कर दीजिए, अभी मेरे साथ चलिए, मेरी छोटी बहन की जान बचाइए। डॉक्टर अम्मा आपको बहुत पुण्य होगा, दया कीजिए।
0: तुम्हारी बहन को अचानक क्या हो गया है?
2: आपके पैरों पड़ती हूँ, बाहर बैलगाड़ी तैयार खड़ी है, मेरी बहन प्रसव पीड़ा से तड़प रही है। आप चलकर नहीं देखेंगी तो वो बचेगी नहीं, बहुत नाजुक हालत है। जल्दी चलिए माई जी,
0: लगता है बहुत सीरियस केस है।
3: मामा जी मैं भी आती हूँ, एक सीरियस केस है।
1: जानम्मा अल्लाह बख्श को भी साथ लेती जाना।
2: उनकी जरूरत नहीं है, मैं खुद नर्स हूँ, मैं संभाल लूंगी। आइए डॉक्टर अम्मा,
0: जल्दी चलो।
2: आइए
0: आइए।

0: नागमणि, ये हम कहाँ जा रहे हैं? तुमने तो कहा था कि घर नजदीक ही है।
1: चुप रहो, मगजक करने की कोई जरूरत नहीं है।
0: क्या कहा?
1: मुझे डराती हो?
0: तब तो तुमने झूठ बोलकर मुझे धोखा दिया है। नागमणि, ऐसा क्यों किया तुमने?
1: जल्दी ही सब मालूम हो जाएगा।
0: छी, हंसती है, मक्कार कहीं की। ए, गाड़ी रोको। अरे रोकता है कि नहीं रोकता?
2: ए नागमणि, धमकाती है? जानती है हम कौन है?
1: बेचारी डर जाएगी। आप इस तरह मत हंसिए, बता दीजिए कौन है।
2: अरे हम हैं, हम इस गांव के बड़े रईस कुमार सानी।
0: अच्छा, वो बहुत बड़े रईस ज़ादे आप ही हैं?
2: क्या
0: यही कि गांव की बेसहारा लड़कियों को बर्बाद करने वाले सूरमा आप ही हैं? एक को पकड़ने के लिए आपने गुंडों को भेजा, अब मुझे पकड़ने इस औरत जात को भेजा है? शर्म नहीं आई आपको?
2: डॉक्टर ने ज्यादा उछल कूद मत कर, हम गांव के बाहर आ गए। ये देख, सामने नाला बह रहा है।
0: ये धमकी सब किस लिए दे रहे हैं आप?
2: तू पुलिस केस कराने वाली है ना, उससे बाज आ जा बस।
0: शकुंतला पर किए जुल्म की बात कर रहे हैं आप?
2: हाँ वही, और अगर तू बाज नहीं आएगी ना तो समझ ले उस लड़की जैसी हालत तेरी भी होगी।
0: इससे पहले ही मेरे हाथ करारा जवाब दे देंगे।
2: अरे इस नाले में बहा दी जाएगी।
0: नाले के पास ही अगर मेरे रक्षक छिपे हुए हो तो? अरे कोई है? अरे भागिए भागिए मालिक, ऐसा ना हो कहीं लेने के मेरे। कायर कहेंगे, छोट मोट का शोर मचाते ही भाग गए, अपनी गाड़ी तक ले जाने का होश नहीं रहा।
3: अभी आपने सुना नाटक कटीला रास्ता का पहला भाग। ये नित्यमूर्ति के मूल तमिल नाटक शोध नैत्य पाते का हिंदी रूपांतर था। रूपांतरकार ए शौर्य राजन और इसके निर्देशक थे वीपी दीक्षित मटुक। यह हमारे केंद्रीय नाट्य एकांश दिल्ली की प्रस्तुति थी। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे कल इसी कार्यक्रम में दिन में 3:30 बजे। अब नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
4: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
5: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
4: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है।

0: जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध

0: एक्शन।
1: नमस्कार श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध गीतकार सुधाकर शर्मा से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का पहला भाग।
2: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज स्टूडियो में हमारे सामने एक खास मेहमान बैठे हैं, फिल्मी दुनिया के जाने माने गीतकार। जी हाँ, आप हैं सुधाकर शर्मा, और जिन्होंने 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 5,000 गाने अब तक लिखे हैं, और भी न जाने कितना काम इस फिल्मी दुनिया में उन्होंने किया है। तो आज उन्हीं से जानेंगे उनकी दुनिया का सफर। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सुधाकर जी।
3: मंदाकिनी जी नमस्कार। मेरे सभी उन श्रोताओं को जिन्होंने मेरे गानों को सुन सुन के मुझे विविध भारती के स्टूडियो तक पहुंचा।
2: तो सबसे पहले हम तो यही जानना चाहेंगे कि आप कैसे हैं।
3: मंदाकिनी जी, हुआ ये कि हर आदमी अपने बचपन से प्रेरित होता है किसी भी काम के लिए। तो मैं गांव में रहता था, पलवल के पास मेरा गांव है। वहां हमारे एक चाचा थे, वो हमेशा ट्रांजिस्टर बगल में लटका के रहते थे। बिना ट्रांजिस्टर उनको आप देख ही नहीं सकते कभी। तो वहां गाने बजते थे। जब आता था अनाउंसमेंट कि आप शंकर जयकिशन का संगीत बद्ध किया हुआ, हसरत जयपुरी का लिखा हुआ ये गीत सुनिए, तो मुझे वो साउंड जो है ना, ऐसा लगता था कि काश मैं भी कुछ ऐसा कर पाऊं कि मेरा भी ऐसे नाम आए कि अब आप शंकर जयकिशन का संगीत बद्ध किया हुआ, सुधाकर शर्मा का लिखा हुआ गीत सुनिए। तो ये प्रेरणा स्रोत बना मेरा आपका ये माध्यम, और मैं वहां से सफर तय करने के मतलब तैयारी में मुंबई तक आया।
2: ये 1973 में, 1973 में हरियाणा से मुंबई आ गए?
3: नहीं, मैं हरियाणा से दिल्ली में था।
2: हाँ।
3: दिल्ली से मुंबई आया।
2: अच्छा।
3: मेरे पिताजी दिल्ली में टीचर थे, तो मैं दिल्ली में ही रहता था, और वहां से मैं यहाँ आया। और यहाँ आने की भी एक अलग कहानी है। मैं कोई सोच समझ के नहीं आया, मतलब मुझे आना था ऐसा मेरे मन में था, लेकिन कब जाऊंगा और कैसे जाऊंगा इसकी व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि उतने पैसे मेरे पास नहीं थे और आने का कोई सोर्स भी नहीं था। मेरे एक दोस्त हैं विजय त्यागी
2: जी,
3: वो धर्म जी के फैन थे। तो उसने बोला यार मुझे तो धर्मेंद्र बनना है, तो उसने बॉडी वॉडी भी अच्छी बनाई।
2: अच्छा।
3: थी उसका आने का प्रोग्राम बना और मेरे को बोले कि चल तू भी चल, और मैं उनके साथ आ गया और यहाँ बंबई में बंबई का होके रह गया। मैं पहली बार जब यहाँ आया देहरादून ट्रेन से उतरा, देहरादून एक्सप्रेस दादर, तो मेरे साथ मतलब पहली घटना ऐसी हुई कि हम तीन थे, एक जो तीसरा था वो हमारा गाइड था।
2: अच्छा, तीन दोस्त आए थे?
3: तीन दोस्त आए। हाँ। थे, मेरे दोस्त का वो दोस्त था।
2: अच्छा।
3: तो उसने बोला कि मैं जहाँ रहता हूँ वो बहुत बड़ी जगह है, और उस जगह पे ये नहीं जा सकता।
2: कौन? आप?
3: सुधाकर।
2: अच्छा।
3: बोला ये तो शक्ल से चोर लगता है, तो वहाँ कुछ हो गया तो।
2: अरे।
3: तो मैं दादर स्टेशन प्लेटफार्म पे रात को सोया, ये लोग दोनों चले गए। मैंने कहा भाई आप तो जाइए फिर मैं रुकता हूँ। तो ये एक कार्यक्रम इस तरीके से बंबई में मेरी पहली रात ओपनिंग हुई। दादर एक नंबर प्लेटफार्म के बेंच पे सोया। कभी कभी उस जगह पे जाके मैं खड़ा होता हूँ अभी।
2: उस पल को महसूस करते हो जब आपको ऐसा किसी ने कहा था?
3: याद आता है वो
2: जी। तो जब आपने कहा कि आप दिल्ली से यहाँ आए, तो क्या आप मुंबई गीतकार बनने ही आए थे या कुछ और विचार लेकर भी आए?
3: नहीं, मैं सिर्फ गीतकार बनने ही आया था, और मैं उस वक्त जो है ना बहुत बड़ा फैन था शैलेंद्र जी और हसरत जयपुरी साहब का और शंकर जयकिशन का।
2: अच्छा।
3: लेकिन मैं यहाँ जब आया तो मैं इन लोगों से कैसे मिलूं, क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। और कुछ दिनों बाद मेरे वो दोनों दोस्त भी चले गए। मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं यहीं कुछ ना कुछ करूंगा। इससे

0: पहले रूटीन ये चल रहा था कि ये लोग घूमते थे, मेरे को ले लेते थे दिन में और रात को वहाँ खाना खिला के छोड़ देते थे।
1: अच्छा।
0: पूरा खर्चा वही लोग करते थे। लेकिन फिर जब ये जाने लगे तो मैं रुक गया और मैंने सोचा कि अभी मुझे कुछ करना है। ये 4-5 महीने के बाद मैंने एक जगह नौकरी की ग्रैंड रोड पे, और वहाँ उस नौकरी के मेरा ये था कि कुछ 4-5 बाल्टी पानी नीचे से सेकंड फ्लोर पे उनको पहुंचानी होती थी भर के, और उसके बदले में वो टेरिस पे मुझे सोने की जगह देते थे।
1: कोई पैसा नहीं देते थे?
0: नहीं, पैसा नहीं देते थे। फिर कुछ दिनों बाद वो कुछ और, भाई ये चाय ले आओ, फलाना डालो, ये लेटर डालो, और कुछ पैसे भी देने लगे। तो वहां काफी मेरा कुछ 1-1.5 साल लगा इस तरह से, मुझे फिल्म लाइन का कोई रास्ता ही नहीं मिला।
1: अच्छा, मतलब 1-1.5 साल लगभग आप यही काम करते थे?
0: यही काम करते,
1: ये संघर्ष जो,
0: अब इसको आप संघर्ष कहें या कुछ भी कहें, उस मंजिल तक ही नहीं मैं मुड़ा जहाँ के लिए आया था।
1: हाँ।
0: अब वो ही रोज उसमें चलता रहा। तो वहाँ पे मुझे 2-2.5 रुपए रोज के मिलते थे। तो वहाँ पे एक मुस्लिम होटल था जहाँ बड़ी रोटी मिलती थी, दाल फ्री होती थी।
1: अच्छा।
0: तो एक टाइम हम आराम से खा लेते थे, कोई टेंशन
1: इतना
0: नहीं,
1: पैसा मिल जाता था,
0: इतना पैसा मिल जाता था। तो वहाँ उस कंपनी में एक अकाउंटेंट थे, उन्होंने एक दिन कहा कि यार तुम क्या बनने आए हो? मैंने कहा यार बनने तो बहुत कुछ आया लेकिन कुछ होगा ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ तो काम ही कुछ और है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक जगह ले जाता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। और मैं उनके साथ गया और वो मुझे शंकर जी के म्यूजिक रूम में लेके गए।
1: अच्छा।
0: और तब तक जय भाई तो नहीं रहे थे, शंकर जी थे। और वहां जब मेरा उनसे परिचय हुआ, मैं बता नहीं सकता उस पल की खुशी कि शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया हुआ, वही शंकर जयकिशन का रूम, वही शंकर जी, वही उनके स्टूडियो। तो मेरे लिए तो ऐसा था, मैं जन्नत में आ गया
1: जी, सपने देखने जैसा,
0: सपने देखने जैसा। और यहाँ से इस पल से मेरे सपने साकार होने शुरू हुए फिल्म लाइन के।
1: तो आगे हम आपसे बात करेंगे, एक गीत सुन लेते हैं पहले।
0: मैं मेरे उस्ताद जी का एक गाना सुनना चाहता हूँ।
1: बताइए।
0: और वो गाना है बहारो फूल बरसाओ मेरा
1: महबूबा।

0: पिता से बात होती रही क्या? उन्होंने पूछा? और वो जो दोस्त आपको छोड़कर फिर चले गए, आप कह रहे हैं मुंबई, क्या उनसे भी कभी सामना हुआ?
1: हाँ, वो हुआ, सब कुछ हुआ। वो भी मेरी खैर खबर लेते रहते थे।
0: हाँ।
1: और माता पिता तो लेंगे ही लेंगे, तो मैंने उनको एक अपने माता पिता को एक थोड़ा सा झूठ बोला था कि मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं, नौकरी मिल गई है, मैं यहीं रहूंगा और मुझे यहीं कुछ करना है। और उनको ये अंदेशा तो था कि फिल्म लाइन में कुछ करेगा। मेरे पिताजी ने एक ही बात करी कि भाई अगर तुम कुछ ऐसा करना चाहते हो कि जो बम्बई में ही हो सकता है तो ठीक है, आप करो, और जो भी आप कमा रहे हो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप परेशान मत होना। जबकि कमाई वमाई कुछ थी नहीं, लेकिन एक एड्रेस था मेरे पास कि वहां से हम लोग बात कर सकते थे।
0: कुछ आपको उम्मीद भी बंधी कि मैं, मुझे कुछ करना है तो करना ही है।
1: जी जी जी।
0: तो जैसा कि आपने कहा कि वो आपको शंकर जयकिशन के स्टूडियो में ले गए, जहाँ शंकर जी मिले, उसके बाद फिर क्या आपको पहला गीत मिल गया या
1: नहीं,
0: आप
1: नहीं।
0: शंकर जी के सानिध्य में रहे क्या?
1: बस
0: क्या?
1: उनके सानिध्य में मैं उनके रूम में काम करता रहा, झाड़ू कटका पोछा जो भी मेरे को मिला मैं काम करता रहा।
0: अच्छा।
1: तो मुझे काम तो नहीं मिला, लेकिन क्या है कि वो शंकर जी के यहाँ एक बड़ा अच्छा सिस्टम था कि वहाँ पे सब खाने पीने की बड़ी मौज थी। आपको जो खाना है कैंटीन में खाओ, खाली सिग्नेचर कर दो, तो कोई परेशानी नहीं थी और सोने की कोई परेशानी नहीं थी। तो मैं जो है वहाँ पे काफी समय तक रहा, और एक दिन शंकर जी ने मुझसे पूछा कि भाई यहाँ हर आदमी एक सपना लेके आता है, तो तेरा क्या सपना है? तो मैंने कहा मैं गीतकार बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है सुनाओ कुछ। अब वो इतनी बड़ी शख्सियत, उनके सामने मेरे से कुछ सुनाया ना गया। मैं बोला क्या सुनाऊं, एक होता है ना अभी अचानक उन्होंने बोल दिया।
0: तो क्या तब तक आपने कुछ गीत लिख लिए थे? कुछ
1: लगभग 250 गीत मैंने लिखे थे।
0: अच्छा।
1: गीत तो रोज लिखता था, लेकिन अब शंकर जी जैसी पर्सनैलिटी सामने हो तो सिट्टी भिट्टी गुम सुनाए क्या?
0: बिल्कुल।
1: वो भी समझ गए और उन्होंने हसरत जयपुरी साहब से मुझे पहली बार मिलाया।
0: अच्छा।
1: और कहा कि हसरत मियां ये लड़का सोचता बहुत अच्छा है, इसको लिखना सिखाओ।
0: अच्छा।
1: ये उनके वर्ड थे।
0: तो ये किस वर्ष की बात होगी लगभग?
1: ये तो मतलब मेरा होते होते लगभग 78 की बात है। मतलब काफी समय हो गया। इन बिटवीन मैं यहाँ आता था बम्बई, सबके घर देखता था, सब चारों तरफ ये बंगला दिलीप कुमार का है, ये फलाने का, ये सब देखते थे। उन बंगलों को देख देख के खुशी होती थी, उनसे मिल तो नहीं पाते थे लेकिन बस घर देख लेते थे तो उसमें खुश हो जाए,
0: ऊर्जा आ जाती थी।
1: हाँ, लगता था,
0: मिलता था
1: मोटिवेशन होता
0: कि
1: था
0: कभी हमारा भी ऐसा घर,
1: कभी हमारा भी होगा। दिलीप साहब के घर के सामने ना जैसे आज अमित जी के घर के सामने भीड़ लगती है, उन दिनों दिलीप साहब के घर के सामने भीड़ लगती थी। कुछ लोग आते थे हमेशा, वहां का एक अलग ही चलन था। वहां एक चाय वाला आता था, सबको चाय पिला के चला जाता था और पैसे नहीं लेता था।
0: अच्छा।
1: अब वो पैसे
0: कौन देता था
1: वो, या वो क्यों नहीं लेता था ये मुझे नहीं पता।
0: मतलब दीवानगी होगी दिलीप कुमार साहब के प्रति ना, इस दीवानगी में भी लोग कितना काम कर
1: करते हैं। तो दिलीप साहब आते थे बालकोनी में, हाथ हिलाते थे, बस इतना ही था। लेकिन मैं अक्सर जो है ना, हम लोग वो चाय पीने के लालच में ज्यादा जाते थे क्योंकि
0: जी
1: भूख प्यास भी होती है ना आदमी को। तो वो दौर पाली हिल का मुझे याद है अभी तक, कैसे वहां पे जाते थे। जब हसरत साहब ने मुझे कहा कि मैं कैलाश बिल्डिंग में रहता हूँ खार, आप वहां आइए, तो मैंने वहां उनके पास जाना शुरू किया। और पहले पहले तो क्या वैसी बातें होती रही उनसे बातचीत में, वो मुझसे बात करते रहे, पूछते रहे सब कुछ। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हजरत साहब एक फरिश्ता बन के मेरी जिंदगी में आए। उन्होंने वाकई में मुझे लिखना सिखाया। मुझे लगा कि जो मैंने लिखा वो सब बकवास है, और अभी भी मैं उतना अच्छा नहीं लिख पाता हूँ जितना अच्छा हसरत साहब लिखते थे।
0: जी, खैर ये तो
1: कहीं ना कहीं मुझे एक रहता है, और शायद यही मलाल मुझे जिंदा रखे हुए है, शायद कभी कुछ ऐसा लिख पाऊं।

0: जो हसरत साहब जैसा होगा,
1: उनके जैसा हो सकता है
0: जी,
1: लेकिन उनसे बढ़िया नहीं हो सकता।
0: ये एक बहुत अच्छी ख्वाहिश होती है किसी कलाकार की कि मैं उन जैसा बन जाऊं, क्योंकि आपने उनको अपना उस्ताद माना हसरत
1: जी,
0: साहब
1: जी,
0: को।
1: जी,
0: बहुत अच्छा लग रहा है आपकी कड़वी सच्चाइयों को सुनकर, है ना सुधाकर जी। तो आगे हम आपसे बात करेंगे, एक गीत सुन लेते हैं पहले
1: जी। एक गीत मैं आपको ऐसा सुनाना चाहता हूँ कि जिस गीत की बहुत अहमियत है मेरी जिंदगी में, और वो गीत है परदेसी बाबू का
0: जी।
1: क्या है?

0: सुधाकर जी, बहुत ही सुंदर गीत हमने सुना। आप ही का लिखा वही गीत था?
1: जी, मेरा ही लिखा हुआ।
0: अब अभी मैं ये आपसे तो नहीं पूछना चाह रही हूँ कि ये गीत आपने कैसे लिखा, लेकिन
1: नहीं, आप जरूर पूछिए। हाँ। मैं ये बताना चाहता हूँ ये गीत मुझे मिला कैसे।
0: अच्छा, ये बताना चाहते हैं?
1: जी जी,
0: बताइए।
1: क्योंकि ये मेरे करियर का मैं समझता हूँ सबसे बड़ा गीत था। इससे पहले लगभग मेरे 245 गाने रिकॉर्ड हुए जो बड़े बड़े सिंगरों ने गाए और बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ किए, लेकिन कोई गाना मेरा बाहर नहीं आया।
0: अरे, इतने सारे गाने करने के बाद भी?
1: हाँ, और नहीं आया। तो मुझे ये मिला ऐसे कि मुझे आनंद राज आनंद जी मेरे मित्र थे और उनके साथ मेरा काफी आना जाना था, तो मैं हमेशा उनको बोलता था यार मेरे से भी कुछ लिखवा लो। ये गीत मिलने से पहले मैं स्टैब्लिश डायरेक्टर

0: हो चुका था
1: फिल्मों की
0: लेकिन वो चली नहीं, मैं भी चला नहीं। तो लेकिन ये गीत जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मेरे पास उस वक्त टू व्हीलर था और बारिश हो रही थी और उस बारिश में ये था कि 50 रुपए मैंने अपनी मिसेज को कहा कि पड़ोस से कहीं से लाओ, वो लेके आई, पेट्रोल डाला और मैं सहारा स्टूडियो आया। और सहारा स्टूडियो में आया तो वहां पे मुझे ये गीत लिखने के लिए मिला उनके डायरेक्टर, उन्होंने मुझे सिचुएशन बताई और मैंने ये गीत लिखा। और ये गीत लिखा और ये गीत मुझे लगा कि जैसे और गीत नहीं आए ये भी नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को कुछ वो नहीं था। तो मुझे बहुत अच्छे पैसे मिले इस गीत के, पहली बार इतने पैसे मिले मुझे।
1: तो हम ये माने कि जो पहला गीत सामने आया दुनिया के वो ये था?
0: नहीं,
1: वो कोई और था। जी, बड़ा उलझा हुआ मामला है।
0: जी।
1: तो बात चल रही थी कि आप हसरत साहब से मिले, आप शैलेंद्र जी से भी मिले, शंकर जयकिशन से मिले, तो हमारे मन में ये बात आ रही है कि उनके साथ, क्योंकि आप 1973 में आ गए थे और आपने कहा कि लगभग 1978 के आसपास ये सब मुलाकातें शुरू हो गई थी, तो ये सफर कैसा रहा, किस तरह से आपने फिर गीत लिखना शुरू किया या इन लोगों के साथ आपने वक्त को कैसे बिताया? इतना आसान तो नहीं होता इतने बड़े लोगों के साथ।
0: बहुत मुश्किल होता है। इस सफर में मेरा अफसोस सिर्फ इतना ही रहा कि मैं शैलेंद्र जी से मिल नहीं पाया, वो उससे पहले उन डेथ हो गई।
1: अच्छा।
0: लेकिन मैं चूंकि उनका फैन था, हसरत साहब में ही मुझे शैलेंद्र जी भी मिल गए और हसरत जयपुरी भी मिल गए। वो मुझे मिल गए और उस उन्हीं दौरान मेरी जो मुलाकात हुई वो पंडित नरेंद्र शर्मा जी से हुई।
1: अच्छा।
0: और पंडित नरेंद्र शर्मा जी और शैलेंद्र जी एक ही गली के राइटर थे।
1: अच्छा।
0: वो मतलब उनकी थॉट, उनका सोचना, तो उनसे मेरी काफी मतलब मुलाकातें रही। और हसरत साहब के यहाँ जब मैं जाता था तो हम गीतों को जो डिस्कस करते थे, उनके सिखाने का सबसे अच्छा तरीका ये था कि वो कभी भी मेरे लिखे हुए गीत को रिजेक्ट नहीं करते थे।
1: अच्छा।
0: वो कहते थे ये लाइन तुमने लिखी है ना, इसमें तुम क्या कहना चाहते हो? तो मैं बोलता था मैं ये कहना, तो उसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे कर लो, इस लाइन को यहाँ से निकाल दो, इसकी जगह ये ले आओ, मतलब मेरे ही गीत को वो सुधारते थे। वो कभी उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि ये क्या लिखा है, तो ऐसा मतलब उन्होंने कभी नहीं किया, वो हमेशा मुझे सिखाते थे, मैं करता था। और ये सफर एक ऐसा था कि मुझे एक दिन, मैं रात को पाली हिल पे घूम रहा था और हसरत साहब के यहाँ आने के बाद जो है ना, मेरे को ये था कि सोने का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी जब आना जाना मेरा लगा हुआ था, लेकिन ये मैंने एक झोपड़ा ले लिया था खेरवाड़ी में और मेरी तब तक शादी भी हो गई थी, तो हम लोग मियां बीबी रहते ही थे वहां पे। तो वहां मेरी मुलाकात बहुत ही मशहूर कॉमेडियन मारुति साहब से हुई।
1: अच्छा।
0: तो मारुति साहब जो ना, वो रात का समय था और अपने बरांडे में टहल रहे थे, तो मैंने उनको पहली बार टहलते हुए देखा, तो उन्होंने मुझे बुला लिया और मैंने उनसे बातचीत की और उन्होंने भी वही क्वेश्चन पूछा, क्या करते हो, क्या करना चाहते हो, ये सब। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम कोई गीत सुनाओ, तो मैंने उनको सुना दिया, तो बोले कि तुम कल आओ। तो मैं नेक्स्ट डे पहुंचा, तो उन्होंने कहा बेटा ये गीत वीत तो ठीक है, तुम टेक्निकल कुछ काम करो। मैंने कहा जी वो क्या होता है? बोले कल आओ, हम तुमको बताएंगे। और वो मतलब मेरे को अपने साथ उन्होंने रखना शुरू कर दिया और उनके साथ रहने से क्या है, मेरे को थोड़ा सा इंडस्ट्री का देखने को मौका मिला और उनके ही द्वारा मुझे किशोर कुमार साहब मिले। मारुति साहब मुझे वहां लेके गए और वहां उन्होंने मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर बनाया।
1: अच्छा
0: जी। और मैं किशोर दा के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर लग गया।
1: क्या बात है, तब तक किशोर दा तो गाने गा ही रहे थे, बहुत शानदार और लेजेंड से
0: उनका
1: थे वो।
0: तो क्या कहना,
1: बहुत सुंदर। आगे हम आपसे बात करेंगे, एक गीत सुन लेते हैं पहले।
0: तो मंदाग्नि जी, एक गाना जोड़ी नंबर 1 का टाइटल ट्रैक मुझे सुनाइए।
1: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: मतलब इतना संघर्ष हुआ और संघर्ष के बाद कुछ राहत की सांस आपको तब मिली जब आप किशोरदा से जुड़े।
1: किशोरदा के जुड़ने के बाद मुझे लगा कि अब तो मेरा कुछ ना कुछ हो ही जाएगा।
0: हाँ, क्योंकि एक लंबा जुड़ाव रहा था किशोर कुमार के साथ आपका।
1: जी।
0: तो उनके साथ काम करने का अनुभव क्या रहा और किसने से फिर आपको सफलता मिलनी क्या शुरू हुई इस दौरान?
1: जी, मैं किशोरदा के साथ काम करने का मतलब ये हुआ कि मैं उस काम को काम नहीं कहता, एक ऐसी यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिला मुझे जहाँ सीखना ही सीखना था। वो आपके ऊपर है कि आप क्या सीखना चाहते हो, क्योंकि वो हर विधा में पारंगत थे। लिखना उन्होंने भी सिखाया, उन्होंने डायरेक्शन सिखाई, एडिटिंग सिखाई, उन्होंने कैसे किस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना चाहिए वो सब मैंने वहीं से सीखा।
0: वाला थे किशोर
1: बहुत बहुत और मैं उनको हमेशा साहब बोलता था, आज भी बोलता हूँ। उस घर के बहुत बड़े एहसान है मेरे ऊपर। वहां जाने के बाद ही मुझे लगा कि अब मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा और उसी घर से मुझे पहली डायरेक्शन की पिक्चर भी मिली। वो भी शायद इसी कारण मिली कि मैं उनका असिस्टेंट था तो प्रोड्यूसर ने फेथ किया कि मैं कुछ कर सकता हूँ और पहली फिल्म की डायरेक्शन मुझे वहीं से मिली।
0: जी, तो वो कौन सी फिल्म थी?
1: वो फिल्म थी गोरी।
0: गोरी,
1: और मेरे ये उसी दोस्त ने बनाई थी जो मुझे बंबई लेके आया था।
0: अच्छा।
1: विजय त्यागी। उन्होंने बहुत पैसे कमा लिए थे तो एक दिन बोले चल यार कोई और नहीं तो मैं फिल्म बनाता हूँ, और मुझे उन्होंने डायरेक्टर लिया। और इसमें किशोरदा ने भी गाना गाया और इस पिक्चर को करने के लिए मैं शंकर जी के पास गया और मैंने उनसे कहा कि शंकर जी मैं एक फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें म्यूजिक दें। तो उन्होंने कुछ इतना पहचाना नहीं क्योंकि फासला काफी हो चुका था। तो मैंने उनको याद दिलाया कि मैं कौन हूँ। तो बोले अच्छा, जो कल तक हमारे यहाँ नौकरी करता था आज हमको नौकरी पे रखने आया है।
0: अरे।
1: मैंने कहा जी नहीं, मैं कल भी नौकर था आज भी नौकर हूँ, मैं कल भी आपको मालिक समझ

0: समझता था, आज भी है, बस ये फिल्म आप करेंगे तो मेरा थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि कितने पैसे लाए हो? अभी हमारी हिम्मत नहीं हुई कि उनसे ये पूछें कि लोगे कितना, कैसे करोगे, ये सब बातें तो हुई नहीं। उन्होंने पूछ लिया कितने लाए हो, तो हमने उनको कहा कि 21,000 है शगुन के, कहीं उनको ऐसा ना लगे कि टोटल इतने ही है। तो हम डरे हुए बहुत थे, तो हमने कहा 1 रुपया और रखो इस पे। तो 1 रुपया रखा, उन दिनों कागज का चलता था। उन्होंने 21 छोड़ के 1 रुपया उठा के हमारी पिक्चर का, इसी में पूरी पिक्चर करूंगा।
1: अरे क्या बात है।
0: और उसी में उन्होंने की।
1: ये होते हैं महान संगीतकार, और उन्होंने समझा आपकी परिस्थिति को, और बहुत बड़ी बात। तो उसके बाद उस फिल्म में भी आपको कोई गाना था या केवल डायरेक्शन ही?
0: नहीं, मेरे गाने थे उसमें। मेरा पहला गाना उस फिल्म में मन्ना डे ने गाया था।
1: अच्छा।
0: हाँ, मन्ना डे साहब ने वो गाना गाया था। और गाना था दुल्हन सेज है फूलों की, दहेज गमों के खार, दूल्हे का दहेज है जीवन में दुल्हन का सच्चा प्यार।
1: क्या बात है। यहाँ जब बात चल रही है गीत की, तो कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
0: देखिए, आप मेरा एक गीत सुना दीजिए, फिर उस गीत की कहानी मैं आपको बताऊंगा।
1: अच्छा, कौन सा?
0: मेरा वो गीत जिसने मुझे सुधाकर शर्मा बनाया, और पहला गाना जो रिलीज हुआ वो था ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
1: क्या बात है। ये गीत तो हर एक के दिलो दिमाग में है, और अगर कहीं शादी ब्याह के या किसी फंक्शन में हम जाते हैं तो इस गीत पर तो बहुत सारे डांस क्रिएट किए जाते हैं।
0: इस गीत ने मेरी जिंदगी बना दी।
1: अच्छा।
0: मतलब ये गीत पहला गीत था जो मेरा रिलीज हुआ। और उसके बाद जो है ना, लोगों ने मुझे पहचानना शुरू किया। एक्चुअल में हुआ ये कि हिमेश रेशमिया साहब, जो आज के टॉप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, इनके पिताजी मेरे दोस्त थे, विपिन भाई रेशमिया।
1: अच्छा।
0: और एक फिल्म में वो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर भी थे, मैं डायरेक्टर था। तो उन्होंने मेरे को कहा कि यार अभी हिमेश जी सीरियल बना रहे हैं, तो आप इनके साथ लग जाइए। मेरे पास उन दिनों कुछ काम वाम था नहीं, क्योंकि उससे पहले मैं डायरेक्टर ये वो सब बन के सब फ्लॉप हो चुका था। एकदम बेकार, मतलब उस लायक था कि अब मैं काम मांगने भी कहां जाऊं, क्योंकि लोग, मैं डायरेक्टर बन गया, 2-3 पिक्चरें मैंने कर ली लेकिन चला नहीं। तो अब शर्मिंदगी भी थी कि मैं काम कहां जाऊं। तो मैं हिमेश जी के साथ जो ना, उनके जितने सीरियल थे उनके सबके टाइटल मैंने ही लिखे।
1: अच्छा।
0: हाँ, उनके लगभग उन्होंने 40-45 कुछ ऐसे सीरियल उनके थे, लेकिन सबके मैं गाने मैंने लिखे। और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे ढंग से अपने साथ ज्वाइंट किया। हमारा उम्र में बहुत फर्क था
1: जी।
0: तो एक दिन हिमेश जी बोले कि सर वो क्या है? मैंने कहा भाई तुम मुझे सर बोलो, मैं तुमको सर बोलूं, बस इसी में कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये सलमान भाई ने ये गाना हिमेश जी को दिया लिखने के लिए, प्यार किया तो डरना क्या का टाइटल सॉन्ग था
1: जी, जी।
0: और हिमेश जी ने ये गाना मुझे दिया।
1: हाँ।
0: और उन्होंने कहा कि सर ये पिक्चर अगर हमको मिली है, अगर ये गाना आप लिखोगे तो गाना सुपर डुपर हिट होगा, और ऐसा होगा वैसा होगा।
1: तो हिमेश जी की ये पहली फिल्म थी?
0: पहली फिल्म थी उनकी, ये पहली फिल्म थी। तो मैंने कहा भाई लिख देंगे, लेकिन एक सवाल है हिमेश इसमें कि प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि जितनी उन्होंने अच्छी लिखी होंगी वो तो सब आ गई, तो हम लोग फंस जाएंगे यार। बोले नहीं नहीं सर, लेकिन वो तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि टाइटल ही वो है। तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। तो उस गाने को हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली,
1: ठीक है,
0: और कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे।
1: हाँ।
0: इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे। सेकंड लाइन आप लिखो ही मत, बस इसको हुक लाइन रखेंगे।
1: अच्छा।
0: तो फिर मैंने लिखा तेरे प्यार में डूब गए हम खुद को ही, वो जैसा।
1: हाँ।
0: वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, और वो ऐसे नाम की चुनरिया ओढ़ी के उसके बाद फिर ये गाना गुलशन जी ने सुना, तो उन्होंने कहा कि एक गाना इस टीम का और ले लो। फिर हमको वो एक गाना मिला, और वो गाना था तुम पे हमें अटके आ रहा दिल भी मारे झटके।
1: क्योंकि तुम वो अटके।
0: अटके। तो ये दो गाने मेरे पहले रिलीज हुए और बहुत मजा आया। मैं और हिमेश बहुत नर्वस थे कि पता नहीं गानों का क्या होगा। तो लिबर्टी में हम लोग पिक्चर देखने गए थे।
1: हाँ हा।
0: तो हम लोग पिक्चर में इतना इंटरेस्ट नहीं था, हमको इंटरेस्ट था कि अपना गाना कब शुरू होता है। और जैसे ही अपना गाना शुरू हुआ और लोगों ने, मैंने पैसे बरसते हुए पहली बार देखे।
1: अच्छा।
0: अपने गाने पे।
1: क्या बात है।
0: दोनों बहुत खुश हुए और हमें लगा कि अब हमारी

0: वैसे तो इस फिल्म के संगीतकार साजिद वाजिद साहब थे,
1: इसमें जतिन ललित जी भी थे, साजिद वाजिद भी थे और हिमेश रेशमिया भी थे, दो गाने हिमेश जी
0: और गीतकार भी, अन्य गीतकार भी थे
1: इसमें, समीर साहब भी थे, एक और गीतकार थे और
0: एक आपका,
1: मैं भी था। और मुझे लगा कि इतने सब बड़े बड़ों में देखो क्या होगा, लेकिन
0: और ये गाना तो मतलब आज भी सबकी जुबान पर है और सुनते ही एक अलग किस्म की थ्रिलिंग हो जाती है। इतना खूबसूरत तरीके से आपने लिखा है और हिमेश जी ने उसको संगीत में,
1: बहुत सुंदर
0: है इसमें, पिक्चराइजेशन भी बहुत सुंदर है।
1: सबसे बड़ा क्रेडिट इसमें मैं हिमेश जी को ही दूंगा, क्योंकि उन्होंने वो जो प्यार किया तो डरना क्या की ट्यून बना के जो मुझे बचाया सेकंड लाइन लिखने से, ये बस ऊपर वाले ने उनके दिमाग में डाली, बहुत बारीक काम किया। और हिमेश जी जितना भी काम करते हैं वो बहुत बारीकी में करते हैं और बहुत धैर्य से करते हैं।
0: मुझे एक बात बताइए सुधाकर जी, आपका एक इंटरव्यू सुन रही थी, आपने कहा कि इस गीत में मैंने एक पैंतरा डाला था, मैंने हिमेश जी से कहा था कि इसमें एक पैंतरेबाजी करनी पड़ेगी,
1: जी जी।
0: तो ये पैंतरा क्या था और किस तरह से आपने इसको निभाया, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे।
1: पैंतरा क्या है कि एक्चुअल में हसरत साहब बोलते थे कि जब कभी ऐसी जगह पे फंस जाओ तो उसमें पैंतरेबाजी से काम लेना चाहिए। वो पैंतरा क्या होता है कि मतलब अब जैसे कि प्यार किया तो डरना क्या कि सेकंड लाइन मैंने नहीं लिखी, तो पैंतरा ये था कि गाने को ऐसी जगह से शुरू करो कि लोगों को ये पता ही नहीं लगे कि कहना क्या चाहते हैं।

0: हम खुद को ही भूल गए हैं, दुनिया चाहे जो, यहाँ से शुरू हो रहे तो उनको क्या मालूम ये क्या कहने वाले हैं। और ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, जब प्यार किया तो डरना क्या, हिमेश भाई ने इसकी ट्यून बनाई। और जब प्यार किया तो डरना क्या, ओढ़ली डरना क्या के बाद लोग खटके, तो हमने दूसरा ही रंग दे दिया, ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की। ये ओढ़ली पैंतरा था।
1: बहुत सुंदर, मतलब एक बहुत बारीक काम था ये, जिसे हर एक को समझना आसान नहीं था। तो जब ये गीत आपने रिकॉर्ड किया, आपने अलका याग्निक और कुमार सानू को इस गीत में गवाया, तो क्या कोई दिक्कतें आपको पेश आई, और किस तरह से एक गाना, क्योंकि गाना मिल तो गया लेकिन रिकॉर्ड किस स्थिति में हुआ उसकी भी कहानी होती है।
0: हाँ, ये दिक्कत तो इसमें बहुत बड़ी आई, और दिक्कत सबसे बड़ी ये आई कि हिमेश जी ये चाहते थे कि ये गाना अलका याग्निक और कुमार सानू गाए, तो चूंकि उनका ये पहला गाना था और उनका ये था कि अगर ये दोनों गाएंगे तो सुपर हिट होगा, तो दादा को लाने में को, मैंने कहा ठीक है मैं लेके आता हूँ, क्योंकि मेरा रिश्ता था, हम लोग काम कर रहे थे, तो मैं गया तो दादा को तो इतना प्रॉब्लम नहीं था। मैंने दादा को बोला दादा एक फिल्म मिली है और उसमें आपको ये गाना गाना है, तो दादा बड़ा वाकई में वो टाइगर ही है, हाँ वो जो है बस वही है
1: जी,
0: वो कभी कुछ बनावटी बातें नहीं करते हैं। उसमें कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ये कुछ नाराज हैं, नाराज वाराज भी कुछ नहीं होते, उनको खुद ही नहीं मालूम कि वो क्या उनको बोलना चाहिए और क्या बोल गए। बड़े भोले और बड़े डैशिंग आदमी है, तो मेरे को बोले हाँ ठीक है गा दूंगा। कौन है म्यूजिक डायरेक्टर? तो मैंने कहा आपने एक दो गाने सीरियल में गाए हैं उसके, हिमेश भाई का म्यूजिक है। हाँ अच्छा वो करता है, वो करूंगा। प्रॉब्लम आई अलका याग्निक की।
1: अच्छा,
0: उनका अप्रोच नहीं हो पा रहा था। मैं जब भी उनकी बिल्डिंग पे जाता था तो वो ऊपर फोन करके पूछते थे तो वहां से मना हो जाता था, कई कारण रहे होंगे जो भी, तो मैं बड़ा परेशान हुआ। तो मैंने कहा हिमेश भाई बाकी तो सब हो रहा है मगर उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है। तो वो मुलाकात यूं हुई कि मैंने सेम बिल्डिंग में कविता कृष्णमूर्ति रहती थी, तो मैं नेक्स्ट डे गया, मैंने कहा मुझे कविता जी के घर जाना है, तो उन्होंने कविता जी के घर फोन लगाया और उन्होंने कहा भेज दो। अब मैं कविता जी के घर नहीं जाके अलका जी के घर चला गया।
1: अरे यहाँ पर आपने भी पैतरा खेला।
0: पैतरा हो गया।
1: जी।
0: और फिर अलका जी से मेरी बात हुई, अलका जी को मैंने कहा कि ऐसे ऐसे गाना आपको गाना है, मुझे जानती थी, तो उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, मैंने उन हिमेश जी का परिचय दिया, ये सब हुआ, तो बोले कि ठीक है लेकिन अभी तो क्या है मैं थोड़ी बिजी हूँ ये वो। मैंने कहा गाना आपको गाना है और ये गाना कल ही गाना पड़ेगा आपको, वरना ये पिक्चर हमको नहीं मिलेगी और बहुत दिनों से मेरे पास काम हम नहीं है, तो अभी मिला है। तो बोले नहीं कल तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। मैं चुप हो गया। बोले कल नदीम श्रवण की रिकॉर्डिंग है। मैंने कहा ठीक है। तो मैं क्या गया वहां से निकला, और मैं निकलने से पहले वो गाना उनको कैसेट में लेके गया था, उनको सुनाया, गाना बहुत पसंद आया, तो मुझे लगा गाने के लिए तो रेडी हो गई है, अब ये कल नहीं गा पाएंगी क्योंकि उनका गाना है। तो मैं सनी में पहुंचा, और सनी में मैं गया तो उधर वो सिटिंग रूम में नदीम और श्रवण जी दोनों बैठे थे, तो मैं बार बार ऐसे उनको झांक के ऐसे हो जाता था, अभी मैं अंदर भी कैसे जाऊं। थोड़ी देर में श्रवण भाई बाहर आए, तो मैंने श्रवण भाई को बोला कि श्रवण भाई एक मेरी छोटी सी मदद कर दो यार, मैं बहुत परेशान हूं। तो उन्होंने तुरंत जेब में हाथ डाल के पर्स निकाला।
1: अरे
0: बहुत बढ़िया इंसान थे। मैंने कहा भाई ये वाली मदद नहीं।
1: अच्छा
0: यार क्या हुआ? मैंने कहा ये वाली मदद नहीं, मदद ये चाहिए कि हमको एक पिक्चर मिली है और उस पिक्चर में एक गाना है, वो गाना हम अलका जी से गवाना चाहते हैं, तो अगर वो कल गाएंगी तो पिक्चर हमको मिलेगी, अदरवाइज वो नहीं मिलेगी। हाँ तो फिर क्या हुआ? नगा नहीं, मैं अलका जी से बात हुई, वो आपका गाना गा रही है इसलिए हमारा गाना नहीं गा पाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मेरे सामने ही अलका जी को कहा फोन करके कि ये सुधाकर जो है ये मेरा खास है, और कोई बात नहीं आप मेरा गाना 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद कभी भी गा दो, पहले इनका गा दो।
1: क्या बात है,
0: ये दिक्कत थी। लेकिन जब ये गाना एम्पायर में रिकॉर्ड हुआ और वो पल आया कि इन दोनों शहंशाहों ने गाया, और एक इसमें एक बात आ गई, मैं ये भूल गया कि मुझे ठीक

0: से किसी ने बताया नहीं था कि इसमें काजोल हीरोइन है। तो मैंने हिमेश भाई को पूछा, यार हिमेश भाई इसमें हीरोइन कौन है? तो उसने कहा सर काजोल। मैंने कहा यार गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? हमने कहा यार काजोल के लिए तो इसमें कोई लाइन ही नहीं है। क्या मतलब? तो मैंने कहा वो अब मैं क्या बताऊं आपको सर, ये एक बार कुमार शानू को बुलाना पड़ेगा। बोले लेकिन हुआ क्या है? हमने कहा वो एक लाइन में काजोल के लिए लिखना चाहता हूँ खासकर। काजोल की आंखें जो है ना वो बड़ी कमाल हैं, और वो जो बातें करती है, जो जितनी बातें करती है सिर्फ उसकी आंखें बोलती हैं, बाकी सब तो ठीक है। और वो बात मैं कह नहीं पाया, लेकिन मैं कह दूंगा। तो बोला ठीक है बुलाओ, फिर आप ही बुलाओ। तो मैंने शानुदा को फोन किया। शानुदा शायद बर्थडे मना रहे थे, अपना था या किसी और का मुझे याद नहीं। मैंने कहा शानुदा इधर भी एक पैंतरा चला। मैंने कहा शानुदा एक्चुअल में जो लाइन गाने में प्रोड्यूसर ने पसंद की थी वो मैं आपको लिखवाना भूल गया, और जो रिजेक्ट थी वो आपने गा दी, और ये तो गड़बड़ हो जाएगी, तो आप प्लीज आके वो लाइन सही कर दीजिए। अरे यार मैं बर्थडे में हूँ, सब चमकी उमकी पड़ी है कोर्ट पे, मेरा ये हाल है। मैंने कहा दादा गाना तभी लगेगा जब वो लाइन होगी। दादा आए।
1: अच्छा, दो लाइन के लिए भी आए?
0: एक ही लाइन थी।
1: अच्छा,
0: दो तो मैंने बोली, लाइन तो एक ही थी
1: जी।
0: और वो आए, और आते ही थोड़े से जरा प्यार में नाराजगी होती ना, हाँ यार तो बोल बोल कौन सी लाइन है, क्या है ये? हमने कहा सर ये मेरी लाइन है, वो तौबा तौबा ये आंखें करती हैं सौ सौ बातें।
1: अच्छा जी।
0: तो वो मेरे को हंसने लगा, बोला तेरा नाटक है, तूने अभी सोचा होगा ये। मैं कुछ बोला ही नहीं। और उन्होंने वो लाइन गाई, और वो गाने में सबसे अच्छी लाइन,
1: बहुत सुंदर थी। और काजोल की आंखें जब एकदम हाईलाइट होती हैं उस गाने में, और सलमान गाते हैं, बहुत प्यारा लगता है, बहुत सुंदर।

0: मतलब कहने का ये हुआ सुधाकर जी कि एक गीत को बनवाने में इतनी मशक्कत आपको करनी पड़ी, कहाँ कहाँ आपको जाना पड़ा, तो जो आज नए गीतकार आने वाले उनको भी सबक मिलता है कि इतना आसान नहीं है कुछ नहीं करना, है ना, कि हमने लिख लिया और हम गीतकार कहला गए, उसके पीछे कितनी संघर्ष की कहानी है।
1: संघर्ष की कहानी मतलब यह होता है कि अगर चूंकि मैं डायरेक्टर रह चुका था, मैं ये सब कर चुका था, मैं लाइन में मतलब नया नहीं था ना, तो मुझे वो मालूम था कि जो ये म्यूजिक डायरेक्टर जो चाह रहे हैं अगर ये फुलफिल होगा तो गाना और खिल के आएगा, और वो चूंकि नए थे तो मैं वो सब कर सकता था। तो कभी भी कोई भी गाना सिर्फ कागज पे हिट नहीं होता है, उसके बहुत सी उसमें जो चीजें हमको डालनी होती हैं वो हम डालते हैं।
0: बिल्कुल, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप गीत लिखते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसके लिए गीत लिख रहे हैं, सिचुएशन क्या है।
1: हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस फिल्म का हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, ये गाना क्यों गाया जा रहा है, ये गाना गाते वक्त जो है ना इनकी सिचुएशन क्या है, और इस फिल्म का जो डायरेक्टर है उसका मिजाज क्या है, वो किस तरह के गाने पसंद करता है, तब हम उस रंग में जा सकते हैं।
0: मतलब आपके लिए किसी किरदार और सिचुएशन को जानना बहुत जरूरी है, तब जाके शब्दों का चयन आप करेंगे। आपने एक उदाहरण दिया था कि गणेशा पर जो आपने बनाई है, तो वो बच्चा कॉन्वेंट स्कूल
1: का है, इसलिए मैंने उसमें कर दिया कि ओ माई फ्रेंड गणेशा। अगर वो लड़का कॉन्वेंट में नहीं होता तो वो गणेशा को फ्रेंड नहीं कह सकता, और वो फ्रेंड जो ना इतना हिट हुआ कि उसकी तीनों चारों सीरीज में नहीं लिखी।
0: बिल्कुल,
1: तो ये क्या होता है कि हम किरदार क्या है हमारा, वो क्या कह रहा है, कितनी बात कर रहा है, तो उससे हमें क्लू मिलता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं
0: जी।
1: अभी जैसे प्यार किया तो डरना क्या, मैं जब दूसरा गाना

0: हमको मिला, तो अब वो गाना लिखना था हमको कि उसमें गाना डालना है और उसमें भैया भी होना चाहिए। तो मैं और हिमेश भाई दिए थे कि यार गाना तो ठीक है, भैया क्या करेगा इसमें। तो मेरे को उन्होंने कहानी बताई कि भाई ऐसा है, अरबाज भाई वो रोल कर रहे हैं, तो वो उनकी भाई कुछ कहानी है, वो बहन को ऐसा चाहते हैं, ये प्यार करता। तो हमने कहा ठीक है, तो वो गाना हुआ तुम पे हमें अटके आ रहा दिल भी मारे झटके। तो अब झट ये तो गाना हो गया, अब भैया की एंट्री कैसे होगी। तो मेरे को एक जहन में बात आई कि देखिए जब कोई लड़का लड़की आपस में मिलते हैं, भले वो सच्चे मन से प्यार कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, भाई को अगर पहली बार पता लगेगा तो और उसे उसे लगेगा कि मेरी बहन की तरफ बढ़ रहा है, तो वो खटकेगा जरूर।
1: जी
0: भले बाद में उसको पता लगे कि ये मेरी बहन की सच्चाई है, लेकिन पहला उसका जो रिएक्शन आएगा तो मेरी वो लाइन आ गई, बच के रहना प्यार में तुमको पड़ जाए ना पटके और भैया को तू खटके।
1: अच्छा।
0: और ये गाना कंप्लीट हुआ।
1: जी, जी।
0: ये दो गाने मेरे सुपर डुपर हिट हुए।

0: आपने ये बताया कि किसी भी गीत को लिखते समय क्या बारीक दृष्टि होनी चाहिए गीतकार की, एक संगीतकार की, तब जाकर किसी की एंट्री आना कोई इतना आसान नहीं है कि किसी भी गीत में कोई भैया आया या दादी आई या ताऊ आए, वो क्यों आए,
1: क्यों आए,
0: और गीतकार ने उनके लिए क्या लिखा।
1: देखिए ये फिल्म हमराज का गाना है, साढ़े ना लाएगी ते लाइव बन जाएगी, इसकी भी कहानी बड़ी कठिन कहानी है।
0: अच्छा,
1: क्या है कि मैं इतना बड़ा राइटर नहीं हूँ जितने बड़े हमारे बुजुर्ग होते थे, और उनके सामने शायद कोई बोलता भी नहीं था, उनका लिखने का भी इतना परफेक्शन भी था जो शायद मुझ में नहीं है। मैं लेकिन एक बात की जरूर कोशिश करता हूँ कि मेरा डायरेक्टर, मेरा म्यूजिक डायरेक्टर जो मुझसे चाहता है मैं उसको फुल

0: फुलफिल कर देता हूँ
1: जी। ये सबसे
0: अपनी बात को रखते हुए
1: जी,
0: मैं ऐसा नहीं कहता कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उतनी बड़ी पदवी मेरे पास नहीं मिली, और नहीं मिली तो अच्छा है, क्योंकि मुझे भी अलग अलग काम करने का मजा है। कोई आदमी बोलता है मुझे ऐसा चाहिए, तो मैं कोशिश करता हूँ वैसा ही दूं। तो ये जब गाना ओके हो गया, सब कुछ हो गया, अब उसके बाद बात आई कि मेरे को डायरेक्टर ने सजेशन दिया कि इसमें जब सब नाच रहे तो दादी भी नाचेगी।
1: अच्छा।
0: और दादी गाएगी भी।
1: अच्छा।
0: तो मेरे को थोड़ा सा फिर झटका लगा, क्योंकि झटका इसलिए मुझे लगता था कि ये सारी बातें मुझे कन्वे होती थी। अभी हिमेश भाई ने ट्यून बना दी, सब कुछ हो गया, अभी अगर उनको भी बोला तो वो भी मुझे ही बोलेंगे, और मुझे ये हमेशा रहता था कि हिमेश भाई की बात अगर जो उन्होंने सोचा है अगर मैं वो नहीं दे पाया तो हिमेश भाई निकाल देंगे या प्रोड्यूसर निकाल देगा। मुझे एक डर हमेशा रहता था, आज भी रहता है, कि अगर मैं अच्छा काम नहीं कर पाया। अच्छे से दो मुरादें हैं, एक अच्छा काम वो जो आपको पसंद है, एक अच्छा काम वो जो दुनिया को पसंद है। तो मैं दोनों के कॉम्बिनेशन में रहता हूँ, मुझे भी लगे और दुनिया को भी लगे।
1: जी, जी।
0: तो मैंने कहा ठीक है दादी गाएगी, लेकिन एक सिंगर और बुला लीजिए फिर। तो जसपिंदर नरूला जी को मैंने फोन किया।
1: क्या बात है।
0: और उनको बुलाया, गाना वाना लिखा हुआ नहीं था तब तक।
1: अच्छा।
0: पहले सिंगर तो मिले। तो जब हो गया तो मैंने गाना लिखा। उसमें अब मैंने सोचा कि दादी जो गा रही है तो दादी क्या गाएगी, अभी ये तो लव सॉन्ग चल रहे हैं, हीरोइन हीरो की तारीफ कर रही है, हीरो हीरोइन की कर रहा है, ये कर रहा है, सब दोस्त नाच रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, दादी अचानक बेचारी क्या गाएगी। तो बहुत सोचने के बाद ना मुझे एक याद आया कि जब गांव में कोई फंक्शन होता है ये सब ऐसा होता है ना, तो बुड्ढी बुड्ढी भी नाचना शुरू कर देती है, और वो कभी कभी तो ऐसा नाचती है कि जवान उसको देखना शुरू कर देते हैं, नाचना बंद कर देती है
1: जी।
0: उनका अपना एक स्टाइल होता है। तो मैंने पूछा उनको कि भाई इसके दादाजी भी हैं क्या फिल्म में, और बाद में ऐसा नहीं दादा भी कुछ जवाब देगा, बोले नहीं दादा नहीं दादी
1: जी।
0: तो अब वो जो बॉबी देओल साहब गाना गा रहे हैं गा रहे हैं गा रहे हैं, और दादी की एंट्री मैंने कराई कि वारी वारी जाऊं पुत्र तेरी इस जवानी पे, और तेरे दादा याद आए तेरी इस कहानी पे
1: जी।
0: यहाँ तक तो दादी गाती है, अब लड़का क्या जवाब दे, दादी कोई रोमांटिक जवाब तो नहीं दे सकता है। तो कहता है कि दादी इस बात में दम है, पोता ना तेरा कम है, वादा है तू अगले साल पड़ पोता खिलाएगी।
1: क्या बात है।
0: और ये 10 मिनट की कहानी है, मतलब आपको अभी लिखना है, गाना चल रहा है, गाना गाया जाएगा, तो वो आपका माइंड जो है ना वो कभी भी हाइपर टेंशन में नहीं आना चाहिए। कोशिश करो कि अगर कुछ लोग बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, और हम वैसा काम करने की कोशिश करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो ये गाना मतलब इतना बड़ा सेलिब्रेशन और दादी की एंट्री होना, ऐसे बहुत से काम जो है ना मेरी लाइफ में हुए हैं और मैं उनमें से पार भी हुआ हूँ
1: जी।
0: गीत सुनाइए।
1: मैं आपसे यही कहने वाली थी। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत फिल्म हम।

0: ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏਗੀ ਤੋ ਲਾਈਫ ਬਣ ਜਾਏਗੀ
1: आप सुन रहे थे जाने माने गीतकार सुधाकर शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। तकनीकी सहायक भावना सिंदल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम

सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के एक कार्यक्रम, जिसे हमारे मुंबई केंद्र से प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज रहे हैं। प्रस्तुत है युवा दोस्तों का कार्यक्रम युववाणी।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: नमस्कार साथियों, आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम युववाणी में मैं हूं आपकी अपनी रेडियो दोस्त शिवानी श्रीवास्तव सहज, और जो बिताने जा रही हूं आपके साथ कुछ खूबसूरत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक पल। आज के इस खास महफिल में बातों के कई रंग बिखरने वाले हैं। शुरुआत होगी चर्चा से, जहां हम जानेंगे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी MSME के बारे में। वे छोटे छोटे कदम जो देश की अर्थव्यवस्था को बड़ी रफ्तार देते हैं और लाखों सपनों को उड़ान देते हैं। इसके बाद चलेंगे हम हमारी धरोहर की ओर, जहां रूबरू होंगे हमारी राम वनवासा की सांस्कृतिक विरासत और उन कहानियों से जो हमारी मिट्टी की खुशबू को आज भी संजोए हुए हैं। फिर आएगा आर्थिक जगत, जहां बात होगी कोल लेंडिंग की, एक ऐसी व्यवस्था की जो वित्तीय सेवाओं को आम लोगों तक और अधिक सरलता से पहुंचाने का काम कर रही है। बीच बीच में संगीत के सुरीले रंग भी आपकी इस यात्रा को और खुशनुमा बनाएंगे। तो साथियों, ज्ञान की बातें हो, विरासत की सौंधी महक हो या अर्थव्यवस्था की नई दिशा, आज का कार्यक्रम लेकर आया है जानकारी और मनोरंजन का खूबसूरत संगम। आइए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट चर्चा की ओर, और जानते हैं आखिर MSME किस तरह भारत की तरक्की की कहानी को नई ऊंचाइयां दे रहा है। दोस्तों, किसी छोटे से गांव में रहने वाला रमेश अपने घर के एक कमरे में लकड़ी के खिलौने बनाता था। उसके हाथों में हुनर था, लेकिन साधन कम थे। रोज कुछ खिलौने बनते, स्थानीय बाजार में बिकते और बस इतनी ही आमदनी हो पाती थी कि घर का खर्चा चल सके। लेकिन एक दिन उसे सरकारी योजनाओं, बैंक ऋण और MSME के बारे में जानकारी मिली। उसने अपने छोटे से काम का पंजीकरण कराया, थोड़ी मदद मिली, नई मशीनें आई और देखते ही देखते वही छोटा कमरा एक बड़ा उद्योग में बदल गया। आज रमेश न केवल अपना परिवार चला रहा है, बल्कि गांव के कई लोगों को रोजगार भी दे रहा है। दोस्तों, यही है MSME की असली ताकत। दोस्तों, 27 जून को मनाया जाने वाला इंटरनेशनल MSME दिवस साल 2017 से मनाया जा रहा है, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने छोटे छोटे उद्योगों के बड़े योगदान को सम्मान देने के लिए इस दिन को आधिकारिक मान्यता दी थी। MSME यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, ये सिर्फ उद्योग नहीं है बल्कि लाखों सपनों को उड़ान देने वाला पंख है। ये वही छोटे छोटे कारोबार हैं जो किसी गली के बेकरी, गांव की हस्तशिल्प इकाई, सिलाई कढ़ाई केंद्र, डेयरी, फर्नीचर निर्माण, मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर या फिर किसी युवा के स्टार्टअप में रूप में हमारे आसपास दिखाई देते हैं। अगर भारत की अर्थव्यवस्था एक विशाल पेड़ है दोस्तों, तो MSME उसकी जड़ों की तरह है। जड़ें दिखाई भले ना दें, लेकिन पूरा पेड़ उन्हीं के सहारे खड़ा रहता है। साथियों, आज देश में करोड़ों MSME इकाइयां कार्यरत हैं, जो लाखों लोगों को रोजगार दे रही हैं। यही कारण है कि MSME क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। अब जरा सोचिए, जब कोई महिला अपने घर से अचार या पापड़ या हस्तशिल्प का काम शुरू करती है, या जब कोई युवा अपनी

छोटी सी मशीन लगाकर उत्पादन शुरू करता है, या फिर जब कोई कारीगर अपने हुनर को व्यवसाय का रूप देता है तभी एक MSME का जन्म होता है और सरकार भी इन सपनों को साकार करने में साथ खड़ी है। उद्यम पंजीकरण, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP, मृदा योजना, क्रेडिट गारंटी योजना और चैंपियंस पोर्टल जैसे पहले उद्यमियों को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करती है। सबसे अच्छी बात तो यह है दोस्तों कि आज उद्यम पंजीकरण की प्रक्रिया ऑनलाइन और काफी सरल हो चुकी है। यानी यदि आपके पास कोई अच्छा व्यावसायिक विचार और उसे पूरा करने का जज्बा हो तो शुरुआत करना पहले की तुलना में कहीं आसान हो गया है। साथियों, MSME सिर्फ कारोबार नहीं बढ़ाता बल्कि आत्मनिर्भरता का विश्वास भी जगाता है। जब गांव का उत्पाद देश के दूसरे राज्यों तक पहुंचता है या जब किसी कारीगर का सामान विदेशों में पसंद किया जाता है या फिर जब एक छोटा व्यवसाय कई लोगों को रोजगार का जरिया बनता है तब MSME की सफलता की कहानी लिखी जाती है। दोस्तों, छोटे हाथों में बड़े सपनों का उजियारा होता है। हर छोटा कारोबार कल का सितारा होता है। जो हौसलों से अपनी राह खुद बना लेते हैं MSME के सफर में वही नजारा होता है। तो साथियों, इस सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम दिवस पर उन सभी उद्यमियों, कारीगरों, महिलाओं और युवाओं को सलाम जो अपने सपनों को मेहनत से सींच कर न केवल अपना भविष्य संवार रहे हैं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव भी रख रहे हैं। क्योंकि बड़े बदलाव अक्सर छोटे कदमों से ही शुरू होते हैं और MSME उन्हीं छोटे कदमों को बड़ी मंजिल तक पहुंचाने का नाम है। दोस्तों, इसी महत्वपूर्ण और आवश्यक जानकारी के बाद चलिए अब सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

चलिए दोस्तों, गाते गुनगुनाते हम पहुंच गए हैं दिल्ली। अब जब हम दिल्ली पहुंच ही गए हैं तो चलिए थोड़ा घूम भी लेते हैं। साथियों, आइए आज आपको दिल्ली की भीड़ भाड़ से दूर इतिहास की एक ऐसी सैर पर ले चलते हैं जहां हर कदम के साथ सदियों पुरानी कहानियां हमारे कानों में धीरे धीरे फुसफुसाती हैं। सुबह की हल्की धूप है, हवा में पेड़ों की सरसराहट खुली हुई है और हम धीरे धीरे हुमायूं टॉम्ब के मुख्य द्वार की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे ही विशाल दरवाजे से अंदर कदम रखते हैं, सामने दूर तक फैले हरे भरे बाग, पानी की लंबी नहरें और उनके बीच शान से खड़ा यह भव्य मकबरा दिखाई देता है। जरा ठहरिए साथियों, कुछ पल के लिए आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए। पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे रही है, पेड़ों से छनकर आती धूप जमीन पर सुंदर आकृतियां बना रही हैं और सामने लाल पत्थरों तथा सफेद संगमरमर से सजा यह मकबरा मानो हमें अपने पास बुला रहा हो। हम धीरे धीरे इसकी ओर बढ़ते हैं, हर कदम के साथ इसकी भव्यता और भी बढ़ती जा रही है। करीब पहुंचकर जब हम इसकी ऊंची सीढ़ियां चढ़ते हैं तो लगता है जैसे इतिहास की किसी दहलीज पर खड़े हूँ। लगभग 450 साल पहले भी शायद लोग इसी रास्ते से होकर यहाँ आते होंगे। साथियों, यह केवल एक मकबरा नहीं है, यह मुगल स्थापत्य कला का वह पहला शानदार नमूना है जिसने आगे चलकर भारतीय वास्तुकला की दिशा ही बदल दी। यहाँ पहली बार इतने बड़े पैमाने पर लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का संयोजन देखने को मिला। बाद में यही शैली ताजमहल जैसी विश्व विख्यात इमारतों में भी दिखाई देती है। अब आइए मकबरे के चारों ओर बने बागों में थोड़ा और टहलते हैं। इन रास्तों पर चलते हुए ऐसा लगता है दोस्तों जैसे समय की रफ्तार धीमी पड़ गई हो। सामने बहती पानी की नहरों में मकबरे की परछाई झिलमिला रही हो। मुगल काल में इन नहरों में लगातार पानी बहता रहता था जिससे पूरा परिसर और भी मनमोहक दिखाई देता था। और साथियों, एक दिलचस्प बात और जानते हैं, यह मकबरा केवल हुमायूं की कब्र तक सीमित नहीं है। यहाँ मुगल वंश के अनेक राजकुमारों, राजकुमारियों और शाही सदस्यों की कब्रें भी हैं। इसलिए इतिहास इसे मुगल परिवार शांत नगर भी कहते हैं। अब जरा नजर ऊपर उठाइए, वह विशाल दोहरा गुंबद देखिए जिसकी ऊंचाई लगभग एक आधुनिक बहुमंजिला इमारत के बराबर है। सोचिए, जब ना आधुनिक मशीनें थी और ना ही आज जैसी तकनीक, तब इतनी भव्य संरचना का निर्माण अपने आप में एक चमत्कार था। साथियों, इस परिसर में घूमते हुए आपको एक और खास स्मारक दिखाई देगा, ईसा खान टॉम्ब। यह हुमायूं के मकबरे से भी पुराना है और भारत में अफगान स्थापत्य शैली का सुंदर उदाहरण माना जाता है। यानी कि एक ही परिसर में आपको दो अलग अलग स्थापत्य

0: परंपराओं की झलक देखने को मिलती है। और हाँ, अगर आप शाम के समय यहाँ डूबते हुए सूरज की सुनहरी किरणें जब मकबरे की दीवारों पर पड़ती हैं, तो लाल पत्थर सुनहरे रंग में चमक उठते हैं। वह दृश्य ऐसा होता है जिसे शब्दों में पूरी तरह बयां करना बहुत ही मुश्किल है। साथियों, कभी कभी इतिहास किताबों में ही नहीं मिलता, इन रास्तों पर टहलते हुए भी महसूस होता है। तो साथियों, अगर कभी दिल्ली की यात्रा हो तो हुमायूं के मकबरे में सिर्फ तस्वीरें ना लें, बल्कि कुछ देर इन बागों में बैठिए, इन रास्तों पर टहलिए और इन दीवारों को देखिए, क्योंकि इतिहास सिर्फ दिखाई नहीं देता, महसूस भी होता है। दोस्तों, इस खूबसूरत मकबरे में घूमने के बाद लगता है अब हमें ब्रेक लेना चाहिए। तो चलिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
1: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय। 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या, आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9559242404 और 7800037222।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधी लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोकगीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
0: दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में, आपकी अपनी रेडियो दोस्त शिवानी श्रीवास्तव सहज के साथ। दोस्तों, हम यात्रा पर हूँ और बिना गीत के अच्छा नहीं लगेगा, तो चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

दोस्तों, इस गीत के बाद चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट आर्थिक जगत की ओर और बात करते हैं को-लेंडिंग की। दोस्तों, मान लीजिए हमारे गांव के मोहन जी ने एक छोटा सा मसाला उद्योग शुरू किया। काम अच्छा चल रहा था, ग्राहकों की संख्या बढ़ रही थी, लेकिन अब उन्हें नई मशीनें खरीदनी थी, लेकिन उसके लिए उन्हें पैसे की जरूरत थी। मोहन जी बैंक पहुंचे, लेकिन कुछ कारणों से उन्हें उतनी आसानी से ऋण नहीं मिल पाया। तभी उन्हें एक ऐसे मॉडल के बारे में पता चला जिसका नाम है को-लेंडिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर को-लेंडिंग है क्या? तो साथियों, बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं। को-लेंडिंग का मतलब है दो संस्थाएं मिलकर एक व्यक्ति या व्यवसाय को ऋण उपलब्ध कराएं। आमतौर पर इसे एक बैंक और एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी NBFC या माइक्रो फाइनेंस संस्था शामिल होती है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए किसी भारी सामान को उठाने के लिए दो लोग अगर मिल जाएं, तो बोझ भी बढ़ जाता है और काम भी आसान हो जाता है। इसी प्रकार NBFC स्थानीय स्तर पर लोगों और छोटे कारोबारों की जरूरतों को अच्छी तरह समझती है, जबकि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी होती है। जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो छोटे उद्यमियों, किसानों, दुकानदारों और MSME इकाइयों तक ऋण पहुंचाना आसान हो जाता है। साथियों, अब जरा मोहन जी की कहानी पर वापस लौटते हैं। NBFC ने मोहन जी की व्यवसाय स्थिति को समझा, उनकी जरूरतों का आकलन किया और बैंक के साथ मिलकर ऋण की व्यवस्था कर दी। अब परिणाम यह हुआ कि नई मशीनें आई, उत्पादन बढ़ा और कुछ ही समय में मोहन जी ने अपने गांव के कई युवाओं को भी रोजगार देना शुरू कर दिया। यही तो है को-लेंडिंग की असली ताकत, वित्तीय संसाधनों को उन लोगों तक पहुंचाना जिनके पास ताकत वित्तीय संसाधनों को, उनके पास हुनर तो है लेकिन पूंजी की कमी है। और साथियों, इसका सबसे बड़ा फायदा MSME के क्षेत्र को मिलता है, क्योंकि छोटे उद्योगों को अक्सर समय पर ऋण नहीं मिल पाता है। को-लेंडिंग इस दूरी को कम करने का काम करती है। साथियों, आज जब भारत आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब को-लेंडिंग जैसे मॉडल छोटे उद्यमियों, स्टार्टअप्स, महिलाओं और ग्रामीण व्यवसायों के लिए नई उम्मीद बनकर उभर रहे हैं। तो याद रखिए, को-लेंडिंग सिर्फ ऋण देने की व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह उन सपनों को सहारा देने का माध्यम है जो संसाधनों की कमी के कारण कहीं पीछे छूट जाते हैं। जब बैंक का भरोसा और वित्तीय संस्थाओं का साथ मिलता है, तब छोटे कारोबारों के सपनों को नई उड़ान मिलती है। यही तो है को-लेंडिंग की कहानी। साथियों, जहां सहयोग से विकास का नया अध्याय खिलता है, और शायद इसीलिए कहा जाता है जब हाथ मिलते हैं तभी तरक्की के रास्ते भी खुलते हैं। दोस्तों, बातें तो चलती रहेंगी, बातचीत के सफर में आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
1: मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
0: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
2: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
3: दोस्तों, गीत संगीत आपसे बातचीत के साथ हमारा ये सफर कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। जी हाँ दोस्तों, वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का। पर जाने से पहले आइए नजर डालते हैं कल के कार्यक्रम की खास कड़ियों पर। दोस्तों, कल होगी चर्चा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम पर। सेगमेंट ज्ञान विज्ञान में होगी बात जीन थेरेपी की। सेगमेंट संस्था में होगी बात अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की। साथ ही गीत संगीत के साथ होगा कल का कार्यक्रम। तो दोस्तों, इसी के साथ अपनी रेडियो दोस्त शिवानी श्रीवास्तव सहज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिया के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
4: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
0: आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, एक विवाह पन्ना गीत। आवाज है विमला कठेरिया और सखियों की।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे नियामत अली और साथियों की आवाज में एक पूर्वी गीत, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं एक ब्रज लोकगीत उषा अग्रवाल और सखियों की आवाज में।

क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचे अयोध्या के हर घर तक? तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गड़ैया, अयोध्या। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 बजे के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com

आइए सुनते हैं हीरा लाल यादव और साथियों की आवाज में एक किसानी गीत।

मौर और साथियों के गाए इस गीत के साथ ही हमारे लोक गीतों का ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचारों का बुलेटिन प्रसारित किया जाएगा, प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिन

मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हर्मिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए प्रवासी भारतीय समुदाय को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रवासी समुदाय ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति को जिस तरह से विदेशों में संरक्षित और संजोए रखा है वो सराहनीय है। प्रधानमंत्री सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। इस बीच

0: वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोर ने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले दो वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। इनमें पीएमईजीपी 2.0 पोर्टल, समाधान 2.0 पोर्टल, पीएमएस पोर्टल, एमएसएमई ग्लोबल मार्ट 2.0 पोर्टल, एमएसएमई टेस्टिंग पोर्टल और एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 6.0 शामिल हैं। केरला में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 89,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू और फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण ने पहला स्थान हासिल किया। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई है। राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी मिली थी। परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वे अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नामकरण किया गया है। देविका सिहाग, किताम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has arrived in Victoria for a 3-day visit to Seychelles. He was given a warm welcome by the President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. Appreciating the gesture, Prime Minister Modi reiterated that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both nations. Prime Minister Modi also thanked the Indian diaspora for the warm welcome at the airport. He said the manner in which the Indian diaspora has preserved and celebrated culture from different parts of India is appreciable. Prime Minister Modi will be the guest of honour at celebrations marking the historic 50th anniversary of independence of Seychelles. U.S. Secretary of State Marco Rubio has praised Prime Minister Narendra

जी दोस्तों, ठीक उस खाली लिफाफे की तरह होते हैं कुछ रिश्ते जिनके भीतर कुछ भी नहीं होता और हम उन्हें संभाल कर रखते हैं।

0: आपके अपने आकाशवाणी अयोध्या से सुनिए सुनैन आई हॉस्पिटल द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आई केयर फॉर यू कल रविवार को शाम 5:30 से।
1: छू लेते हैं तेरे एहसास को बंद आंखों से भी, तुझे महसूस करने के लिए तू सामने हो जरूरी तो नहीं।

0: दोस्तों आपने पहला गीत सुना था फिल्म शक्ति से और दूसरा गीत जिसे आप सुन रहे हैं फिल्म अजनबी से जिसे आवाज दे रहे हैं किशोर कुमार और इसी गाने के साथ ही हमारा आज का शाम सुहानी कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: अपना वाहन चलाने से पहले ये सुनिश्चित कर ले कि आपके पास अपने वाहन से संबंधित सभी कागजात या प्रमाण पत्र कम्प्लीट है।
2: रेलवे क्रॉसिंग या फिर ट्रैफिक जाम के दौरान अपनी लेन में ही रहें, गलत लेन में जाकर दूसरी ओर से आने वाले वाहन के लिए रास्ते को अवरुद्ध ना करें।
1: चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें, ये आपकी सुरक्षा के लिए ही लगाई गई है। दो पहिया या फिर चार पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल और ईयरपीस का इस्तेमाल ना करें और चार पहिया वाहन चलाते समय उसमें लगे म्यूजिक सिस्टम को धीमी आवाज।
0: ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचारों का बुलेटिन संस्कृत में प्रसारित किया जाएगा, प्रतीक्षा करें।
1: जीवन की तेज रफ्तारी को अपने वाहन की तेज रफ्तारी से मत आंकें, अपना वाहन नियंत्रित गति में ही चलाएं।
2: स्टॉप लाइन से पहले अपने वाहन को रोक लें, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर कभी भी अपने वाहन को
3: खड़ा। PM आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिदिवसीय आधिकारिक प्रवासार्थं सेशेल्स देशस्य विक्टोरिया नगरे संप्राप्तः। तमिलनाडु राज्ये वाइको इत्यस्य नेतृत्वे एमडीएमके दलेन डीएमके दलेन सह स्वीय नववर्षीयं गठबंधनं समाप्तम्। प्रसिद्धः तमिल चलचित्र अभिनेता निदेशकश्च के भाग्यराजः अद्य चेन्नय्यां पञ्चत्वे विलीनः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्वः आकाशवाण्याः मन की बात इति जनप्रिय मासिक कार्यक्रमे देश विदेशस्य जनैः सह स्वीयं मनोगतं विनिमयीकरिष्यति। अमेरिका देशस्य विदेश मंत्री मार्को रूबियो अवदत् यत् ट्रंप प्रशासनं भारतं संयुक्त राज्य अमेरिकायाः अत्यंतं निकटतमेषु

0: भारतं दृढं आर्थिक लाभं प्राप्नुवदस्ति सहैव प्रभावशाली वैश्विक शक्तित्वेन समुदेति। रूबियो एतदपि संसूचयत् यत् प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पस्य च सम्बन्धः अतीव घनिष्ठो वर्तते, यः कूटनीति दृष्ट्या अतीव महत्वपूर्णः अस्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य उदघोषयत् यत् देशस्य सहकारी यान आह्वान मञ्चस्य भारत टैक्सी इत्यस्य आगामि वर्ष द्वयाभ्यन्तरे देशस्य नगरेषु क्षेत्रेषु च विस्तारः करिष्यते। भारत टैक्सी इत्यस्य आधिकारिक शुभारम्भावधौ मन्त्री अमित शाहः सबलं प्रावोचत् यत् एषः प्रयासः सहकारिता क्षेत्रे एकः क्रान्तिकारी पदक्षेपो वर्तते। तेन प्रतिपादितं यत् भारत टैक्सी इत्यस्य मुख्योद्देश्यं वर्तते यत् यानचालकाः सारथी इति नाम्ना सम्बोधिताः भविष्यन्ति, सहैव साक्षात् अंशधारिणः च भविष्यन्ति। विश्वस्य कस्यापि अर्थव्यवस्थायाः शक्तिः तस्य एमएसएमई क्षेत्रस्य योगदाने निहिता अस्ति इति उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् न्यगादीत्। अद्य नवदेहल्यां विश्व एमएसएमई 26 दिवसावसरे आयोजितम् एकं कार्यक्रमम् अभिसम्बोधयन् तेन प्रख्यापितं यत् भारते एमएसएमई क्षेत्रं प्रथमतया उद्यमीनां साहसस्य उद्यमशीलताया च प्रतीकं वर्तते। प्रधानमन्त्री संग्राहालय पुस्तकालयेन अद्य पूर्व प्रधानमन्त्रिणः पीवी नरसिंह रावस्य 85th जयन्त्यवसरे तस्य जीवनं न्यासं च अभिलक्ष्य एका प्रदर्शनी समायोजिता। अस्याः प्रदर्शिन्याः उद्घाटनं पीएमएमएल कार्यकारी परिषदः अध्यक्षेण नृपेन्द्र मिश्रेण विहितम्। तदनन्तरं प्रधानमन्त्री संग्रहालये आगन्तुकानां कृते इयं मुक्ता कृता। अस्यां प्रदर्शिन्यां पीवी नरसिंह रावस्य सार्वजनिक जीवनस्य उत्कृष्टायाः यात्रायाः संस्मरणानि, दुर्लभानि च छायाचित्राणि, आधिकारिक प्रपत्राणि, भाषणानि, अभिलेखीय सामग्र्यश्च प्रदर्शिताः सन्ति। अमेरिकायाः कैलिफोर्निया राज्यस्य फुलेटन नगरे प्रवृत्तायां यूएस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगितायां भारतस्य देविका सिहागः रौनक चौहानः च स्वस्व वर्गेषु विजयम् अवाप्य प्रागुपान्त्य चक्रे प्रविष्टवन्तौ। फीफा विश्वकप स्पर्धायां मिस्र देशः ईरान देशेन सह अन्तिमे जी समूहस्य द्वन्द्वे एकमेकम् इति अंकैः समता अवाप्य प्रथमतया फीफा विश्वकप स्पर्धायाः नॉकआउट इति चरणे प्रविष्टः। अस्मिन् द्वन्द्वे ईरान देशस्य रामिन रेजाइन क्रीडायाः नायकत्वेन उद्घोषितः। अधुना राउंड ऑफ 32 चरणे तस्य सम्मुखीकरणं ऑस्ट्रेलिया दलेन सह भविष्यति इति वार्ताः।
1: समाचारों का बुलेटिन संस्कृत में हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम की 6:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के।
2: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय। 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित। कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 95-59-24-42-04 और 78-00-37-22-22।
1: कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं सूरज नारायण लाल और साथियों की आवाज में।

0: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर
1: आकाशवाणी अयोध्या।
2: घर घर जन जन तक दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
3: जग घूमे थारे जैसा ना कोई।
0: यह है आपका अपना एफएम रेडियो चैनल 101.9
1: आकाशवाणी अयोध्या,
0: जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
2: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे राजेंद्र यादव और साथियों की आवाज में किसानी गीत, और अब अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं सरला सिन्हा और सखियों की आवाज में।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना एडिये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
2: और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव की। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 6:45 होने को है। प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी।

0: किसानवाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का
2: पुतला बोल रहे
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं
2: मतलब
1: देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी है? अरे पहले ऐसा नहीं था पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी शुद्धता झलकती थी माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी पहली वाली बात कहाँ
2: पर हम तो सभी डाले हैं
1: सब नहीं आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं पर्चा कम और

0: बाबा जी कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
0: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: पंचो जय हिंद। मीना।
4: हाँ भैया।
3: देखा मन खेती किसानी करता है, मेहनत करता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन धीरे धीरे अगर सही ढंग माने में देखा जाए ना, ये जमीनिया बीमार हो चली जाता है जोन खेती मन करता है ना।
4: बिल्कुल सही कहे भैया, और यही लिए तो अपने सबका यही बतावा जात है ना कि मृदा के परीक्षण करा।
3: हाँ,
4: समय समय
3: देखा माटी के जांच बहुत जरूरी है, जोन पोषक तत्व के कमी राहत बहनी पता लग जाता है, वही हिसाब से मन काम करता है।
4: हाँ भैया, और माटी के जांच के ताई देखा भैया किसान विज्ञान केंद्र पे जाके है ना, अपन जो है माटी खेते के कई जगह से ले, एक जगह से नहीं ले के चाहिए कि पेड़ हो के नीचे से ले ले, तो ऐसा नहीं है, खेत के चारों कोना से ले, बीचे में से ले, और सबके भैया वही कई जगह से लेके पैकेट बना के वही पे नाम लिख के तब परीक्षण के लिए दे।
3: देखा अंग्रेजी के भी जोन होते है, वही हिसाब से खोद के बाकायदे खुरपी या खुरपा से कई जगह जोन माटी कहा बढ़िया पक पक्की जोन बात थैली में बढ़िया लिख के नाम वाम पता प्रयोगशाला ताई भेज सका थे पंच भैया। आज जखा जब जांच करके आई जाए ना, जोन पोषक तत्व के कमी रहे वो पंच भैया जब डली है, देखा थोड़े खाद लागे और नुकसान न होए, पूंजी कम लागे और लाभ ज्यादा मिले।
4: हाँ, पता नहीं लग पावत है ना, अगर परीक्षण अपने सब ना कराओ तो माटी में कौन चीज के कमी है ये हम जान नहीं पाए थे, और जैसे तैसे भाई जोन अपने धर्रा में चला थे, खाद पानी दिया करी थे।
3: हाँ, यही लिए देखा वैज्ञानिक भैया जोन होते उनके मुताबिक काम करे चाहिए। देखो एक जानकारी लेके आवा है, मृदा एवं बीज जनित रोग कारण लक्षण और बचाव विषय पे एक जानकारी देता है विशेषज्ञ डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद चौधरी।
4: हाँ।
3: यानी कि अशोक कुमार द्विवेदी भैया जो बतियान है, चलो इन्हीं से जाना बूझा जाए और इनके अमल में लावा जाए।
4: बिल्कुल
5: पंचो जैसन, अभी आप सुनो, आज हमारे बीचे में है डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद चौधरी जी। आप पादप रोग विज्ञान प्रसार निदेशालय आचार्य नरेंद्र कृष्ण प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से हैं। आज के हमारे जो बतकही आपसे हुए आपके बारे मृदा एवं बीज जनित रोग कारण लक्षण एवं बचाव। डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद चौधरी जी, आपके स्वागत है हमारे किसान मणि कार्यक्रम में। आपसे हम भी जानना चाहब, चूंकि मृदा एवं बीज जनित अब दोनों ही संयुक्त है, जबकि अगर हम व्यवहार में देखी तो मृदा के अलग असर पड़त है और जो बीज जनित रोग है वह के अलग प्रभाव पड़त है।
6: जी, जी, जी,
5: तो इन दोनों का आप इकट्ठा कैसे देखा, तो हमें का सम्मिलित करो थो आप?
6: जो मृदा जनित रोग होते हैं वो अलग होते हैं, और जो है बीज जनित रोग जमाव के बाद होते हैं, मतलब आप डायरेक्ट बोते हैं उसमें जो रोग लगता है उसका अलग है, और जो बीज बोने के बाद उसके वजह से जो है फसल नुकसान होती है, जिसमें उसमें क्या होता है कि सड़न रोग और गलन रोग जो होता है वो मृदा के द्वारा होता है।
5: मतलब आपके कहे के ही है कि अगर हम मृदा परीक्षण करा लीन करी और साथ साथ जैसे बीज के होते है वही का उपचारित करी थे, माटी का उपचारित करी थे, अगर वही का कई ली तो काफी कुछ हमें यहाँ से लाभ मिल सकते
6: हैं। बहुत बहुत उसमें होता है, मृदा को अगर जो है शोधित कर लें, बुआई के पहले भूमि शोधन भी कर लें उसका अलग असर है, और उसके बाद बीज को बिना शोधित किए नहीं बोना चाहिए, जिससे इस समय जो है धान का सीजन है, आपको जो है धान की रोपाई करना है तो उसके पहले आपको बेरन गिराना है, बेरन गिराने के लिए आपको बीज शोधन करना बहुत जरूरी है। बीज शोधन करने में बहुत ज्यादा पैसे का नुकसान नहीं होता, जबकि बीमारी आने पे आपको जो है ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि जो बीज शोधन में 1 ग्राम जहां दवा लगेगी वहीं आपको स्प्रे करने में जो बीमारी आ जाएगी तो उसमें 1 केजी लगेगा। 1 ग्राम का आप पैसे का हिसाब जोड़ लीजिए और 1 केजी का हिसाब जोड़ लीजिए, उसके बाद बीज शोधन में आपको अपने साधन से अपने हाथ से कर लेना है। खेत में अगर स्प्रे कराएंगे तो लेबर लगाएंगे, सामान इकट्ठा करेंगे, समय आपको इंतजार करना पड़ेगा, तब तक फसल आपकी नुकसान कर सकती
5: है। मतलब कहे के आपके ये है कि आर्थिक रूप से बचत है
6: जी,
5: समय के बचत है, क्योंकि दूसरे के ऊपर हमें आश्रित नहीं रहा है
6: जी,
5: अगर एडंग से हम कह ली तो। लेकिन अब जरा सा हम आपका फिर पीछे मोड़
6: जी, मृदा
5: जो मृदा बीज जनित रोग वाली बात है
6: जी,
5: तो माटू से क्यों रोग होगा तो पता ही सड़न हो जाते हैं, जो बिया हो तो सड़ जाते हैं, तो कारण का है आखिर, दोनों के मिला जुला असर है या अलग अलग है?
6: नहीं नहीं, दोनों का अलग अलग है। इसमें मृदा का अलग ये है कि इसमें जो बीमारी होती है कालर राट एक बीमारी होती है, वो दलहनी फसलों में जब मैक्सिमम लगता है, उसमें क्या होता है पौधा जो है निकलेगा और उसके बाद जो है जड़ के ऊपर जो तना होता है उसमें जो है आपके कालर जो आप शर्ट बनते हैं जिस लगता है ना कि उसी तरह से वो गोल बना करके उसमें आपका सिम्टम दिखाई देगा, लक्षण दिखाई देगा। अगर वो कालर राट लग गया तो इसका मतलब

0: प्राण रोग शुरू हो गया है। दूसरा होता है चारकोल राट।
1: जो आप बताएं कि कलर जो होते ढंग से जानो रोग शुरू हो गया
0: जी,
1: ये कलर कहे लग जाते कारण हम जाना चाहिए।
0: वही फफूंद से लगता है।
1: जो हमारे पंच भैया हैं वे जब या के उपचार करें
0: जी,
1: तो फफूंद जो होते है वो के रोधी से उपचार कर ले,
0: फफूंद नाशी से करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए जो है सॉइल बार्न के लिए मतलब भूम जनित के लिए उसका तरीका थोड़ा सा अलग है, क्योंकि बीज तो शोधित करके लगाएंगे, लेकिन अगर भूम में भी पड़ा है तो अगर जो है जीन डैमेज हो गया तो फिर वो रोग लग सकता है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप गर्मी की जुताई बहुत जरूरी है, नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाएगी तो जिसमें जो है जीवाणु और फफूंद लगे उसका अंडाशय जितना भी रहेगा ये सूर्य की रोशनी से वो मर जाएंगे।
1: अच्छा, जो फफूंद बताया वही फफूंदवा कहे लग जाते
0: हैं। फफूंद का ये कारण है कि जो है नमी जहाँ रहेगी वहीं ये पलते हैं, और जो है ये क्रॉप वाइज बीमारी लगाते हैं।
1: अलग अलग फफूंद होते हैं।
0: हाँ, अलग अलग होते हैं। जैसे हम बताए ना कि ये कालर राट जो होता कारण ये है कि जो है वो भूमि में पड़े रहते हैं, और जब तक इनका निवारण नहीं होगा तो फिर अगले बार भी लगाएंगे तो वो जो है फिर डैमेज करेगा और फसल का नुकसान कर देता है।
1: ये मृदा जनित फफूंद है।
0: फफूंद है मृदा जनित। अब बीज जनित में जो है वो सड़न रोग बैक्टीरिया से करेगा, इसे जो है इसमें फफूंद इसमें से नहीं लगेगा,
1: फफूंद का असर ना रहेगा। लेकिन जब वो माटी वाला फफूंद जब असर करे तो जो बिया है फिर दोनों के आपस में रिएक्शन हो जाए।
0: अच्छा, इसीलिए बीज शोधन भी करना पड़ेगा, बुआई के पहले बीज शोधन करना पड़ेगा।
1: मृदा के कौन चीज से करे, बीज कौन चीज से करे,
0: इसके लिए तो जो है सबसे बढ़िया इस समय जो आया है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा तीन तरह के होते हैं जिसमें आपको केवल एक लेना ट्राइकोडर्मा वीडी। इसको जो है जुताई के आखिरी समय पे उसको जो है 12 किलो प्रति हेक्टेयर पाउडर के फार्म में आता है। अगर ओरिजिनल लेंगे तो 1 किलो आपको जो है ट्राइकोडर्मा लेना पड़ेगा, और उसको जो है 25 किलो खाद में कंपोस्ट वाली खाद में मिला के अगर आखिरी जुताई के समय लगा के पाटा लगा दें तो ये सड़न रोग और गलन रोग की बीमारी आपके खेत में कम से कम 4 साल तक तो नहीं आएगी।
1: मतलब ये जो मृदा और बीज जनित फफूंद के कारण है ऐसे छुट्टी
0: मिल जाए।
1: अच्छा, दूसरा का कारण हो सकता है ये मृदा और बीज जनित रोग का,
0: उकठा रोग। जैसे अरहर के खेत में या दलहनी की फसल में उकठा रोग रख देता है। फ्यूजेरियम एक होता है फफूंद, उसके वजह से होता है। ये क्या करता है कि जब पौधे के जड़ में जो जाइलम फ्लोएम होता है उसके जो वहाँ से जो खाना ऊपर जाता है उसको ब्लॉक कर देता है,
1: तो वो भी ट्राइकोडर्मा हमारा काम
0: है, उसमें भी काम करेगा।
1: अच्छा, तो और कौन कारण है जो मृदा और बीज जनित रोग पैदा कर सकते, कारण बन सकते हो?
0: डैम्पिंग आप होता है। एक डैम्पिंग आप ये होता है कि पौधा जमेगा तो लेकिन तुरंत जो है सुबह आप देखेंगे उलट गया, मर के उलट के मतलब नीचे गिर गया
1: जी,
0: डैम्पिंग आप होता है
1: जी।
0: तो ये भी फफूंद से होता है, ये राइजोक्टोनिया एक जो फफूंद होता है उसके वजह से होता है।
1: अच्छा, तो कई जो फफूंद जो ना बताओ थे धान में ना लगी, जो हमारे पंच भैया खरीफ की फसल करता है घूम लग सकता
0: था जी, जी सब्जी में भी खरीफ फल में लगेगा
1: तो यही फफूंद है।
0: नहीं नहीं वही फफूंद है, राइजोक्टोनिया ही लगेगा।
1: और कौन कारण हो सकता है जो आप बताएंगे फफूंद है?
0: हाँ, फफूंद है। उसके बाद जो है बता रहे ना कि सॉइल सोलराइजेशन मतलब गर्मी की जुताई बहुत जरूरी है, जो क्योंकि उससे क्या होता है
1: हल से
0: मल्टीपल वाले हल से आपको करना पड़ेगा। और उसके बाद जो है फील्ड क्या कहते हैं ड्रेनेज मतलब जो है जल निकास आपको बहुत जरूरी है किसान भाइयों। जल निकास जो है नहीं होगा तो पानी पड़ा रहेगा तो फफूंद जो है फिर जो है पैदा हो जाएगा और फिर फसल को नुकसान।
1: मतलब एक कारण ही होगा कि गर्मी जुताई नहीं करी, दूसरा कारण होगा पानी जल निकास व्यवस्था न करब, या फिर अगर शोधन करब तो ही हमारा रोग हो सकता है।
0: उसके बाद एक और कारण है
1: जी,
0: इसमें ये क्या होता है कि जो फसल काटने के बाद दूसरी फसल ले रहे हैं तो गेहूं को अगर नीचे से नहीं काटेंगे तो उसका जो है जड़ होता है जो हार्वेस्ट करने के बाद फील्ड में जो पड़ी रहती है उसके वजह से भी जो है बीमारी फिर आ जाएगी।
1: तो कोई दिक्कत वैसे नहीं ना?
0: उससे कोई दिक्कत नहीं, मतलब उसको एकदम नीचे से काटना है
1: जी, मतलब भूमि के ऊपर से वो ठूठा ना रह जाए
0: जी, जी उसको डिकम्पोज कर देना है, मतलब उससे खाद भी हो जाएगी।
1: जैसे आप बताएं कि गिर जात है
0: हाँ।
1: तो क्या कोनो ऐसनो है कि अगर मृदा जो बीज जनित रोग है तो 10-5 दिन के बाद या जब हमारे फसल कुछ पक्के तैयार हो जाए तब क्या असर दिखाई
0: पड़े? नहीं, जो अगर भूम जनित रोग है वो तो जल्दी से दिखाई देगा
1: जी,
0: केवल जो है थोड़ा सा लेट करेगा विल्ट वाले में, जो कठा रोग हो उसमें थोड़ा टाइम लगाता है, क्योंकि अगर उसको एनवायरमेंट नहीं मिलेगा तो नहीं करेगा।
1: संक्षेप में हम ही बताऊं क्या के लक्षण का होते जो आप बताए कि बीज जनित रोग हो जाते मृदा जनित रोग हो जाते?
0: मतलब देखिए बीज जनित रोग जो होता है वो बीज में पड़ा रहता है, वो जो है आपको दिखाई नहीं देगा। तो बीज शोधन करने के लिए मैं आपको बता दूं कि 2 ग्राम थीरम और 1 ग्राम कर्बेंडाजीन, इसको दोनों दवाओं को मिला के ये दोनों दवाएं हो गई 3 ग्राम, 1 किलो बीज के लिए 3 ग्राम दवा बहुत सफिशियंट है, उसको आप भी शोधन कर लें। अगर केवल दलहनी करना है तो 1 ग्राम कार्बेंडाजिम से भी शोधन कर लें। अब बीज शोधन हमेशा छाए में करें, कभी मतलब उसको सनलाइट न लगे बीज को, ताकि जो है वो नुकसान

0: करें।
1: कैसे जाने की अब लक्षण हम मृदा जनित तो बीज जनित रोग हमारा आय हुआ है, हम शोधन नहीं करने के परिणाम है, तो लक्षण का संक्षेप कुछ ऐसा दो चार टिप्स हम प्रसंग बताऊं।
0: मृदा जनित में क्या होगा कि जो है बीज बेरन लगाए हैं और उसके बाद जो है बेरन में ही मेन नुकसान करता है, क्योंकि जो है उसी में जो है आप थोड़े एरिया में लगाते हैं उसको बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन बीज भूमि शोधन नहीं करते हैं तो क्या होता है कि नमी के कारण जो है बेरन मतलब जो है आपका नुकसान कर जाता है,
1: तुरंत दिखाई
0: पड़ता है, तुरंत हो जाता है।
1: जो बीज जनित वाला है
0: थोड़ा टाइम लगाएगा
1: तो कब हमें यह लक्षण है कुछ और लक्षण है, जैसे गुणवत्ता हमारा है, अनाज खराब जाए कुछ और हो जाए ऐसा कुछ है।
0: देखिए जो उकठा रोग है उसमें तो आपकी फसलें पूरी चली जाएगी, उसमें तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं
1: जी।
0: लेकिन अगर जो है राटिंग और सड़न रोग शुरू हो रहा है तो उसमें आप जो है कोई भी रोग एक बैग सब पूरे फसल को नहीं मारेगा, तो आप उसमें क्या करें कि 1 ग्राम दवा को 1 लीटर पानी में घोल के उसमें जो है आप रूट के पास जो है उसको स्प्रे कर दें ताकि वो जो बचा है वो बच जाएगा।
1: मतलब डॉक्टर भैया संपर्क के पहले दिखा लिए कौन है कैसे कौन दवाई लगे के तो अपने मन से ना करें
0: क्योंकि किसान भाइयों हर जगह हर जिले में केबीके भी है, आपकी कृषि विज्ञान केंद्र पे भी जा सकते हैं, अगर विश्वविद्यालय यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है वहाँ नहीं जा पाते हैं तो आप यही मसौदा में कृषि विज्ञान केंद्र वहाँ पे जाके पादप रोग वैज्ञानिक से आप संपर्क करके
1: चलत के हमारे पंचन की बताओ की जो बचाव के जरिया है उगा है संक्षेप में, जैसे अभी बताएं कि अब अगर गर्मी जुताई कर दे तो सुरक्षा मिल जाएगी, माटी के अगर शोधन कर लें बिया शोधन कर लें तो हमें छुट्टी मिल जाएगी। देख रहे अलावा उनको हमारे पंच भैया करें,
0: आप जो है दलहनी फसल लेते हैं तो आप उसको लाइन से लगाएं, लाइन से लगाएंगे दिखाई दे जाएगा कि जो है आपका सड़न रोग लग रहा है कि गलन रोग लग रहा है या उकठा रोग लग रहा है, तो उसमें अगर मेड़ पे है कार्बेंडाजिम तो 1 से 1.5 ग्राम दवा कर लीजिए और उसको बाद जो है स्प्रे करके उसी लाइन में करेंगे तो उससे आपकी दवाई काफी सुविधा रहेगी और फसल आपको दिखाई भी दे रहा है कि कहाँ कहाँ थोड़ा ज्यादा करना है ज्यादा कहाँ कम करना है, तो किसान भाइयों कैसे जो है बहुत ज्यादा फसल सुरक्षा का हो जाएगा।
1: कुल मिलाए की है कि गर्मी जुताई करें
0: बहुत जरूरी है,
1: जल निकासी को उत्तम प्रबंध करें, माटी के शोधन करें, बिया के शोधन करें और उपचारित करें,
0: दोनों का करना पड़ेगा, दोनों को बीज शोधन और भूमि शोधन दोनों करें ताकि आपका जो है फसल अच्छी मिल सके, पैदावार किसानों को अच्छी मिल सके।
1: तो डॉक्टर बीरेन प्रसाद चौधरी जी आप पादप रोग विज्ञान विभाग से हमारे पंचन का इतनी अच्छी जानकारी दी हो, आकाशवाणी परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हरी भैया
3: हाँ मीना भाई
2: बढ़िया जानकारी रही, मृदा एवं बीज जनित रोग कारण लक्षण एवं बचाव ये विषय पे देखा जानकारी देते रहे डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद चौधरी जी और इनसे अपने अशोक कुमार द्विवेदी भैया बतवान रहे।
3: लेकिन पंच भैया से हम एक चीज और कह चाहत है, जैसे अपने सबके इलाज कीन जात है कि जैसे के बीमार भय जानवर भय या क्यों भय वही हिसाब से अगर माटी बीमार है कौन प्रकार का दिक्कत है माटी के जांच पंच भैया जरूर कराए, कहे से कि सगर निदान वही से है समस्या के हल हो जाए।
2: बिल्कुल भैया, और देखा माटी के जांच के बात आवत है कि आज के समय जो है ना सिंचाई और डिजिटल खेती की ओर है, है ना, अपने सब देखा धीरे धीरे खेती बाड़ी में तरक्की की जात है, तो आज ऐसे एक जानकारी भी लेके आई है सिंचाई और डिजिटल खेती ये विषय पे जानकारी देते हैं श्री अरविंद कुमार सिंह और इनसे अपने देखा
3: राम प्रकाश पांडे भैया बतियात है हाँ। लेकिन वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक है वह ध्वनांकन पर आधारित है।
2: बिल्कुल भैया,
3: पंच भैया सुने
2: चलो
4: पंच देखा अपने सभी तमाम खेती बाड़ी तो करवे करी खेती बाड़ी में सरकार के अपने केंद्र सरकार के बात करी तो 12 साल होगा, यह 12 साल में कृषि के काका विकास भवाए और उद्यान विभागों में कौन भूमिका निभावता है यह बताते हैं। आज हम यहाँ उपस्थित ही मेरे बीचे में है, अपन नाव पता बताए।
5: मैं अरविंद कुमार सिंह जिला उद्यान निरीक्षक अयोध्या, हमारे उद्यान विभाग की तरफ से उद्यान विभाग जो है जनपद के कृषकों को फल फूल सागभाजी के विकास की योजनाओं की तकनीकी जानकारी और उनको अनुदान दिया प्रदान किया जाता है
4: जी।
5: जो अनुदान दिया जा रहा है उस अनुदान में 40% योगदान केंद्र सरकार का होता है, 60% का योगदान हमारी राज्य सरकार की दे रही है और जो महत्वपूर्ण योजना है हमारे पास एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना है जो केंद्र प्रायोजित योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत है ये भी जो है केंद्र प्रायोजित योजना है,
4: बहुत सही कहनी,
5: राष्ट्रीय औषधीय पौध विकास मिशन योजना है जिसमें औषधीय फसलों के बढ़ावा देने के लिए हमारे यहाँ चलती है और इन फसलों के जो प्रोडक्ट हैं इनको संरक्षित करने के लिए एक प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्यम उन्नयन योजना है इकाई की जो एक व्यवसायियों के लिए योजना है मूल रूप से
4: जी,
5: जो व्यवसाय करना चाहते हैं या हमारे छोटे किसान जो अपना जो है फसल के जो उसे बढ़ाना चाहते हैं, वैल्यू एडेड करना चाहते हैं कि जैसे अगर आप कोई फसल बेच रहे हैं और अगर कोई उत्पाद उसका बेच रहे हैं तो ज्यादा लाभ ले सकते हैं।
4: बिल्कुल, जैसे अपने सभी दूध बेची थी तो हमें कम, लेकिन अगर खोआ बेचे थे, दही बना के बेचे थे, वैल्यू एडिशन हो जाता है, मूल्य संवर्धन।

0: एक बात हम जानना चाहते कि जेका ई सब लिखा का पहले कौन रजिस्ट्रेशन करावे पड़े या का करे पड़े।
1: जिन भी किसानों को विभाग की योजना लेना हो, खास करके एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत या प्रधानमंत्री औद्यानिक विकास मिशन योजना अंतर्गत या अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए औद्यानिक विकास योजनाओं के अंतर्गत विभाग का एक पोर्टल है
0: जी,
1: उस पोर्टल पे आप जाके रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। उसमें है www.one.uphorticulture.com
0: जी,
1: ये हमारा विभाग का पोर्टल है, इस पे आप जाइए, एक बार आप रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, आपके रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर मिल जाएगा, फिर उसी रजिस्ट्रेशन से आप जो भी विभाग की योजना है आपको लेना है आप उससे उसका लाभ ले सकते हैं।
0: या कोनो दिक्कत होती है वहाँ तो आप भी आ सकते हैं,
1: हमारे कार्यालय में भी आ सकते हैं,
0: एकदम गुप्तार घाट के बगल है,
1: गुप्तार घाट पे 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पे स्थित है और नदी के किनारे है, बहुत अच्छा है हमारे यहाँ।

0: ये उसमें है www.1.uphorticulture.com
1: जी,
0: ये हमारा विभाग का पोर्टल है, इस पर आप जाइए, एक बार आप रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, आपके रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर मिल जाएगा, फिर उसी रजिस्ट्रेशन से आप जो भी विभाग की योजना है आपको लेना है आप उससे उसका लाभ ले सकते हैं।
1: या कोनो दिक्कत होती है वहाँ तो आप आ सकते हैं,
0: हमारे कार्यालय में भी आ सकते हैं,
1: एकदम गुप्तार घाट के बगल है,
0: गुप्तार घाट पे 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पे स्थित है और नदी के किनारे है, बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ गार्डन वगैरह भी है, आप घूमिए। और
1: दूसरी चीज, कौन कौन डॉक्यूमेंट लेके आवा
0: हमारे किसान भाइयों को जो भी आपको लेना है खेतौनी, आधार कार्ड, बैंक डिटेल, मोबाइल नंबर और फोटो, ये 4-5 डॉक्यूमेंट आपको लेके रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सबका स्कैन आपको जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है हमारा उसमें लग जाएगा, एक बार आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे फिर आपकी आईडी पासवर्ड आपके पास इशू हो जाएगा, तो आप उससे विभाग की किसी योजना को आप लाभ लेना चाहते हैं तो वहीं से रजिस्ट्रेशन कर देंगे और उस रजिस्ट्रेशन का फॉर्म और अपनी खेतौनी आधार, मतलब जो जो आप रजिस्ट्रेशन में लगाएं उसका एक मूल रूप में आवेदन आप कार्यालय को उपलब्ध करा देंगे और योजनाओं का लाभ पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पे है। ऑनलाइन आपने किया है तो हम लोग जैसे ही टारगेट आता है ऊपर से हम उसकी छटनी करते हैं। कुछ किसान ऐसे हैं जो रजिस्ट्रेशन भी करा लेते हैं, उनको उस योजना का नहीं लगाना है या किन्हीं कारणों बस नहीं लगा पाए तो उनके नीचे वाले किसानों को हम लाभान्वित कर देते हैं।
1: बिल्कुल
0: ऐसे ही सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना चल रही है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसका एक उप घटक है पर ड्राप मोर क्राप माइक्रो इरीगेशन, ये हमारे औद्यानिक कृषकों के लिए और उसके साथ साथ जो हमारे कृषि और भी हैं अनाज की फसलें कर रहे हैं, गन्ना की फसलें कर रहे हैं, इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है
1: जी।
0: इस योजना से जो है आप इकाई लागत एक तो हमारी कम से कम 30% कट जाती है और हमारा उत्पादन भी 30-40% बढ़ जाता है। एक हमारी जो कृषि में सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे पास लाभ नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जब आप इस योजना को इस योजना के तहत कार्य करते हैं या इस योजना को अपना कर इसकी सिंचाई की पद्धतियों को अपना कर हम कार्य करते हैं तो हमारी लागत भी घटती है और हमारा उत्पादन भी बड़ा होता है।
1: सबसे बड़ी चीज पानी बचत है
0: और पानी बचत होता है और पानी बचत तो होता ही है, इसके साथ साथ जो आपकी फसल तैयार होती है खास करके अगर आप औद्यानिक फसलों की बात करिए
1: जी
0: तो एकदम स्वच्छ और एकदम सुडौल एकदम चमकती हुई आपको निकलेंगी, उसमें कहीं दाग धब्बा आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी फसल है अगर वो जमीन से टच हो रही है ज्यादा नमी है तो वो क्षतिग्रस्त हो जाती है।
1: बिल्कुल
0: इसमें एकदम साफ रहेगी, बाजार में इसका अच्छा मूल्य आपको मिलेगा और अगर आप ड्रिप इरीगेशन सिस्टम से या मिनी स्प्रिंकलर रेनगन पोर्टेबल मतलब जिसका भी आप उपयोग करना चाहते हैं तो ये लाभ आपको इसमें गवर्नमेंट जो है आपको 90% सब्सिडी दे रही है।
1: वाह, परे सरकार के जो 12 साल का है कि नहीं 12 साल का ये उपलब्धि है
0: 90% की सब्सिडी दे रही है, जो किसान हमारे 2 हेक्टेयर से ऊपर के मतलब बड़े किसान हैं उनको 80% की सब्सिडी ड्रिप स्प्रिंकलर ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर पर दे रही है।
1: बहुत बढ़िया, बता दी जो पंचवैया आपका सुनता
0: है लेना चाहे वो हमारे कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या हमारे विभाग की वेबसाइट से आप संपर्क करके ले सकते हैं।
1: बस रजिस्ट्रेशन करावे, पहले आओ पहले पाओ, आपका नाम एक बार पता फिर से बताओ।
0: अरविंद कुमार सिंह, जिला उद्यान निरीक्षक, अयोध्या।
1: बिल्कुल पंचवैया भाई सुनबे कि चेकई योजना का लाभ लिए का है, सभी फार्मर रजिस्ट्री कराया है, जैसे अपने आप ऑनलाइन करेंगे सब पता लगे के का कितना चाहिए और के का कितने का आवश्यकता है। बताए नहीं सब्सिडी खूब बढ़िया है, 90% है, 80% है, पंचवैया का सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराए के अपने केंद्र सरकार के योजना का लाभ लिए का है। कैसे 12 साल में किसान खूब आगे जाता है, अपन लागत घटा का है और अपन इनकम बढ़ावे का है।
2: मीना।
3: हाँ भैया।
2: देखो जानकारी भेंटवार्ता सिंचाई और डिजिटल खेती एक जानकारी देते रहे श्री अरविंद कुमार सिंह भैया, वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक अयोध्या से रहे, इनसे बातचीत कर रहे राम प्रकाश पांडे, वह ध्वनांकन पर आधारित रहा।
3: बिल्कुल भैया, आप देखो बताओ वकीन की आपने सब रजिस्ट्रेशन करा के सरकारी योजना के लाभ ले सकते हैं,
2: लेकिन जहाँ तक लाभ वाली बात है लाभ लेत लेत मनई जौन बाटे वही गुनगुनाए लागत है कि जौन में मनोरंजन के बार भागे लागत है।
3: बिल्कुल भैया, देखा गीत गुने बीच में हो जाते है ना तो अपन जेरा फिर से काम काज में लाग जाते है। तो देखा एक सहदेव प्रसाद मिश्र उनके साथी के स्वर में सहगान लेके आए हैं
2: तो चलो सुना जाए फिर।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा

0: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
1: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
0: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: मीना,
3: हाँ भैया,
2: देखा अयोध्या मंडी से जोन बाजार भाव का हाल मिला है, तनी हाँ, बतावत चला।
3: बिल्कुल भैया, आप देखा काहे कि अपन पंचे अगोरत हुई है ना, बाजार भाव मौसम के जानकारी के ताई। तो चावल कामन है 3100 रुपया प्रति कुंटल, गेहूं दड़ा 2550 रुपया प्रति कुंटल, मक्का पीली 2350 रुपया, उरद काली 2350 रुपया। और मक्का पीली 2350 रुपया भैया, उरद काली जो है ना वो 9350 रुपया प्रति कुंटल।
2: मैंने देखा चना देसिया जो है 6470, मसूर 7220, अरहर दाल यानी की 11000 रुपया प्रति कुंटल, आलू सफेदगी जो है 865 रुपया, प्याज ललकी 1460 रुपया प्रति कुंतल के हिसाब से है बहनी।
3: बिल्कुल भैया, और देखा टमाटर के भाव रहा है 2850 रुपया, लहसुन 7220 रुपया, तरोई के भाव रहा है 1450 रुपया प्रति कुंतल, खीरा 1890 रुपया, बैगन 2000, शिमला मिर्च 3900 रुपया और पका केला 2900 रुपया।
2: नींबू जोन है यानी कि 5000 रुपया प्रति कुंतल, पपीता 2800 रुपया, सेव यानी कि 12260 रुपया कुंतल, गुड़बट्टी यानी कि 5230, चीनी 4125 रुपया प्रति कुंतल के हिसाब से। लगे हाथ मौसम की जानकारी दे चला।
3: बिल्कुल भैया, देखा अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस जोन की सामान्य से 3.4 अधिक रहा, न्यूनतम तापमान है 26 डिग्री सेल्सियस जोन की -0.6 रहा, आर्द्रता अधिकतम 84% और न्यूनतम 60%।
2: देखा हवा के गति 2.8 किलोमीटर प्रति घंटा, दिशा दक्षिणी पूर्वी, और देखा पूर्वानुमान यह आया है 24 घंटा में पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्के से मध्यम बादल छाए रहे बहनी, और साथ ही साथ कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हल्की वर्षा होने की संभावना है
3: भैया, और औसत तापमान जो है ना उस सामान्य से अधिक रहे के भी संभावना है। और यखा देखत भाई मौसम विभाग जो है यही जानकारी देते है ना कि लू जैसी जो स्थिति है ना भैया, वो अब ही भी बनी रहे के संभावना है।
2: मतलब वही सतर्क रहे के जरूरत है।
3: हाँ भैया,
2: लेकिन देखा जो बटे घड़ी एक ऐसा चीज है, समय समय पर देखा आवाज जोन बटे ये कहता है कि अब चले के वक्त भैला है।
3: हाँ,
2: फिर कबो नई नई जानकारी गीत गौनई के साथ मिला जाए, तब तक के खातिर हरी भैया
3: और मीना का कार्यक्रम से दे अनुमति। जय हिंद।
4: किसानवाड़ी कार्यक्रम के प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। पहले आज की शेष कार्यक्रम फिल्मी गीतों का कार्यक्रम एक ही कलाकार से हम सुनवाएंगे 8:15 से। गजलों का कार्यक्रम महफिल ए गजल आप सुनेंगे 9:15 से। और सजीव फोनी कार्यक्रम हेलो अयोध्या का प्रसारण किया जाएगा 9:30 से 10:30 तक। पॉडकास्ट श्रृंखला हम आपको सुनवाएंगे 7:30 से। और अब कल के कार्यक्रम विवरण। कल प्रातः 7:15 से बताया जाएगा दिन भर के कार्यक्रमों का विवरण। भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश सुनवाया जाएगा 7:30 से। सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम आप सुन सकेंगे प्रातः 8:15 से। कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या में प्रातः 8:30 से सुना जा सकता है आज की बात। विषय होगा बड़ों के अनुभवों का लाभ उठाएं। साथ ही सुनेंगे फिल्म एंड म्यूजिक मेलोडी और समाचार पत्रों से। व्हाट्सएप आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत आपके संदेश आपके गीत सुनवाया जाएगा 9:00 से। बातें आसपास की आप सुनेंगे 9:30 से। विषय होगा जैन मंदिर रायगंज अयोध्या।

कल 11 बजे सुनवाया जाएगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनता से मन की बात। इसके बाद इसे संस्कृत में सुनवाया जाएगा। लोकरंग कार्यक्रम सुनवाया जाएगा 12:30 से और सजीव वाणी कार्यक्रम हेलो अयोध्या का प्रसारण किया जाएगा 1 बजे से। फेसबुक आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत कुछ तुमने कहा हम सुनवाएंगे कल 1:30 से और गीतांजलि कार्यक्रम सुनाया जाएगा 2 बजे से। कल 2:30 से बाल जगत कार्यक्रम में हम सुनवाएंगे चर्चा, विषय होगा हम हैं जूनियर नागरिक और बड़ों का सम्मान बनाए महान। संज्ञा द्विवेदी की भेंट वार्ता सुनवाई जाएगी, विषय होगा बच्चों के मानसिक विकास में पारंपरिक खेलों का महत्व। रोचक जानकारी में पर्वतीय दर्रा जोजिला, प्रेरक व्यक्तित्व में छत्रपति साहू जी महाराज और पाल गीत। कल शाम 5 बजे कार्यक्रम युवाड़ी में सुना जा सकता है चर्चा, विषय होगा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। ज्ञान विज्ञान में जीन थेरेपी संस्था में अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस और गीत संगीत। लोक संगीत 5:35 से शाम सुहानी 6:10 से और सुनवाया जाएगा। कल शाम 6:30 से अनुप्रसारित किया जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच लंदन में खेले जाने वाले ICC महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप 2026 का आंखों देखा हाल। तो श्रोताओं ये थे कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण और अब आपको लिए चलते हैं अपने लखनऊ केंद्र, सुनते हैं प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गौतमबुद्ध नगर में दो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की रखी आधारशिला। 2478 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं की दी सौगात। मुख्यमंत्री एमएसएमई दिवस पर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो में सम्मिलित हुए, कहा विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में एमएसएमई उद्यमों की होगी महत्वपूर्ण भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दो दिवसीय दौरे पर पहुंची अयोध्या। नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्रों का किया उद्घाटन। अवध विश्वविद्यालय में शैक्षणिक कार्यों की समीक्षा की। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मुक्ता शर्मा। समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गौतमबुद्ध नगर में 2478 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने सेक्टर 96 में बने नोएडा प्राधिकरण के नए मुख्य प्रशासनिक भवन का उद्घाटन भी किया। इसके साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में

0: दो बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की आधारशिला भी रखी। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ केन्द्रीय रेल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और केन्द्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव भी मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में आज प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण का प्रमुख हब बन रहा है। ये निवेश रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई गति प्रदान करेगा।
1: सेमी कंडक्टर यानी यह आज की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और उस ताकत का केंद्र बिंदु या क्षेत्र बने और आज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के नए हब के रूप में इस क्षेत्र को स्थापित करने के लिए जो चीज दुनिया से हम आयात करते हैं वह हमारे यहाँ बने।
0: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीसीबी सर्किट के बारे में विस्तार से समझाते हुए कहा कि पहले इसे भारत आयात करता था, अब इसे जेवर में ही बनाया जाएगा।
2: उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी जी जिन्होंने एक ऐसा विजन दिया कि प्रधानमंत्री जी के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को आज उत्तर प्रदेश में जेवर में ले आए, तो अब सेमीकंडक्टर के बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा सेंटर जेवर बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का जिक्र करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि दिल्ली से लखनऊ, वाराणसी, पटना और सिलीगुड़ी तक बुलेट ट्रेन चलेगी। लखनऊ से जेवर तक का सफर 1 घंटा 40 मिनट में पूरा हो जाएगा। कार्यक्रम में अपने संबोधन में भूपेन्द्र यादव ने कहा कि प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योग की इकाइयां लगने से बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होंगे। एमएसएमई दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों और उद्यमियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश का एमएसएमई सेक्टर आज देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनकर उभर रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री आज नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ग्रेट ट्रेड शो के चौथे संस्करण के कर्टन रेजर सेरेमनी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 96 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयां कार्य कर रही हैं, जिसमें 3 करोड़ से अधिक लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की संकल्पना तभी साकार होगी जब हमारी मैन्युफैक्चरिंग इकाई मजबूत होगी।
3: कोई भी बड़ा उद्योग का आधार बनता है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम। बड़ा उद्यम तभी सफल हो सकता है जब हमारे पास आधार होगी, उसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। विकसित भारत की संकल्पना तब पूरी होगी जब खुशहाल किसान भी होगा, लेकिन उतनी ही तेजी के साथ हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भी दें और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अपनी मैन्युफैक्चरिंग पावर को भी उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकें।
0: कार्यक्रम को प्रदेश औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी संबोधित किए कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मूल्यों आदर्शों की राजनीति अपनाकर शून्य से शिखर तक की यात्रा की है। सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भाजपा की यात्रा सत्ता प्राप्त की यात्रा नहीं है, बल्कि सुरक्षा, सुशासन, समृद्धि और समन्वय की बेहतरीन यात्रा है। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा आज सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास का प्रतीक बनी है।
4: पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने स्वतंत्र भारत में सरकारों को इस बात के लिए आह्वान किया कि हमारी आर्थिक उन्नयन का जो आधार है और आर्थिक नीतियां उनके हित को ध्यान में रखकर के बनाई जानी चाहिए जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है। इस पूरे अभियान को भारतीय जनता पार्टी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूल्यों और आदर्शों के साथ जोड़ते हुए इस प्रशिक्षण के माध्यम से एक एक कार्यकर्ता के मन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूल्य, आदर्श, संस्कार समाहित हो सके, इसको ध्यान में रख करके इस प्रशिक्षण महाअभियान को पूरे देश के अंदर प्रारंभ किया।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। और अब शेष समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और

0: न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज दो दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंची। राज्यपाल ने राज्य स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अंतर्गत अयोध्या धाम क्षेत्र में ब्रह्मकुंड गुरुद्वारे के निकट नवनिर्मित दो आंगनबाड़ी केंद्रों और स्मार्ट क्लास रूम का उद्घाटन किया। राज्यपाल ने इस दौरान बच्चों के साथ संवाद भी किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि बच्चों के समुचित शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए प्रारंभिक अवस्था में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संतुलित पोषण अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बच्चे की प्रथम शिक्षिका उसकी माँ होती है, उसके बाद आंगनबाड़ी केंद्र व्यक्तित्व निर्माण की महत्वपूर्ण आधारशिला बनते हैं। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पहुंचकर विकास कार्यों और शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा की। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कल से होगी। प्रदेश के सभी जनपदों में कल बूथों पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। इसके बाद 29 जून से 3 जुलाई तक घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इसी क्रम में आज उन्नाव में सदर विधायक पंकज गुप्ता ने जिला अस्पताल से जागरूकता रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के माध्यम से अभिभावकों से आग्रह किया गया कि वे अपने बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं। अमरोहा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमाकांत सागर ने 4 प्रचार वाहनों को रवाना किया। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में हुए अग्निकांड के बाद प्रदेश भर में फायर सेफ्टी के सघन चेकिंग जारी हैं। इसी क्रम में अलीगढ़ नगर निगम ने पूरे शहर में 100 नए फायर हाइड्रेट पॉइंट्स लगाने का फैसला लिया है। इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है और टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। प्रोजेक्ट के तहत सभी हाइड्रेट पॉइंट्स नगर निगम की मुख्य पानी की सप्लाई लाइन से जोड़े जाएंगे। जरूरत पड़ने पर दमकल के वाहन इनसे पाइप जोड़कर सीधे पानी ले सकेंगे, जिससे रिस्पॉन्स टाइम में कमी आएगी। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कल प्रयागराज में ऊर्जा विभाग, नगर विकास विभाग एवं विकास प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जनहित से जुड़े सभी कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर पूरा करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने बिजली से संबंधित किसी भी समस्या अथवा शिकायत का तत्काल निस्तारण करने के निर्देश देते हुए स्पष्ट कहा है कि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं में तेजी लाकर उन्हें तय समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण कर लिया जाए। श्री शर्मा ने कहा कि वर्षा काल को देखते हुए सभी नालों के समयबद्ध सफाई कर जल भराव की समस्या से नागरिकों को राहत दिलाई जाए। जौनपुर के प्रगतिशील किसान सूर्यभान यादव को उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा। जिला उद्यान अधिकारी डॉ सीमा सिंह राणा ने बताया कि सूर्यभान यादव ने 1 हेक्टेयर भूमि में आम की 140 प्रजातियों का मॉडल बाग विकसित किया है। इस बाग से प्रतिवर्ष 200 क्विंटल आम का उत्पादन होता है, जिससे उन्हें करीब 4 लाख रुपए का वार्षिक लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि आगामी 3, 4 और 5 जुलाई में आयोजित होने वाले आम महोत्सव में श्री यादव को यह सम्मान दिया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गौतमबुद्ध नगर में 2 इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की रखी आधारशिला। 2,478 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं की दी सौगात। मुख्यमंत्री एमएसएमई दिवस पर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो में हुए सम्मिलित। कहा, विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में एमएसएमई उद्यमों की होगी महत्वपूर्ण भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दो दिवसीय दौरे पर पहुंची अयोध्या। नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्रों का किया उद्घाटन। अवध विश्वविद्यालय में शैक्षणिक कार्यों की समीक्षा की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन अब समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है, जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
2: प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन हमारे लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। हमारे शूर की घड़ी में सात बजकर

0: 31 मिनट हो चुके हैं। प्रस्तुत है पॉडकास्ट श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
2: श्रोताओं नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं आलोक शुक्ल। प्लास्टिक की बोतलें कचड़े पर्यावरण को जो है प्रदूषित करते हैं, प्लास्टिक के चाहे कचरे हो, प्लास्टिक के सामान हो, प्लास्टिक की बोतल, क्योंकि आजकल आप आम देख रहे हैं कि हर चीज में पानी की बोतल लेना हो या कोई भी अन्य पदार्थ लेने हो तो प्लास्टिक की बोतलों में होते हैं या किसी इसी प्रकार के रैपर वाले में उन्हें पैक किया जाता है। तो इससे होने वाला प्रदूषण जो है वो एक बड़ी समस्या है। लेकिन भारत देश के एक छोटे से शहर अंबिकापुर में इस प्रदूषण से निपटने के लिए एक अनोखा उपाय किया गया। इस उपाय में एक अपील की गई कि जो भी यहां पे आए, हम उनके लिए रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, प्लास्टिक के जो कचरे हैं, प्लास्टिक की बोतलें हैं, जो अवशिष्ट पदार्थ हैं प्लास्टिक के जिससे प्रदूषण फैलता है, वो उसे अंबिकापुर के बस स्टैंड में वहां पे लाएं, गौरव पथ पे जो बना हुआ है, और उसके बदले 1 किलो यदि वो कचरा लाते हैं तो उसके बदले उन्हें भरपेट खाना मिलेगा, आधा किलो लाते हैं तो उन्हें नाश्ता मिलेगा, खाने में भी क्वालिटी अच्छी है, गुणवत्ता है। तो इस प्रकार से यहां पे की गई एक पहल है जो पूरे देश में प्रचारित हुई। और सबसे बड़ी बात है कि अंबिकापुर शहर की ये जो पहल है इसका उल्लेख हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में किया। और उसके बाद ये जो विषय है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उठा और विश्व के कुछ अन्य देशों में भी इसका सकारात्मक उल्लेख हुआ। तो हम बात कर रहे हैं रितेश सैनी जी से, जो स्वच्छ शहर में भी जो अंबिकापुर को एक पुरस्कार मिला था उसमें भी इनका योगदान मिला था, जो कचड़े, गीले कचड़े, सूखे कचड़े की जो अवधारणा हुई थी उसका भी जो प्रोजेक्ट है इन्होंने कुशलता के साथ संभाला था। तो सैनी जी, आप ये बताइए कि नगर निगम में जिस तरीके से ये हुआ तो ये क्या, इसके पीछे की अवधारणा क्या थी, कैसे ये विचार आया?
3: जी देखिए, अंबिकापुर नगर निगम में हम लोग वर्ष 2014 से ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे कार्य कर रहे थे। इसके अंतर्गत अंबिकापुर नगर निगम में हम लोगों ने डिसेंट्रलाइज मॉडल अपनाया, मतलब शहर में जो कचरा उत्पन्न हो रहा है उसको किसी एक स्थान पर ला करके प्रोसेसिंग करना कठिन काम था, तो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में हम इस काम को करें। इसके तहत SLRM प्रोजेक्ट अंबिकापुर में लगाया गया। वहां पे दीदियां जो है वो घरों से डोर टू डोर कचरा संग्रहण करती हैं। कचरा को संग्रहण करने के बाद SLRM सेंटर में आता है जहां पे कचरे का अलग अलग श्रेणी में पृथक्करण करते हैं, चाहे वो प्लास्टिक हो, पेपर हो, कार्डबोर्ड हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो या हजार्डियस वेस्ट हो, तो सबका वहाँ सेग्रीगेशन होता है। और सेग्रीगेशन होने के बाद उसकी प्रॉपर रिसाइकलिंग के लिए उसको वेंडर्स को सेल किया जाता है। प्लास्टिक वेस्ट एक जो बहुत बड़ी समस्या थी, तो अंबिकापुर नगर निगम में जो SLRM सेंटर है उनसे जो प्लास्टिक संग्रहित होकर के आ रहा है उसको हम लोग प्रॉपरली अलग अलग जो श्रेणी होती है प्लास्टिक की उसमें पृथक्करण करते हैं। पृथक्करण करने के बाद उसकी वाशिंग होती है, वाशिंग होने के बाद उसका दाना बनाने की मशीन, जो प्लास्टिक का ग्रेनुअल्स बनता है, ताकि हम उस प्लास्टिक को रिसाइकल कर सकें। प्लास्टिक को जितना ज़्यादा अपन रिसाइकल कर पाएंगे वो सर्कुलर इकोनॉमी की ओर एक हमारा अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा। वो प्लास्टिक रिसाइकल होने के लिए दाने का मशीन हमने लगाया। दाना बनने के बाद जो प्लास्टिक के उत्पाद बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो हमसे उस दाने को खरीद रही हैं। तो इतनी व्यवस्था जब बन गई तो उस प्लास्टिक की एक वैल्यू आई। जैसे ही हमने दाना बनाना शुरू किया, दाना बनाने के बाद हमको जब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनसे जब रेट्स मिलना शुरू हुए, तब हमको ये समझ में आया कि इस प्लास्टिक को दाना में कन्वर्ट करने के बाद 30 रुपए से लेकर 60-70 रुपए किलो तक बेचा जा सकता है। अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया तो उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है। गार्बेज कैफे में ये होता है कि लोग अपने घरों में या दुकानों में जो काम करने वाले वर्कर हैं या जो रैक पिकर्स हैं वो अच्छी साफ क्वालिटी की प्लास्टिक इकट्ठा करके ला रहे हैं, तो हमारा पृथक्करण का खर्चा बचा। जो हम लेबरों से अलग अलग प्लास्टिक को कराते वो प्लास्टिक को अच्छे से इकट्ठा करके हमारे पास ला करके दिया, तो साफ सुथरी अलग की हुई प्लास्टिक हमको मिल गई, तो वो जो प्रोसेसिंग कॉस्ट था वो हमारा खत्म हो गया। चूंकि हमारे पास प्लास्टिक एंड पॉइंट तक का मैकेनिज्म है, वो प्लास्टिक को हमने सीधे रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, हमारा जो दाना बनाने की फैक्ट्री है वहां पर डाल दिया, जो दीदियां काम करती हैं, दाना बन गया, उसकी वैल्यू लगभग 20 रुपए के आसपास हमारे पास आ जा रही है। अब हमने अंबिकापुर में ये गार्बेज कैफे स्टार्ट किया, क्योंकि ये बस स्टैंड परिसर में गार्बेज कैफे है। बस स्टैंड परिसर में गार्बेज कैफे होने के कारण क्या होगा कि अधिकतर लोगों के अप्रोच में है,

0: बस स्टैंड के जस्ट सामने में हमारा एक ऐसा अलार्म सेंटर है। चूंकि प्लास्टिक घरों से लाया हुआ है या सड़कों से लाया हुआ है, गंदा हो सकता है, रेस्टोरेंट में हाइजीन को भी मेंटेन करना है, तो प्लास्टिक लेके रेस्टोरेंट में नहीं आना होता है। जस्ट रेस्टोरेंट के सामने में रोड के उस साइड हमारा ऐसा अलार्म सेंटर है, वहां पे जाते हैं, वो प्लास्टिक को डिपॉजिट करते हैं, उसका वजन होता है, वजन होने के बाद उनको दीदियां टोकन इशू कर देती है। उस टोकन को लेकर के आपको गार्बेज कैफे में आना है। ये जो टोकन है उसकी वैलिडिटी 7 दिन की होती है। ऐसा नहीं कि आप आज लिए तो आज ही आपको उसको खाना ही है। आप 7 दिन के अंदर कभी भी आकर के उस टोकन को यहाँ जमा करिए और यहाँ पे ये जो रेस्टोरेंट जो चला रहे हैं वो उसके बदले में उनको भरपेट भोजन कराएंगे।
1: ये इस योजना की गार्बेज कैफे की जो शुरुआत हुई वो हुई 2019 में।
0: यस।
1: उस समय कुछ दिक्कतें आई शुरू करने में या लोगों के जो विचार थे वो कैसे थे?
0: देखिए,
1: उन विचारों को आपने सकारात्मक रूप में कैसे परिवर्तित किया ये बताएंगे सैनी जी आप।
0: इसमें देखिए क्या हुआ था कि 2019 में इसका जो शुरुआत करने का प्रक्रिया हुआ था, तो एक हम लोग एक आईसी एक्टिविटी के अंतर्गत बस स्टैंड परिसर में ही साफ सफाई का एक महाअभियान का आयोजन हम लोगों ने उस दिन किया था। तो जब साफ सफाई का महाअभियान किया गया तो उसमें हमारे महापौर हो गए, नगर निगम के अधिकारीगण हो गए, सारे लोग यहाँ पे थे और सफाई कर्मचारी लोग उसमें स्वीपिंग करके प्लास्टिक के कचरे को, अन्य सभी कचरों को इकट्ठा कर रहे थे। तो वहाँ पे एक बात आई कि क्या इस कचरे के बदले में हम लोगों को कुछ इंसेंटिव मिल सकता है क्या? तो उस समय जो अधिकारीगण थे उन लोगों ने कहा कि यदि आप इस जो सबसे अच्छा प्लास्टिक इकट्ठा करके लाएगा उसको आज मेरी ओर से खाना। तो इस तरह से एक चीज समझ में आई कि नहीं, ऐसा भी कुछ किया जा सकता है। फिर दूसरा, इसको आगे बढ़ने का हमने इसलिए उम्मीद किया क्योंकि प्लास्टिक की वैल्यू हमको ये समझ में आ गई कि जब अगर प्लास्टिक का प्रॉपर आपके पास सेग्रीगेशन है, आपके पास दाना बनाने की मशीनें हैं और आपके पास वेंडर हैं, आप प्लास्टिक को कहाँ बेच सकते हैं, सही मूल्य अगर अपने को मिल रहा है तो हम इसको सस्टेन कर सकते हैं। कि अगर मान लीजिए 1 किलो प्लास्टिक जो सामान्य रूप से कोई 2 रुपए किलो में बेच रहा होगा, हमारे पास आके प्रोसेस होकर वो 30-40 रुपए किलो में जा रही है। सारे खर्चों को काट करके अगर 1 किलो प्लास्टिक में 20 रुपए भी मेरा बच रहा है तो उस 20 रुपए मैं इस रेस्टोरेंट वाले को दूंगा। ये रेस्टोरेंट प्राइम लोकेशन पे है, यहाँ पे गार्बेज कैफे में जो खाने आते हैं उनके अलावा अन्य जो यात्रीगण आते हैं उनको भी ये खिला सके, इसलिए उनकी ओर से भी क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता
1: है। ये माने ऐसा नहीं है कि खाली जो कचरा लेके आ रहे हैं उनके लिए।
0: यस,
1: ये सभी के लिए है।
0: जी बिल्कुल।
1: तो उसके लिए भी एक रेट है।
0: उसके लिए यहाँ पे रेट है। आप पैसा देके भी खा सकते हैं और जो गार्बेज कैफे में जो प्लास्टिक जमा करके टोकन ला रहे हैं वो भी खा सकते हैं। अब यहाँ पे टोकन वालों के साथ कोई भेदभाव ना हो, कि ऐसा ना हो कि इनको हमने दे दिया और ये केवल जो पैसा दे रहा है उसको पहले दें, टोकन वालों को बाद में दें। तो इसके लिए हम लोगों ने इनके साथ एग्रीमेंट में ही लिखा हुआ है कि 2 सीट हमेशा, 2 टेबल मतलब 8 व्यक्तियों के बैठने की जो अरेंजमेंट है वो हमेशा रिजर्व रहेगा। क्योंकि ये संभावना है, हो सकती है ऐसी संभावना कि वेंडर ने तो कम रेट पर ले लिया इसको और उसने कहा कि 20 रुपए मेरे को आप टोकन का रीडिंग माफ करेंगे, बाकी कंट्रीब्यूशन मेरा रहेगा। तो उस समय ऐसी परिस्थिति ना बन जाए कि केवल बाहर वाले लोगों को ही वो खिला रहे हैं, जो टोकन लेकर के आ रहे हैं वो या तो सड़क से कचरा बीनने वाले होंगे या कुछ होंगे, तो उनके साथ कोई भेदभाव हो, ऐसी स्थिति ना बने। तो इनको ये कहा गया कि आपको 2 टेबल रिजर्व रखना है, आप कभी भी मतलब उनको वापस नहीं भेजोगे।
1: आप ये बताइए कि इसमें से प्रतिदिन कितना आय हो जाता है यहाँ पे?
0: जब देखिए हमने इस गार्बेज कैफे की शुरुआत की थी तो शुरुआत के 1-2 महीने में तो दो तीन लोग आ रहे थे। उसके बाद फिर काफी अच्छा लोगों यहाँ आना शुरू किया, 15-20 टोकन 30 टोकन 40-50 टोकन तक पर डे जाना शुरू हुआ। अभी भी मतलब हर दिन लगभग 8-10 टोकन कंटिन्यूअसली आते जाते हैं। कई बहुत अच्छे इसमें आप एग्जांपल भी देखेंगे कि एक रैक पिकर है जो दुकानों से, मार्केट जब बंद होता है तो प्लास्टिक इकट्ठा करता है, वो प्प्लास्टिक इकट्ठा करके आता है यहाँ पे जमा करता है, जैसे 1 किलो 2 किलो 3 किलो, और टोकन इकट्ठा करता है। तो उसने एक बार रिक्वेस्ट किया था कि सर 1 टोकन मिलता है मान लीजिए मेरे को तो मैं अकेले खाना जाता हूँ, क्या मैं 3-4 दिन इकट्ठा करके 5-7 टोकन कर लूँ और अपने परिवार बच्चे लोगों को लेकर के आ जाऊँ, तो एक मेरे बच्चे लोगों को मैं कभी रेस्टोरेंट नहीं ले जा पाता है ना, तो ऐसा क्या मैं कर सकता हूँ? तो उसके लिए फिर आयुक्त महोदय का बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। 7 दिन टोकन की वैलिडिटी वाला जो कॉन्सेप्ट आया, पहले तो एक ही दिन था कि आज आप लोग जाओ खाओ चले जाओ, फिर उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, 7 दिन तक आपका टोकन वैलिड रहेगा।
1: जो गरीब परिवार है, खासकर जो कचरे का जो संग्रह करते हैं, जो प्लास्टिक को बीनते हैं, जो हमें प्रदूषण मुक्त समाज की एक मुख्य अवधारणा है, जो गरीब तबके के लोग जो संग्रह करते हैं उनके लिए देखिए कितनी अच्छी पहल है।
0: होटल वाला भी ये करता है कि आप बच्चे का यदि चाउमीन खाने का मन है, इडली खाने का मन है, तो जरूरी नहीं कि आलू बंडा समोसा ही आप खाइए, आप 2 टोकन दे दीजिए तो उसके बदले में। तो ये हो गया कि मतलब वो भी अब अपने फैमिली को रेस्टोरेंट लेकर के आ सकता है और सम्मान से बैठ करके खा सकता है। तो ये इस तरह के भी कुछ एग्जांपल्स इसमें निकल करके आए हैं। तो ये एक अच्छा हमको हुआ कि प्लास्टिक तो आ ही रहा है, ऑलरेडी हम लोग घरों से भी प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं, डोर टू डोर कलेक्शन में प्लास्टिक मिल रही, सारे की प्रोसेसिंग कर रहे हैं। एक मोड ये भी है कि इसके माध्यम से प्लास्टिक भी हमको मिल जा रहा है और साफ सुथरी प्लास्टिक जहाँ प्लास्टिक को जाना चाहिए, जो उसका वैधानिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में हम डिस्पोजल कर पा रहे हैं।
1: ये जो पानी भी आप देते हैं तो स्वच्छ पानी
0: जी
1: वो लोगों को उपलब्ध कराते हैं,
0: स्वच्छ पानी उपलब्ध कराते हैं। यहाँ पे आरओ भी लगा हुआ है इनके पास, इसके अलावा ये वाला बॉटल भी, मतलब कि ऐसा कोई अनहाइजीनिक सिचुएशन यहाँ ना क्रिएट हो, उन सब चीजों का स्पेशल ध्यान भी इनके द्वारा।
1: सनी जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि इस पहल को प्रधानमंत्री मोदी ने मन

0: की बात में पूरे देश के समक्ष किया, प्रभाव ये पड़ा कि विदेशों में भी इसकी चर्चा हुई और कोई शहर महानगर इस अवधारणा को स्वीकार करते हैं और आपसे सहयोग चाहते हैं,
1: बिल्कुल,
0: या ऐसा कोई मामला सामने आया, ऐसा कोई विषय सामने आया कि जो और कोई शहर के भी लोग आपसे कांटेक्ट किए हैं?
1: जी बिल्कुल, दिल्ली, दिल्ली जो है भारत की राजधानी है और दिल्ली में शायद 27-28 गार्बेज कैफे आज के डेट में हो चुके हैं। तो 2019 में जब हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया था तो 21 दिसंबर के आसपास दिल्ली से यहाँ एक्सपोजर विजिट के लिए भी आए थे, वहाँ पे दिल्ली में भी उन्होंने गार्बेज कैफे चालू किया है। इसके अलावा और भी कुछ कुछ ऐसे शहर हैं जो गार्बेज कैफे के बारे में बहुत सारी डिटेल्स हमसे ली, यहाँ तक कि जो हमारे CAG होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो जब इस डिपार्टमेंट को पता चला कि ऐसा कोई इनिशिएटिव चल रहा है तो फाइनेंशियल इसके क्या सिचुएशन है, क्या ये सस्टेन हो पाएगा कि या इसको सब्सिडाइज करके करना है और जगहों पर लागू करना, तो CAG ने भी इस पर विस्तृत हम लोगों से पूरा जानकारी लिया और पूरा ऑडिट किया इन सारे चीज़ों का कि कैसे कैसे होता है, कैसे टेंडर किया गया, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थे। तो CAG ने भी इन सब चीज़ों को ऑडिट करके आगे लोगों के लिए एक मॉडल के रूप में, गाइडलाइन के रूप में गार्बेज कैफे का दिया हुआ।
0: गार्बेज कैफे का जो सबसे अधिक लाभ, या कहें कि ये जो पहल आपने की, सबसे अधिक लाभ किस वर्ग को मिला, किसे मिला, समाज के किस तबके को मिला?
1: समाज के उस तबके को मिला जो ऑलरेडी प्लास्टिक पे काम कर रहे हैं, अब पहले भी करते थे, रैक पिकर लोग अभी भी दुकानों से ले रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन उनको ये समझ में आया कि मैं दिन भर इकट्ठा करके, क्योंकि एक किलो बोलने में बहुत हमको हल्का लगता है लेकिन जब आप प्लास्टिक की बात करेंगे, एक किलो लोहा और एक किलो प्लास्टिक में बहुत अंतर होता है। एक किलो प्लास्टिक जब हम इकट्ठा करने जाएंगे तो पता चलेगा आधा बोरा भर गया, और साफ सुथरी प्लास्टिक लानी है। इसमें हम लोग एक ये भी करते हैं कि प्लास्टिक आपको कौन सी लानी है कि आप यूज करें। मेन हमारा ये इनिशिएटिव है कि सड़कों से उठाना या नालियों से उठाना वो नहीं है, प्लास्टिक को आप फेंकें ना, आप प्लास्टिक का यूज किए, आप प्लास्टिक को स्टोर कीजिए, एक किलो हो गया गार्बेज कैफे में डिपॉजिट कीजिए, टोकन लीजिए, खाना खाइए।
0: तो ये दिन पे दिन ये जो प्लास्टिक संग्रह है बढ़ रहा है?
1: नहीं,
0: क्या है,
1: प्लास्टिक संग्रहण तो बढ़ रहा है, देखिए प्लास्टिक कचरे में वृद्धि भी हो रही है, प्लास्टिक के अल्टरनेट भी अब आते जा रहे हैं, क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं मार्केट में हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50-55 टन कचड़े का हम लोग प्रोसेसिंग कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे बहुत सारे चीज़ों में हम देख रहे हैं कि डिस्पोजेबल आइटम जो है वो अल्टरनेटिव आना शुरू हो गए, जैसे जो कागज की प्लेट्स आती थी अब वो प्रेस मड की प्लेट आ रही है, मतलब वो गन्ने से बना हुआ प्रेस मड है जो डिस्पोज हो सकता है, जिसका हम लोग खाद बना सकते हैं,
0: जैविक है,
1: जैविक है वो, ऑर्गेनिक है वो।
0: और बड़ी बात सामने आ रही है कि जो प्लेटें जो पहले प्लास्टिक की रहे या थर्मोकोल की रहती
1: थी,
0: अब लेकिन वो जो गन्ने के छिलके से बनी प्लेटें हैं ये बता रहे हैं कि वो ज्यादा आ रही हैं, और वो क्या होती है कि वो नष्ट भी हो जाती हैं प्राकृतिक रूप से, क्यों, क्योंकि पूरी तरीके से जैविक होती हैं। क्या क्या चीज आप यहाँ पे देते हैं?
1: यहाँ पे गार्बेज कैफे में जो आते हैं उनके साथ साथ जो पब्लिक बस स्टैंड में आ रहे हैं यात्रीगण, उन यात्रीगणों के लिए भी यहाँ पे सुविधा है। तो यात्रीगणों के आधार पे वेंडर को जो लगता है कि यहाँ पे जैसे गर्मी का सीजन है तो लस्सी होना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक होना चाहिए, या लंच में और कुछ कुछ आइटम है तो सारे आइटम ये बनाते हैं। तो जो गार्बेज कैफे का मेनू है तो फिक्स है कि उसमें आपको खाने में क्या क्या देना है, नाश्ते में क्या क्या देना है, उसके अलावा जो अलग से आ रहे हैं यात्रीगण वो जो यहाँ अवेलेबल है उस ऑर्डर दे करके ले सकते हैं।
0: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया
1: जी,
0: उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा गार्बेज कैफे में?
1: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि एक तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए, कुछ पहले भी चल रहा था अंबिकापुर में लेकिन मन की बात में आने के बाद और लोगों को पता चला कि गार्बेज
0: कैफे पड़ा,
1: बिल्कुल असर
0: वृद्धि हुई है,
1: वृद्धि हुई है, उससे भी वृद्धि हुई है। दूसरा इनके प्रति सपोर्ट भी पड़ा कि एक हमारे शहर की का जो एक सम्मान की बात है कि शहर के बारे में प्रधानमंत्री जी अगर चर्चा कर रहे हैं तो उससे लोगों के मन में भी एक आया कि नहीं ये अच्छी इनिशिएटिव, इसको और बढ़ाना चाहिए। ये भी बात आई कि शहर के और दूसरे हिस्सों में भी हम चाहें तो अगर इस पर से अवेलेबल हो तो चालू कर सकते हैं इसको, ना केवल प्लास्टिक, अगर और भी कुछ इनिशिएटिव करना चाहे तो उस पर भी हम लोग विचार कर सकते हैं आगे चल करके।
0: मैं देख रहा हूँ कि अगल बगल भी होटल हैं, हाँ। कई जो पुराने होटल हैं, बड़े होटल वो स्थापित हैं, उसके बाद भी आपका ये अच्छे से चल रहा है होटल, तो जनता का जो भरोसा है, जो जो एक कई सामाजिक जो मेहनत कश लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उन्हें भी एक भरपेट भोजन मिल जाता है, कि या कहें कि एक ऐसे शहर में आके कि कचरा इकट्ठे कर लो तो उन्हें खाने के कम से कम दिक्कत नहीं होती।
1: सबसे बड़ी बात यह होती है कि उनके मन में एक तो जो हेजिटेशन रहता है, ये रेस्टोरेंट में कैसे जाएंगे या क्या करेंगे, जब उनको पता चला कि ये रेस्टोरेंट हमारे ही लिए बना है, गार्बेज लाना है, गार्बेज देकर करना है, तो एक उनका भी हेजिटेशन भी वो हो रहा है। दूसरा चीज, रेस्टोरेंट को ये मेंटेन रख रहे हैं वेंडर, नगर निगम से भी निरीक्षण हो रही है, पूरा हाइजीन मेंटेन रख रहे हैं, साफ सफाई मेंटेन रखना है सारा चीज, तो यहाँ पे खाने में किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा है कि किसी प्रकार की कोई गंदगी है, किसी प्रकार की कोई यहाँ पे समस्या आ रही हो, तो वो सब चीजें नहीं।
0: तो अभी एक चीज और कहना चाहूंगा कि देखिए, एक आजकल इकोनॉमिक युग है, तो दिन पे दिन इससे लाभ बढ़ रहा है, उसका क्या अनुपात है आप बताएंगे पहले में और अब
1: इसका
0: में?
1: जो इकोनॉमिक व्यू है, गार्बेज कैफे संचालन का

0: एक तो ये दृष्टिकोण है कि प्लास्टिक हमारे पास आ जाए और रिसाइकलिंग हो जाए और उसको व्यक्ति को भोजन मिल जाए। शुरू में तो हम इसको सब्सिडी में चलाने का हम लोग को लग रहा था कि इसमें नगर निगम को हर टोकन पे कुछ पैसा हम लोग को पे करना पड़ेगा। तो इसमें हमने क्या किया कि एक तो ये प्राइम लोकेशन है, यदि इसको हम लोग बिड करते, टेंडर करते, कोई बड़ा व्यापारी इसको लेता तो काफी पैसे में ये बिक्री हो सकती थी। तो इसका एक सब्सिडाइज रेट हमने रखा कि जो गार्बेज कैफे लेगा उसमें सबसे ज्यादा हमको ये लिख करके कौन देगा कि सबसे मैं कितना कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल लूँ कि 40 रुपए की प्लेट है तो 40 रुपए की प्लेट में मैं कितना छूट दे सकता हूँ, ये बिड का आधार था, ना कि ये बिड का आधार था कि मैं 5 लाख की दुकान को 15 लाख में लूंगा। ठीक है, तो वो हम लोगों ने फिक्स किया था कि भाई यहाँ पे आपको केवल और केवल 5 लाख रुपए का ये जो प्रीमियम है वो देना होगा और जो मंथली रेंट है ना, क्योंकि आर्थिक नुकसान भी निकाय को नहीं होना चाहिए, तो जो मंथली रेंट है वो दूंगा। लेकिन प्रीमियम बिड को हम लोग फिक्स कर दिया था, उसकी जगह हम लोगों ने ये बिड रखा था कितना डिस्काउंट देंगे। तो जैसे इन्होंने 50% का डिस्काउंट दिया, यदि मेरी भोजन की प्लेट 50 रुपए की है तो 25 रुपए का कंट्रीब्यूशन मेरा रहेगा। इसने मैक्सिमम लिमिट भी दिया कि एक दिन में अधिकतम 30-40 लोग तक का मैं करूंगा, उसके ऊपर होगा तो आपको फुल पे करना होगा, ये उन्होंने दे दिया। दूसरा, प्लास्टिक जो हमारे पास आ रहा है हम उसकी वैल्यू देख रहे हैं कि अगर साफ सुथरी प्लास्टिक मेरे पास आती है जिसमें मेरा कलेक्शन का जो खर्च है, छांटने का जो खर्च है, लेबर कॉस्ट, उन सारे खर्च को काटने के बाद सीधा प्लास्टिक मेरे पास ऐसा आ रहा है कि उसको उठा करके सीधे दाना बनाने वाले सेंटर में भेजना है और वो सीधे दाना बन जाएगा। तो दाना बनाने के बाद मेरी जो वैल्यू आ रही है प्लास्टिक की वो भी लगभग 20 से 22 रुपए आ जा रही है। अगर साफ सुथरी प्लास्टिक हमको मिल रही है तो 20 से 22, तो 20 से 22 रुपए वहां से बच गया, कुछ इन्होंने सबमिट कर दिया। तो ये जो टोकन हमको जमा कर रहे हैं उसका 50% हम पे कर देते हैं, 50% ये डिस्काउंट कर दे रहे हैं।
1: तो संक्षेप में ये बताइए कि एक जो अनुपात है लाभ का, अनुपात दिन पे दिन बढ़ रहा है?
0: नहीं, लाभ और नुकसान दोनों इसमें नहीं है। मतलब ये एक अच्छी योजना चल रही है, नगर निगम को लोगों के टोकन पे कोई ना लाभ है ना कोई नुकसान है, बिल्कुल बराबर पहुंच चुके हैं हम लोग। निगम को लाभ क्या है, जो प्रति माह ये किराया दे रहे हैं क्योंकि अपना रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं, तो निगम को जो प्रति माह ये किराया पे कर रहे हैं वो निगम की आय है, राजस्व इस गार्बेज कैफे का।
1: और सबसे बड़ी बात है कि जो आम जन है, आम यात्री हैं, हाँ, उनके बल पे ये
0: बिल्कुल चल रहा है,
1: बस चल रहा है, बस स्टैंड है। तो ये जो योजना है, ये जो एक पहल है, एक छोटे से शहर से निकलकर दिल्ली में बता रहे हैं अनुकरण करके वहां पे 21
0: यहाँ 21 लोकेशन पे ऐसा
1: 21 लोकेशन पे गार्बेज कैफे दिल्ली में हो गए, और भी जगह ये धीरे धीरे फैल रहा है।
0: बिल्कुल जानकारी।
1: छत्तीसगढ़ में कितनी जगह है?
0: छत्तीसगढ़ में तो अभी अंबिकापुर में।
1: तो आप देख रहे हैं कि जो रितेश सैनी जी हैं, जो इसके इंचार्ज हैं, ये बता रहे हैं कि ये अंबिकापुर जो छोटे से शहर से 2019 से ये पहल शुरू हुई, आगे और इसे उन्नत रूप देने के लिए और क्या क्या योजनाएं हैं आपकी?
0: अभी हम लोग इसमें जैसे जैसे रिसाइकलिंग बढ़ती जा रही है, हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट पे इतने साल से काम कर रहे हैं तो नगर निगम अंबिकापुर एक अनुभवी नगर निगम हो गया है वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर। और सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ की स्वच्छता दीदियाँ हैं, उनका जो योगदान है, मतलब वो घर घर जाकर डोर टू डोर कलेक्शन कर रही हैं और इस गुणवत्ता के कचरा को लेकर के आ रही हैं कि एकदम साफ सुथरा। सपोज दैट अगर अभी हम और आप एक बॉटल में पानी पिए और वो बॉटल इतना फ्रेश है कि हम लोग पानी पी रहे हैं मुँह लगा करके, और उसको अगर हम एक सही ढंग पर सही तरीके से रख देंगे तो उतना ही साफ स्वच्छ रहेगा जितना खाते वक्त था। तो उस स्तर का कचरा अब हमारे पास आ रहा है दीदियों के माध्यम से। तो अब हम लोग ये एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं कि क्या और ऐसा कचरा क्या है जिसकी वैल्यू अच्छी हमको मिल सकती है, तो हम सिटीजन्स के लिए भी कुछ ऐसा और ला सकते हैं कि अगर इस कचड़े को आप स्टोर करके साफ सुथरा अगर हमको दे रहे हैं तो हम उसके बदले में कुछ इंसेंटिव दे सकते हैं, ना केवल खाना ही, कुछ और भी इंसेंटिव दे सकते हैं, कुछ हम कूपन इशू कर सकते हैं, कुछ टोकन इशू कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप कोई यदि सरकारी योजना का लाभ लेना चाहें, या हम ऐसा टोकन इशू कर दें कि आप टॉकीज में जाकर के फिल्म देख सकें। इस तरह से हम लोग और भी
1: इनिशिएटिव में जाकर फिल्म देख सकें,
0: इस तरह की योजना कैसे बच्चों का, सपोज दैट कि बच्चे स्कूल में जा रहे हैं तो हम ये कर सकते हैं कि जैसे प्लास्टिक पेट बॉटल है उसकी वैल्यू अच्छी है, वो 40-45 रुपए किलो तक बिकती है, तो हम ये कर सकते हैं कि उनको कुछ टेक्नोलॉजी सिखा सकते हैं बच्चों को कि आप कैसे इसको अपने घर में कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे एक प्लास्टिक की बॉटल है उसमें यदि हम डेली छोटे छोटे पाउचेस हैं सॉस के, या उसको हम डालते जाएं फिर प्रेस करते जाएं, डालते जाएं, वो एक भर के इतना कंप्रेस्ड हो जाएगा कि कुछ दिन बाद ये पता चलेगा कि वो एक लीटर की प्लास्टिक की बॉटल में आपने 2 किलो प्लास्टिक, और वो छोटा प्लास्टिक है जो नालियों में चला जाता है जिसको सेग्रीगेशन बड़ा करना कठिन है। तो इस तरह के बच्चे का इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो हम उनमें उनको कुछ इंसेंटिव बच्चों को, चाहे इस फिल्म मूवी देख सके कोई बच्चों से रिलेटेड, या उनको कुछ उनके एजुकेशन से रिलेटेड अपन कॉपी देना चाहें, कंपास देना चाहें, इस तरह के चीजों पे भी
1: तो उससे कई अच्छे परिवार के भी जो बच्चे हैं, हाँ, वो भी जुड़ेंगे, मध्यम वर्गीय हैं वो भी जुड़ेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो पहल है एक हर वर्ग के लिए अनुकरणीय हो सकती है, जो छोटी सी पहल इस शहर से निकली।
0: जो मैंने बच्चों के इनिशिएटिव की बात करी तो मन की बात में एक एपिसोड भी आया था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट भी किया था। अंबिकापुर में एक स्कूल है होली क्रॉस स्कूल के बच्चों ने क्या किया कि स्कूल में जितना भी लोग चॉकलेट या जो भी लेकर के जाते हैं
1: उसके रैपर
0: इकट्ठा करके और अलग अलग कंपनी के कोरियर बनाए और कंपनी को कोरियर कर दिया कि ये आपका कचरा आपको वापस। तो ये मतलब बच्चे लोगों के दिमाग में ये बात आई कि जब कंपनी हमसे 10 रुपए का 15-20 रुपए का हम चिप्स खा रहे हैं तो उसके कचड़े को कंपनी की रिस्पांसिबिलिटी क्यों नहीं है, उसकी भी रिस्पांसिबिलिटी उनको लेनी चाहिए। तो उन्होंने मतलब ब्रांड

0: वाइज अलग अलग तरह किया, स्कूल में सेग्रीगेट किया और उस ब्रांड को कुरियर कर दिया।
1: एक तरीके से देखा जाए तो बच्चों ने एक प्रेरणा दी और एक समाज को और देश को आईना दिखाया कि यदि आप किसी चीज में कर रहे हैं तो कचरा निपटान की भी जिम्मेदारी बनती है। माने कहा जाए तो अब जो देश है वो बदल रहा है और गार्बेज कैफे की जो अवधारणा है वो वास्तव में देखा जाए तो वैश्विक होनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है।
0: हैशटैग गार्बेज कैफे सर्च करिए तो आपको तमाम देशों के मिल जाएंगे, उसमें बांग्लादेश से लंदन इटली वगैरह सारे जगह,
1: जापान कोरिया यहां
0: सभी,
1: से भी
0: सभी जगह
1: प्रशंसा आई थी,
0: प्रशंसा आई थी। अंबिकापुर के ट्वीट को रिट्वीट किया गया, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने बताया कि ऐसा इनिशिएटिव यहां पे ले रहे हैं और किन देशों में चालू हुआ इसकी जानकारी तो मेरे को नहीं है, मगर आप ट्विटर में सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा कि लगभग विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया है।
1: दोस्तों आज इस महत्वपूर्ण विषय के साथ एक जो यहां से यात्रा शुरू हुई गार्बेज कैफे की, तो इस गार्बेज कैफे की जो यात्रा के सबसे प्रमुख जो व्यक्ति हैं उनसे, रितेश सैनी जी से, उनसे हमने साक्षात्कार किया, इस यात्रा वृतांत के बारे में पूछा, इस रोचक यात्रा के बारे में पूछा और कई अनछुए पहलुओं का भी इन्होंने पूरा विवरण दिया जो काफी रोचक है। तो आज मुझे यानी आलोक शुक्ल को अनुमति दीजिए। जय हिंद।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
3: अभी आप सुन रहे थे पॉडकास्ट श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। अब आपको लिए चलते हैं अपने मुंबई केंद्र, सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम
4: में। हैट्रिक की बात, 1996 में इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप की मेजबानी की और जॉफ हर्स्ट फाइनल में हैट्रिक बनाने वाले वर्ल्ड कप इतिहास के पहले खिलाड़ी बने। वेम्बले स्टेडियम में उनकी हैट्रिक ने इंग्लैंड को पश्चिमी जर्मनी के खिलाफ 4-2 से जीत दिलाने में मदद की थी। 2022 में चमत्कार फिर से दोहराया गया, फाइनल में किलियन एम्बापे ने फ्रांसीसी टीम के लिए 3 गोल किए, हालांकि फ्रांस को खिताब जीतने के लिए काफी नहीं था। लियोनेल मेसी की अगुवाई वाली अर्जेंटीना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3-3 से ड्रॉ रहे मैच को पेनल्टी शूट आउट तक पहुंचाया और आखिरकार दक्षिण अमेरिकी टीम ने पेनल्टी शूट आउट में 4-2 से जीत हासिल की। तो ये था वर्ल्ड कप फुटबॉल का बुखार। वर्ल्ड कप फुटबॉल के बारे में कुछ रोचक तथ्य हमने आपको बताया और आइए अब अपनी प्रैक्टिकल दुनिया की तरफ लौट आते हैं और आपको बताते हैं कि व्हाट्सएप को हैक करने से बचाने के लिए किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए। व्हाट्सएप को आज भारत में 20 करोड़ से ज्यादा यूजर्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन व्हाट्सएप आसानी से हैक हो सकता है। ऐसे में व्हाट्सएप को सुरक्षित रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो ये कि व्हाट्सएप को हैक होने से बचाने के लिए हमेशा 6-डिजिट SMS वेरिफिकेशन कोड या कोई अन्य OTP किसी के साथ साझा न करें। आपको अपने व्हाट्सएप में हमेशा 2-स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल कर लेना चाहिए। इसके अलावा समय समय पर लिंक्ड डिवाइसेस की चेकिंग भी कर लेनी चाहिए। और इसके अलावा कुछ और बातें आपको बताते हैं, अपने व्हाट्सएप खाते के लिए एक मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें, इसे किसी से भी साझा न करें। जैसे कि हमने आपको बताया 2-स्टेप वेरिफिकेशन, आप व्हाट्सएप की सेटिंग में जाएं, अकाउंट में जाएं, 2-स्टेप वेरिफिकेशन को चालू करें और इस तरह से ये एक लेयर बढ़ जाएगी सिक्योरिटी की। इसके बाद कोई भी व्यक्ति अपने फोन में आपका व्हाट्सएप चालू नहीं कर पाएगा। यदि कोई आपसे आपका 6-डिजिट वेरिफिकेशन कोड मांगता है तो वो आपका दोस्त हो, परिचित हो, आपको ये कतई नहीं देना है। आपको व्हाट्सएप में जाना है और चेक करना है लिंक्ड डिवाइसेस, जहां वो बताएगा कि आपका व्हाट्सएप कहां कहां कंप्यूटर पर लॉग इन है, सभी जगह से आपको लॉग आउट करके रखना चाहिए। इसके अलावा संदिग्ध लिंक से बचें, बहुत जरूरी बात है। किसी भी अनजान नंबर से कोई मैसेज आया है, कई बार वो लिंक हो सकती है, कई बार वो तस्वीर हो सकती है। हाल ही में एक शख्स को किसी शादी का कार्ड आया, उसने वो क्लिक किया और उसका व्हाट्सएप हैक हो गया। ये कार्ड किसी अनजान नंबर से आया था। दूसरी बात, बायोमेट्रिक लॉक सेट करें। व्हाट्सएप को सुरक्षित रखने के लिए आप फिंगरप्रिंट या फेस आईडी के लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपने फोन में और कंप्यूटर में व्हाट्सएप का बैकअप रखें। जैसे कि हम अपने ईमेल आईडी पर व्हाट्सएप व्हाट्सएप का बैकअप सेट कर सकते हैं ताकि अगर आपका खाता हैक हो जाए तो आप अपने डेटा को इस तरह से वापस ला सकते हैं। किसी भी तरह की मुसीबत की स्थिति आए तो अपने व्हाट्सएप अकाउंट को एक्सेस न कर पाने की स्थिति में support@whatsapp.com पर मेल करके अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप

30 दिनों तक अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं करते हैं तो अपने आप आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। और अब हम याद कर रहे हैं फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को, जिनकी याद का दिन होता है 27 जून को। फील्ड मार्शल सैम हॉर्मुज़जी प्रेमजी जमशेदजी मानेकशॉ का जन्म 3 अप्रैल 1914 को ब्रिटिश भारत के अमृतसर में हुआ था। उनके पिता हॉर्मुज़जी मानेकशॉ पारसी थे और पेशे से एक डॉक्टर थे। माँ का नाम था हीरेबाई मानेकशॉ। सैम मानेकशॉ के पिता चाहते थे कि वो मेडिकल की पढ़ाई करें, लेकिन सैम का मन था कि वो आर्मी में जाएं, और उन्होंने भारतीय सैन्य एकेडमी देहरादून में दाखिला लिया। उनकी पढ़ाई नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में हुई थी। 1932 में वो फौज में आ गए। 1934 में फौज में स्नातक हुए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बर्मा के युद्ध क्षेत्र में जापानी सेना के खिलाफ उन्हें लड़ने के लिए भेजा गया था। 1971 की जंग में पाकिस्तान को हराने और नया मुल्क बांग्लादेश बनाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। वो एक ऐसे लीडर बने जिन्होंने पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को बंदी बना लिया था। गोरखा और भारतीय सेना के जवान उन्हें हमेशा प्यार से सैम बहादुर कहा करते थे। रिटायरमेंट के बाद वो तमिल लोगों के इसलिए प्रिय हो गए क्योंकि नीलगिरीज में उन्होंने अपना घर बना लिया था। 1968 में पद्म भूषण, 1972 में पद्म विभूषण से सम्मानित हुए थे सैम मानेकशॉ। और आपको बता दें कि 1971 का जो भारत पाक युद्ध था उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को 100% विक्ट्री का वादा किया था और उसे निभाया भी था। 27 जून 2008 को सैम मानेकशॉ गहरी नींद में सो गए, हम सबसे बिछड़ गए। उस वक्त उनकी उम्र थी 94 बरस। सैम मानेकशॉ पर एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम है सैम बहादुर। इस गाने के जरिए हम सैम बहादुर को नमन करते हैं। ये था आज का जिज्ञासा कार्यक्रम। मिलेंगे अगले हफ्ते नई जानकारियों के साथ। शोध आलेख स्वर और संपादन यूनुस खान का।

0: हवा महल में आज हमारी श्रृंखला सुनो कहानी।
1: दोस्तों, हवा महल के अंतर्गत सुनो कहानी श्रृंखला में इन दिनों आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का वाचन। इस कड़ी में आज आपको सुनवा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी नशा। वाचन स्वर है अमरकांत दुबे का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता विजय दीपक छिब्बर।
2: ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं एक गरीब क्लर्क का, जिसके पास मेहनत मजूरी के सिवा और कोई जायदाद न थी। हम दोनों में परस्पर बहसें होती रहती थीं। मैं जमींदारी की बुराई करता, उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाली जोंक और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बंजा कहता। वो जमींदारों का पक्ष लेता, पर स्वभावतः उसका पहलू कुछ कमजोर होता था, क्योंकि उसके पास जमींदारों के अनुकूल कोई दलील न थी। मैं इस वाद विवाद की गर्मा गर्मी में अक्सर तेज हो जाता और लगने वाली बातें कह जाता, लेकिन ईश्वरी हार कर भी मुस्कुराता रहता था। मैंने उसे कभी गर्म होते नहीं देखा। शायद इसका कारण यह था कि वो अपने पक्ष की कमजोरी समझता था। नौकरों

से वो सीधे मुंह बात न करता था। अमीरों में जो एक बेदर्दी और उद्दंडता होती है उसका उसे भी प्रचुर भाग मिला था। दोस्तों से और विशेषकर मुझसे उसका व्यवहार सौहार्द और नम्रता से भरा होता था। शायद उसकी जगह मैं होता तो मुझ में भी वही कठोरताएं पैदा हो जाती जो उसमें थी, क्योंकि मेरा लोक प्रेम सिद्धांतों पर नहीं निजी दशाओं पर टिका हुआ था। लेकिन वो मेरी जगह होकर भी शायद अमीर ही रहता, क्योंकि वो प्रकृति से ही विलासी और ऐश्वर्य प्रिय था। अब की दशहरे की छुट्टियों में मैंने निश्चय किया कि घर न जाऊंगा। मेरे पास किराए के लिए रुपए न थे और न मैं घर वालों को तकलीफ देना चाहता था। इसके साथ ही परीक्षा का भी ख्याल था, अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी था और घर जाकर

परीक्षा का भी ख्याल था, अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी था और घर जाकर कौन पढ़ता है। लेकिन जब ईश्वरी ने मुझे अपने घर चलने का न्योता दिया तो मैं बिना आग्रह के राजी हो गया। उसने इसके साथ ही कहा, लेकिन भाई एक बात का ख्याल रखना, वहां अगर जमींदारों की निंदा की तो मामला बिगड़ जाएगा और मेरे घर वालों को बुरा लगेगा। मैंने कहा, तो क्या तुम समझते हो कि मैं वहां जाकर कुछ और हो जाऊंगा? हाँ, मैं तो यही समझता हूं, उसने जवाब दिया। तो मैंने कहा, तो तुम गलत समझते हो। ईश्वरी ने इसका कोई जवाब न दिया। कदाचित उसने इस मामले को मेरे विवेक पर छोड़ दिया और बहुत अच्छा किया। अगर वो अपनी बात पर अड़ता तो मैं भी जिद पकड़ लेता। सेकंड क्लास तो क्या, मैंने कभी इंटर क्लास में भी सफर न किया था। अब की सेकंड क्लास में सफर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गाड़ी तो 9 बजे रात को आती थी, पर यात्रा के हर्ष में हम शाम को ही स्टेशन जा पहुंचे। कुछ देर इधर उधर सैर करने के बाद रिफ्रेशमेंट रूम में जाकर हम लोगों ने भोजन किया। मेरी वेशभूषा और रंग ढंग से पारखी खानसामों को यह समझने में देर न लगी कि मालिक कौन है और पिछलग्गू कौन, लेकिन न जाने मुझे उनकी गुस्ताखी बुरी लग रही थी। पैसे ईश्वरी की जेब से गए, एक अठन्नी तो चलते समय ईश्वरी ने ही दे दी। मुझे भोजन में कुछ स्वाद न मिला, वो भेद मेरे ध्यान को संपूर्ण रूप से अपनी ओर खींचे हुए था। गाड़ी आई, हम दोनों सवार हुए। खानसामों ने ईश्वरी को सलाम किया, मेरी ओर देखा भी नहीं। गाड़ी चली, डाक थी, प्रयाग से चली तो प्रतापगढ़ जाकर रुकी। एक आदमी ने हमारा कमरा खोला, मैं तुरंत चिल्ला उठा, दूसरा दर्जा है, दूसरा दर्जा, सेकंड क्लास। उस मुसाफिर ने डब्बे के अंदर आकर मेरी ओर एक विचित्र उपेक्षा की दृष्टि से देखकर कहा, जी हाँ, सेवक भी इतना समझता है, और बीच वाले बर्थ पर जाकर बैठ गया। मुझे कितनी लज्जा आई कह नहीं सकता। भोर होते होते हम लोग मुरादाबाद पहुंचे। स्टेशन पर कई आदमी हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे, 2 भद्र पुरुष थे, 5 बेगार। बेगारों ने हमारा लगेज उठाया, दोनों भद्र पुरुष पीछे पीछे चल दिए। दोनों ने मेरी ओर अपरिचित नेत्रों से देखा, मानो कह रहे हैं, तुम कौवे होकर हंस के साथ कैसे। दोनों सज्जनों ने ईश्वरी से पूछा, ये बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं? ईश्वरी ने जवाब दिया, हाँ साथ पढ़ते भी हैं और साथ रहते भी हैं। यूं कहिए कि आप ही की बदौलत मैं इलाहाबाद में पढ़ा हुआ हूँ, नहीं तो कब का लखनऊ चलाया होता। अब की बार मैं इन्हें घसीट लाया, इनके घर से कई तार आ चुके थे मगर मैंने इनकारी जवाब दिलवा दिए। आखिरी तार तो अर्जेंट था, जिसकी फीस 4 आने प्रति शब्द है, पर यहां से भी इसका जवाब इनकारी ही गया। दोनों सज्जनों ने मेरी ओर चकित नेत्रों से देखा, आतंकित हो जाने की चेष्टा करते हुए जान पड़े। रियासत अली ने अर्ध शंका के स्वर में कहा, लेकिन आप बड़े सादे लिबास में रहते हैं। ईश्वरी ने शंका निवारण की, महात्मा गांधी के भक्त हैं साहब, खद्दर के सिवा कुछ पहनते ही नहीं, पुराने सारे कपड़े जला दिए। यूं कहो कि राजा हैं, 2.5 लाख सालाना की रियासत है, पर आपकी मूरत तो देखो, मालूम होता है अभी अनाथालय से पकड़कर आए हैं। राम हरक बोले, अमीरों का ऐसा स्वभाव बहुत कम देखने में आता है, कोई भांप ही नहीं सकता। मैं मन में कटा जा रहा था, पर न जाने क्या बात थी कि ये सफेद झूठ उस वक्त मुझे हास्यास्पद न जान पड़ा। उसके प्रत्येक वाक्य के साथ मानो मैं उस कल्पित वैभव के समीपतर आता जाता था। मैं शहसवार नहीं हूँ, हाँ लड़कपन में कई बार लद्दू घोड़ों पर सवार हुआ हूँ। यहाँ देखा तो 2 कलाराज घोड़े हमारे लिए तैयार खड़े थे, मेरी तो जान ही निकल गई। सवार तो हुआ पर बोटियां कांप रही थीं। मैंने चेहरे पर शिकन न पड़ने दिया, घोड़े को ईश्वरी के पीछे डाल दिया। खैरियत ये हुई कि ईश्वरी ने घोड़े को तेज न किया, वरना शायद मैं हाथ पांव तुड़वा कर लौटता। संभव है ईश्वरी ने समझ लिया हो कि ये कितने पानी में है। ईश्वरी का घर क्या था, किला था किला, इमाम बाड़े का सा फाटक, द्वार पर पहरेदार टहलता हुआ, नौकरों का कोई हिसाब नहीं, एक हाथी बंधा हुआ। ईश्वरी ने अपने पिता चाचा ताऊ सबसे मेरा परिचय कराया, और उसी अतिशयोक्ति के साथ ऐसी हवा बांधी कि कुछ न पूछिए। नौकर चाकर ही नहीं, घर के लोग भी मेरा सम्मान करने लगे। जब जरा एकांत हुआ तो मैंने

से कहा, तुम बड़े शैतान हो यार, मेरी मिट्टी क्यों पलीद कर रहे हो। ईश्वरी ने सुदृढ़ मुस्कान के साथ कहा, इन गधों के सामने यही चाल जरूरी थी, वरना सीधे मुंह बोलते भी नहीं। जरा देर बाद एक नाई हमारे पांव दबाने आया। ईश्वरी ने मेरी ओर इशारा करके कहा, पहले कुंवर साहब के पांव दबा, मैं चारपाई पर लेटा हुआ था। मेरे जीवन में ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि किसी ने मेरे पांव दबाए हों। मैं इसे अमीरों के चोंचले, रईसों का गधापन और बड़े आदमियों की मुटमर्दी और न जाने क्या क्या कहकर ईश्वरी का परिहास किया करता, और आज मैं पोतड़ों का रईस बनने का स्वांग भर रहा था। इतने में 10 बज गए। पुरानी सभ्यता के लोग थे, नई रोशनी अभी केवल पहाड़ की चोटी तक ही पहुंच पाई थी। अंदर से भोजन का बुलावा आया, हम स्नान करने चले गए। मैं हमेशा अपनी धोती खुद छांट लिया करता हूँ, मगर यहाँ मैंने ईश्वरी की ही भांति अपनी धोती भी छोड़ दी। अंदर भोजन करने चले। होटल में जूते पहन मेज पर डटते थे, यहाँ पांव धोना आवश्यक था। सेवक पानी लिए खड़ा था। ईश्वरी ने पांव बढ़ा दिए, सेवक ने उसके पांव धोए, मैंने भी पांव बढ़ा दिए, सेवक ने मेरे पांव भी धोए। मेरा वो विचार न जाने कहां चला गया था। सोचा था वहां देहात में एकाग्र होकर खूब पढ़ेंगे, मगर वहां सारा दिन सैर सपाटे में कट जाता था। नौकरों का एक जत्था हमेशा घेरे रहता, अपने हाथ पांव को हिलाने की कोई जरूरत नहीं, केवल एक जबान हिला देना काफी है। मैं महात्मा गांधी का कुंवर चेला मशहूर था, भीतर से बाहर तक मेरी धाक थी। मैं ईश्वरी से भी ज्यादा नाजुक दिमाग बन गया था, या बनने पर मजबूर किया गया था। एक दिन सचमुच यही बात हो गई। ईश्वरी घर में थे, शायद अपनी माता से कुछ बातचीत करने में देर हो गई। यहाँ 10 बज गए। मेरी आंखें नींद से झपक रही थी, मगर बिस्तर कैसे लगाऊं? कुंवर जो ठहरा। 11:30 बजे मेहरा आया, बड़ा मुंह लगा नौकर था। घर के धंधों में मेरा बिस्तर लगाने की उसे सुधि ही ना रही। अब जो याद आई तो भागा हुआ आया। मैंने ऐसी डांट बताई कि उसने भी याद किया होगा। ईश्वरी मेरी डांट सुनकर बाहर निकल आया और बोला, तुमने बहुत अच्छा किया, ये सब हरामखोर इसी व्यवहार के योग्य हैं। इसी तरह ईश्वरी एक दिन एक जगह दावत में गया हुआ था। शाम हो गई पर लैंप न चला। लैंप मेज पर रखा हुआ था, दिया सिलाई भी वहीं थी, लेकिन ईश्वरी खुद कभी लैंप नहीं जलाता, फिर कुंवर साहब कैसे जलाएं? मैं झुंझला रहा था। समाचार पत्र आया रखा हुआ था, जी इधर लगा हुआ था पर लैंप नदारत। देवयोग उसी वक्त मुंशी रियासत अली आ निकले, मैं उन्हीं पर उबल पड़ा। ऐसी फटकार बताई कि बेचारा उल्लू हो गया। रियासत अली ने कांपते हुए हाथों से लैंप जला दिया। वहां एक ठाकुर अक्सर आया करता था, कुछ मनचला आदमी था। मुझे महात्मा जी का चेला समझकर मेरा लिहाज करता था, पर मुझसे कुछ पूछते संकोच करता था। एक दिन मुझे अकेला देखकर आया और हाथ बांधकर बोला, सरकार तो गांधी बाबा के चेले हैं ना, लोग कहते हैं कि यहाँ सुराज हो जाएगा तो जमींदार न रहेंगे। मैंने शान जमाई, जमींदारों के रहने की जरूरत ही क्या है, ये लोग गरीबों का खून चूसने के सिवा करते क्या हैं? ठाकुर ने फिर पूछा, तो क्या सरकार सब जमींदारों की जमीन छीन ली जाएगी? मैंने कहा, बहुत से लोग खुशी से दे देंगे, जो लोग खुशी से न देंगे उनकी जमीन छीननी ही पड़ेगी। हम लोग तो तैयार बैठे हुए हैं, जो ही सुराज आएगा अपने इलाके असामियों के नाम हिब्बा कर देंगे। मैं कुर्सी पर पांव लटकाए बैठा था। ठाकुर मेरे पांव दबाने लगा, फिर बोला, आजकल जमींदार लोग बड़ा जुल्म करते हैं सरकार, हमें भी हुजूर अपने इलाके में थोड़ी सी जमीन दे दें तो चलकर वहीं आपकी सेवा में रहें। मैंने कहा, अभी तो मेरा कोई अख्तियार है नहीं भाई, लेकिन ज्यों ही अख्तियार मिला मैं सबसे पहले तुम्हें बुलाऊंगा, तुम्हें मोटर ड्राइवरी सिखाकर अपना ड्राइवर बना लूंगा। सुना उस दिन ठाकुर ने खूब भंग पी और अपनी स्त्री को खूब पीटा और गांव के महाजन से लड़ने पर तैयार हो गया। छुट्टी इस तरह तमाम हुई और हम फिर प्रयाग चले। गांव के बहुत से लोग हम लोगों को पहुंचाने आए। ठाकुर तो हमारे स्टेशन तक आया। मैंने भी अपना पार्ट खूब सफाई से खेला और अपनी कुबेरोचित विनय और देवत्व की मुहर हरेक हृदय पर लगा दी। जी तो चाहता था हरेक को अच्छा इनाम दो, लेकिन यह सामर्थ कहाँ थी। वापसी टिकट था ही, केवल गाड़ी में बैठना था, पर गाड़ी आई तो ठसा ठस भरी हुई। दुर्गा पूजा की छुट्टियां भोग कर सभी लोग लौट रहे थे। सेकंड क्लास में तिल रखने की जगह न थी।

0: इंटर क्लास की हालत उससे भी बदतर। ये आखिरी गाड़ी थी, किसी तरह रुक न सकते थे। बड़ी मुश्किल से तीसरे दर्जे में जगह मिल गई। हमारे ऐश्वर्य ने वहां अपना रंग जमा लिया, मगर मुझे उसमें बैठना बुरा लग रहा था। आए थे आराम से लेटे लेटे, जा रहे थे सिकुड़े हुए, पहलू बदलने की भी जगह न थी। एक आदमी जिसकी पीठ पर बड़ा सा गट्ठर बंधा था कलकत्ते जा रहा था, कहीं गठरी रखने की जगह न मिलती थी, पीठ पर बांधे हुए था। इससे बेचैन होकर बार बार द्वार पर खड़ा हो जाता। मैं द्वार के पास ही बैठा था, उसका बार बार आकर मेरे मुंह को अपनी गठरी से रगड़ना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं कुछ देर जब्त किए बैठा रहा, एकाएक मुझे क्रोध आ गया। मैंने उसे पकड़कर धकेल दिया और दो तमाचे जोर जोर से लगाए। उसने आंख निकालकर कहा, क्यों मारते हो बाबूजी, हमने भी किराया दिया है। मैंने उठकर दो तीन तमाचे और जड़ दिए। गाड़ी में तूफान आ गया, चारों ओर से मुझ पर बौछार पड़ने लगी। अगर इतने नाजुक मिजाज हो तो अव्वल दर्जे में क्यों नहीं बैठे? कोई बड़ा आदमी होगा, अपने घर का होगा, मुझे इस तरह मारते तो दिखा देता। क्या कसूर किया था बेचारे ने? गाड़ी में सांस लेने की जगह नहीं, खिड़की पर जरा सांस लेने खड़ा हो गया तो इस पर इतना क्रोध? अमीर होकर क्या आदमी अपनी इंसानियत खो देता है? ये सभी बातें वहां लोग कहते रहे। एक ग्रामीण बोला, दफ्तरन मा घुसन तो पावत नहीं, उस पर इतना मिजाज। ईश्वरी ने अंग्रेजी में कहा, What an idiot you are, Bill। और मेरा नशा कुछ कुछ उतरता हुआ मालूम होता था।
1: अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी नशा। वाचन स्वर था अमरकांत दुबे का। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया विजय दीपक छिब्बर ने।
2: सुनो कहानी।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के एक कार्यक्रम, जिसे हमारे मुंबई केंद्र से प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम एक ही कलाकार से।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
3: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
2: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
3: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
2: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
0: प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम एक ही कलाकार से, और मैं हूं आपका अपना रेडियो हमसफर गिरिजेश निषाद। सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी फिल्म संगीत के उस महान संगीतकार की, जिसने भारतीय फिल्म संगीत को एक नई दिशा दी, जिनकी धुनों में पश्चिमी संगीत का रंग भी था और भारतीय मिट्टी की महक भी। हम बात कर रहे हैं महान संगीतकार राहुल देव बर्मन यानी पंचम दा के बारे में। तो आइए, उन्हीं का संगीतबद्ध किया हुआ फिल्म यादों की बारात का गाना पहुंच चुका है आप तक।

27 जून, जी हाँ आज भी 27 जून ही है। 27 जून 1949 को कोलकाता में जन्मे राहुल देव बर्मन, महान संगीतकार सचिन देव बर्मन और मीरा देव बर्मन के पुत्र थे। जी दोस्तों, बचपन से ही संगीत उनके जीवन का हिस्सा था। कहा जाता है कि बचपन में ही उन्होंने कई धुनें बनानी शुरू कर दी थी। उन्हें पंचम नाम कैसे मिला, इसके पीछे कई रोचक किस्से हैं। एक लोकप्रिय मान्यता है कि वे बचपन में रोते समय पा स्वर में आवाज निकालते थे, इसलिए अभिनेता अशोक कुमार ने उन्हें प्यार से पंचम कहना शुरू कर दिया। इस तरह से वो पंचमदा कहलाए। फिलहाल अगला गीत हमने आप तक पहुंचा दिया है पंचमदा की संगीतबद्ध फिल्म हम किसी से कम नहीं फिल्म का ये गाना। आवाज है आशा भोसले और मोहम्मद रफी की।

0: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। मन की बात।
1: दोस्तों, 1960 और 70 के दशक में जब हिंदी फिल्म संगीत एक नए दौर में प्रवेश कर रहा था, तब पंचम दा ने गिटार, सैक्सोफोन, इलेक्ट्रॉनिक वाद्यों और पश्चिमी बीट्स का ऐसा जादुई प्रयोग किया कि संगीत की दुनिया में भूचाल सा आ गया। वे हिंदी सिनेमा के सबसे प्रयोगधर्मी संगीतकारों में गिने जाते हैं। फिल्म तीसरी मंजिल का संगीत उनकी पहली बड़ी सफलता माना जाता है। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो आइए सुनते हैं फिल्म तीसरी मंजिल का वही गाना जिसे आवाज दे रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी।

0: अच्छा दोस्तों, अभी बहुत सारी बातें करनी बाकी हैं और गीत भी सुनवाने हैं। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: आपके अपने आकाशवाणी अयोध्या से सुनिए सुनैन आई हॉस्पिटल द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आई केयर फॉर यू, कल रविवार को शाम 5:30 से।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है कार्यक्रम एक ही कलाकार से, और हमारे आज के कलाकार हैं संगीतकार आरडी बर्मन यानी पंचमदा। दोस्तों पंचमदा के बारे में किसी ने बहुत अच्छा ही कहा है, सुरों में जो जादू खोल दे वही फनकार कहलाता है, जो हर दिल की धड़कन बन जाए वही पंचमदा कहलाता है। जी हाँ, जब भी पंचमदा का नाम आता है किशोर कुमार, आशा भोसले, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की याद खुद बाखुद आ जाती है। इन कलाकारों के साथ मिलकर उन्होंने सैकड़ों यादगार गीत दिए। तो आइए सुनते हैं एक और गीत फिल्म लव स्टोरी से, आवाज है आशा भोसले की।

दोस्तों हम बात कर रहे हैं पंचम दा के बारे में और बात आ जाए आशा भोसले की तो बात कुछ और ही हो जाती है। जी हाँ, आशा भोसले के साथ उनकी अंतिम क्षमा कीजिएगा संगीत यात्रा और बाद में जीवन साथी के रूप में उनका रिश्ता भी काफी चर्चित रहा। यानी दोनों लोगों ने बाद में विवाह कर लिया था। पंचम दा ने अमर प्रेम यादों की बारात हम किसी से कम नहीं, शोले, आंधी, किनारा, मासूम सागर और 1942 ए लव स्टोरी जैसी अनेक फिल्मों में कालजयी संगीत दिया। तो अब अगला गीत क्यों ना आपको सुनवा दें आर डी बर्मन और आशा भोसले की ही आवाज में फिल्म कारवां का। जी आर डी बर्मन संगीतकार तो थे ही, कुछ गाने भी उन्होंने गाए।

वो आ गया, देखो

दोस्तों, आर डी बर्मन को 3 बार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीतकार पुरस्कार मिला। उनकी याद में फिल्म फेयर आर डी बर्मन अवार्ड भी शुरू किया गया, जो नए संगीत प्रतिभाओं को दिया जाता है। और अंततः 4 जनवरी 1994 को पंचम दा इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन उनकी धुनें आज भी करोड़ों दिलों में जीवित है। संगीत प्रेमियों के लिए वह केवल एक संगीतकार नहीं बल्कि एक युग है। बेशक वो चला गया, मगर सुरों में बस गया, हर धड़कन में उसका संगीत बस गया। जब जब बजेगी कोई प्यारी सी धुन, पंचम दा का नाम फिर याद आ गया। तो आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म हीरा पन्ना से, जिसे आवाज दे रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर।

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर की गाए इस गाने के साथ ही हमारा आज का फिल्मी गीतों का कार्यक्रम एक ही कलाकार से जो आधारित था संगीतकार आर डी बर्मन यानी पंचम दास से। तो अब इस कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत।
1: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com
2: Hello.
3: Hello. Telephone number.
4: My number is
5: 7376804090। लाइव अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 बजे से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 बजे तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।
0: ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचारों का बुलेटिन समाचार संध्या प्रसारित किया जाएगा।
6: प्रतीक्षा कीजिए।
7: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने कथित दान चोरी मामले में नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया। अमेरिका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
8: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। यह भारत और सेशल्स की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की।

0: उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। इससे सेशल्स के विकास और सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्याना, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। ये पोत सामुदायिक संपर्क पहल भी करेगा, जिसमें चिकित्सा शिविर लगाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने ये पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामलों में SIT जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में MSME दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है और उच्च गुणवत्ता के मानक बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि MSME क्षेत्र भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में सबसे सशक्त स्तंभ बन गया है।
2: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
1: इस अवसर पर MSME मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय बजट से इस क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का पता चलता है।
3: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, MSME के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी MSME को आगे ले जाना चाहते हैं।
1: उपराष्ट्रपति ने देश में MSME को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने आज बेंगलुरु के ज्ञान ज्योति सभागार में नाद प्रभु केम्पगौड़ा की 517वीं जयंती के समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि केम्पगौड़ा के दूरदर्शी नेतृत्व से 5 शताब्दियों बाद भी समाज लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि केम्पगौड़ा द्वारा निर्मित झीलें आज भी पेयजल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की

0: अध्यक्षता की। श्री शाह ने केंद्र की कई प्रमुख योजनाओं के लागू होने की समीक्षा की। गृहमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर 3 से 4 गांवों के लिए क्लस्टर स्कूल बनाएं ताकि लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके। गृहमंत्री ने प्रशासन को आदेश दिया कि 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत कार्ड बांटे जाएं। श्री शाह कल गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी ने गठबंधन से अलग होने का कारण बताते हुए आरोप लगाया कि एमडीएमके को कमजोर करने के प्रयास किए गए थे। एमडीएमके के 2 विधायक हैं। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित प्रश्न पत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्न पत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। आरोपी टीईटी के प्रश्न पत्र को कथित तौर पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मोबाइल फोन, नकदी और अगले दिन होने वाली परीक्षा के लिए टीईटी प्रश्न पत्रों के 4 सेट बरामद किए हैं। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों ने जब्त किए गए प्रश्न पत्रों की जाँच की और पुष्टि की कि वे मूल प्रश्न पत्र से मेल खाते हैं। सत्यापन के बाद भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कथित 1.5 करोड़ रुपए के सौदे से जुड़े वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने रविवार को होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी। परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। मुंबई से माधुरी पंगे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: केरल में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू ने राज्य में पहला और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और साई जस्टिन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताह पहले हुए संघर्ष विराम को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में अमेरिका और ईरान के बीच कई जवाबी हमले हुए हैं। बृहस्पतिवार को हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरानी हमले के बाद अमेरिका ने ईरान के दक्षिणी तट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने आज क्षेत्र में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये कार्रवाई राजनयिक प्रयासों के लिए खतरा पैदा कर रही है।
2: ब्रिटेन के UKMTO ने बताया कि आज एक टैंकर पर हुए हमले में उसके पुल को नुकसान पहुंचा है, हालांकि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। संयुक्त समुद्री सुरक्षा केंद्र ने हाल की घटनाओं के जवाब में सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ा दिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उन्होंने ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर गोलियां चलाई। इससे संकेत मिलता है कि ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जलमार्ग गलियारों पर फिर अपना नियंत्रण हासिल कर रहा है। इस तनाव के बढ़ने का मूल कारण आपसी अनुपालन में आई कमी है। ईरान ने अमेरिका पर युद्ध विराम का पालन न करने और लेबनान में किए गए वादे के अनुसार संयम न बरतने का आरोप लगाया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: वहीं बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के कई ड्रोन ने देश को निशाना बनाया, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नाम रखा गया है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में आज शाम भारतीय समय अनुसार 7:04 पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया।

0: कंपनियां भारत, पाकिस्तान, चीन, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में इसके झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी झटके महसूस किए गए। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसक क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने कहा कि अब तक कुल दो व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने यह भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। इन पोस्ट में कहा गया है कि श्री सिंह ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में किदांबी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू और रौनक चौहान ने इसराइल के मिशा जिल्मरमैन को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप के सेमीफाइनल में भारत और इंडोनेशिया के बीच मुकाबला जारी है। अहमदाबाद में खेले जा रहे सेमीफाइनल मुकाबले में ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीमों ने दो दो सेट अपने नाम कर लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। अमेरिका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा। और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Seychelles to attend its 50th independence anniversary celebrations as guest of honor. India gifts fast patrol vessel, ambulances, utility vehicles and laser radial boats to Seychelles for its development and security. Prime Minister Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani tomorrow. Sri Ram Janmabhoomi Mandir Trust General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra resign on moral grounds following the donation embezzlement case. Ceasefire between the US and Iran under pressure after a series of retaliatory strikes between the two sides. And in US Open Badminton, India's Devika Sihag, Kidambi Srikant and Ronak Chauhan reach semi-finals in California. Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria this afternoon on a three-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. Mr. Modi appreciated the warm welcome by the President and said that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both nations. A report.
2: Prime Minister Narendra Modi visited the Botanical Garden and attended a tree planting ceremony. During the ceremony, Mr. Modi planted the Coco de Mar plant in the presence of Dr. Hermini. According to the Ministry of External Affairs, the tree planting is part of Ek Ped Maa Ke Naam initiative and reflects the shared India-Seychelles commitment toward

0: Peter the Chinese Taipei is Liao Shu Fu, 21-9, 12-21, 21-8, to stay on course for a possible all-India final. Ronak Chauhan also advanced, beating Israel's Misha Zilberman, 23-21, 21-11. India have reached the quarterfinals of the Badminton Asia Junior Mixed Team Championships with a convincing 2-0 victory over Kazakhstan in their opening Group C match in Yatsushiro, Japan. The girls' doubles pair of Durga Aisha Kandrapu and Kirti Manchala gave India a strong start by defeating Alyssa Kuleshova and Diana Naminova 11-5. Puneet Suresh and Deepti Raj Aditi then edged past Mustafa Malikzan and Alyssa Kuleshova 11-10 to extend India's lead. The Indian team went on to dominate the remaining matches and comfortably sealed the tie. In the FIFA World Cup, Panama will take on England in Group L match at East Rutherford in US tonight. In another Group E fixture, Croatia will face Ghana at Philadelphia in the US. Both matches are scheduled to begin at 2:30 a.m. IST. Earlier, Spain booked their place in the knockout stage with a hard-fought 1-0 victory over Uruguay. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi arrives in Seychelles to attend its 50th independence anniversary celebrations as guest of honor. India gifts fast patrol vessel, ambulances, utility vehicles and laser radial boats to Seychelles for its development and security. Prime Minister Modi to share his thoughts in Man Ki Baat program on Akashvani tomorrow. Sri Ram Janmabhoomi Mandir Trust General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra resign on moral grounds following the donation embezzlement case. Ceasefire between the US and Iran under pressure after a series of retaliatory strikes between the two sides. That is all in the news at 9. Good night.
1: समाचारों का बुलेटिन हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। इस स्टूडियो की घड़ी में 9:15 हुए हैं। प्रस्तुत है गजलों का कार्यक्रम महफिल ए गजल।
2: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
3: बीएड, डीएलएड, बीटीसी, डीएचपी, डीफार्म, बीफार्म और जीएनएम जैसे कोर्सेज में प्रवेश प्रारंभ है। संपर्क करें विदुषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट गौड़ा बसंतपुर कटेहरी अंबेडकर नगर। प्रवेश के लिए कॉल करें 9005141838।
4: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना।
4: टोलकर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं।
5: RHL गोल्ड TMT सरिया 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम की पहली गजल चंदन दास की आवाज में।

0: अवध क्षेत्र का सबसे विश्वसनीय आंखों का अस्पताल, आपका अपना श्रीराम नेत्रालय, अब नियावा रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद में भी उपलब्ध। 60,000 से भी अधिक सफल मोतियाबिंद ऑपरेशन का अनुभव वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर पूजा थापर एवं डॉक्टर संजीव थापर द्वारा संचालित यहां उपलब्ध है अत्याधुनिक रेटिना एवं ग्लूकोमा क्लिनिक की सुविधाएं। साथ ही ये अयोध्या का पहला एसिलोर एक्सपर्ट ऑप्टिकल सेंटर है, जहां चश्मे की जांच की जाती है विश्व स्तरीय ऑटो फोरॉप्टर एवं आई रूलर मशीन द्वारा। बच्चों के लिए खास मायोपिया कंट्रोल क्लिनिक की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आंखों की हर समस्या के लिए श्री राम नेत्रालय, पता नियावा रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद। कॉल करें 91-16-76-46-46।
1: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
2: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
1: अब ECHS से इम्पैनल्ड। आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।

0: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
1: कैशलेस इलाज। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियामा, अयोध्या। कॉल करें 6386907006।
2: अगली गजल हम पहुंचा रहे हैं आप तक सोनाली राठौर की आवाज में।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आंखों के पर्दे की समस्या, मोतियाबिंद, लेजर चिकित्सा या मोटे चश्मों से छुटकारा, 20 वर्षों से आपका अपना सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियामा फैजाबाद अयोध्या। आंखों की सभी समस्याओं का आधुनिक और बेहतर उपचार, हजारों आंखों को नई रोशनी देने वाले प्रख्यात नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल द्वारा संचालित सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियामा फैजाबाद अयोध्या। फोन करें 9838100840।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गजलों का कार्यक्रम महफिल ए गजल, और अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है, प्रस्तुत है सजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो अयोध्या।
4: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय, 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9559242404 और 7800037222।
5: DLED, BTC, DHP, D-Pharm, B-Pharm और GNM जैसे कोर्सेज में प्रवेश प्रारंभ है। संपर्क करें विदुषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट गौड़ा बसंतपुर कटेहरी अंबेडकर नगर। प्रवेश के लिए कॉल करें 9005141838।
3: हवा में घुल गए हैं कुछ ख्याल मेरे, शायद इसी को लोग रेडियो कहते हैं। जी हाँ, रेडियो की इस जादुई तरंग पर आपका हार्दिक स्वागत करता है आकाशवाणी अयोध्या, और आज मैं हूँ आपके साथ गिरिजेश निषाद। दोस्तों, आपको नंबर तो पता ही है, 7376-8090, यही है वो नंबर जिससे आप डायल करके हमसे बातें करते हैं और सुनते हैं अपनी पसंद का गीत। फिलहाल एक श्रोता जो लाइन पर आना चाहते हैं, देखते हैं। हेलो
6: हेलो सर, अरे चाहे कितना बड़ा बदमाश हो सबका काम तमाम कर दूंगा। अजी चाहे कितना बड़ा बदमाश हो सबका काम तमाम कर दूंगा। आकाशवाणी और आप पे और श्रोता पे आ जाए तो सड़क ही जाम कर दूंगा।
3: क्या बात है, आपने शुरुआत आगाज बहुत खूबसूरती से किया। जी आपका नाम जानना चाहेंगे?
6: यस सर, काजल कुमारी।
3: काजल, इससे पहले आपने कितनी बार कॉल की है काजल ने?
6: सर आपसे मुझे पहली बार बात हो रही और कई साल से बात कर चुका मैंने।
3: अच्छा, यानी लगभग 2-3 बार तो बातें हो चुकी होंगी।
6: यस सर
3: जी, आपकी शुरुआत, आपका आगाज वाकई बेहद क्या कहें, तारीफ के काबिल है और चौंकाने वाला भी है। तो काजल जी, क्या करती हैं आप?
6: सर मैं पढ़ाई करती हूँ।
3: पढ़ाई करती हैं, किस क्लास में हैं?
6: सेवन क्लास में।
3: सेवन्थ,

0: सेवेंथ क्लास? आपने सेवेंथ क्लास में बताया अपने आप को पढ़ाई कर रही हैं, ये और भी ज्यादा चौंकाने वाली बात है। और आपने शुरुआत तो जिस तरह से इस कार्यक्रम की वास्तव में अच्छा लगा। और गाना कौन सा सुनना चाहेंगी?
1: साथी फिल्म से।
0: साथी फिल्म का कौन सा गाना?
1: जिंदगी की तलाश में मौत के कितने पास है।
0: गाना बेशक बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है कुमार सानू जी की आवाज में, लेकिन इस गाने में थोड़ा निराशा आवाज है। तो गाने ऐसे सुनिए जो आपको आगे बढ़ने में सहायक हो, है ना काजल जी? कोशिश यही करनी चाहिए, जो निराशावादी बातें हो, निराशावादी गीत संगीत हो, उनसे थोड़ा अपनी दूरी बनाकर रखना चाहिए। अच्छा लगा ये गाना हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और फिर कभी आपसे ढेर सारी बातें होंगी। धन्यवाद, शुक्रिया, फिर फोन करिए। काजल जी ने फोन किया था अयोध्या से, और आप भी कोशिश करते रहिए 73 76 80 40 90।

0: बिल्कुल घबराइए नहीं, बस कोशिश करते रहिए 73-76-80-40-90। और हमारे एक श्रोता देखिए लाइन पर आ चुके हैं, इनसे बातें कर लेते हैं। हेलो हेलो
1: हेलो सर, नमस्ते
0: जी। नमस्कार, आपका नाम?
1: मेरा नाम राकेश है सर।
0: राकेश जी, क्या करते हैं?
1: कुछ नहीं सर, पढ़ाई करते हैं।
0: कुछ नहीं करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं? पढ़ाई थोड़ा ठीक से करिए और कुछ नए शब्द हटा दीजिए हमेशा के लिए, है ना? क्योंकि पढ़ाई करेंगे तो कुछ हासिल कर लेंगे जीवन में, है कि नहीं? तो आज गाना कौन सा सुनेंगे?
1: ये सर कोई भी सुना दीजिए।
0: कोई भी गाना सुनवा दें। अच्छा, गीत संगीत कितना सुनते हैं आप?
1: जी थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं सुनते।

0: पे थोड़ा बहुत सुन लेते हैं।
1: रेडियो सुनते रहते हैं
0: जी।
1: रेडियो में आपके लिए बहुत कुछ होता है, युवाड़ी कार्यक्रम आप ही लोगों के लिए होता है
0: ये सर।
1: सुनते हैं
0: ये सर?
1: हाँ सुना करिए, क्योंकि उसमें आपके लिए जानकारियां होती हैं और बहुत सारे अवसर जो आगे भविष्य में आपको लेने हैं वो उसकी भी जानकारी दी जाती है। तो खैर आपकी पसंद का गाना हम पहुंचा रहे हैं, फिर फोन करिएगा। धन्यवाद।

आपकी बात कार्यक्रम में कार्यक्रमों से संबंधित प्रशंसा शिकायत और सुझाव व्हाट्सएप नंबर 830-321-9911 पर अपने नाम और पते के साथ सेंड कर दें। आपके संदेशों में लिखी प्रतिक्रिया को हम शामिल करेंगे माह के पहले तीसरे और पांचवें सोमवार को रात 9:15 से। और हाँ, कार्यक्रम प्रसारित होने से पहले अपने मैसेज रविवार के दिन शाम तक अवश्य भेज दें। अपने मैसेज में सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए AKB यानी प्रोग्राम का शॉर्ट नेम जरूर लिखें।

0: की पावन नगरी और आपके अपने शहर की प्यारी सी धड़कन।
1: जी हाँ, यही तो है हम सबका आकाशवाणी अयोध्या, जहाँ हर शब्द में है अपनापन, हर कार्यक्रम में है अपनी संस्कृति की छाप।
0: लोक संस्कृति के गीत, नई पीढ़ी की बात, किसान महिला और बच्चों की वो सारी जरूरी बातें, खबरें और जानकारियाँ जो है आपके लिए जरूरी।
1: तो जुड़िए हर दिन हर पल आपके अपने आकाशवाणी अयोध्या से, क्योंकि यही है हमारी आवाज़, हमारी पहचान।
0: आकाशवाणी अयोध्या, अपना रेडियो, अपनी धड़कन, FM 101.9 या फिर न्यूज ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर।
2: मन का रेडियो बजने दे जरा।
3: जी हाँ दोस्तों, हर कोई सुन रहा है पर समझता कोई नहीं। रेडियो ही है जो खामोशी भी सुना देता है। और हमारे एक श्रोता लाइन पर आ चुके हैं, तो इनसे बातें कर लेते हैं। हेलो हेलो
4: हेलो
3: जी, बोलिए।
4: अभी तो बताया था नाम, भानु प्रताप जिला बहराइच से सर।
3: जी भानु प्रताप जी, आप बहराइच के रहने वाले हैं या बहराइच में ही रहते हैं?
4: जी जी,
3: बहराइच में। बोलिए बोलिए।
4: अयोध्या में है सर।
3: अच्छा, आप इस समय अयोध्या में हैं और रहने वाले बहराइच के हैं?
4: जी जी जी, आप बिहारी करते हैं सर।
3: अच्छा, तो अयोध्या में कितने दिनों से रह रहे हैं?
4: सर एक महीना डेढ़ महीना हो गया, वैसे आवाज आते 3 साल से सर।
3: अच्छा अच्छा
4: जी,
3: तो आपको अयोध्या अयोध्या कैसा लगता है? जी
4: जी, वो फिल्म का अगर गाना ना हो नदी पार का, तो बड़े घर की बेटी का गाना सुना दीजिए सर।
3: बड़ा मुश्किल होगा। इससे पहले आपसे हमारी बात हो चुकी है, तो हाँ, जो गीत इससे पहले आपकी बात हुई थी वही गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिलहाल। तो भानु प्रताप जी, आप अयोध्या में रह रहे हैं कितने, लगभग एक महीने से रह रहे हैं, 3 साल से रह रहे बल्कि आप, तो 3 सालों में आपने कैसा महसूस किया, यहाँ कैसा लगता है आपको?
4: सर यहाँ दिहाड़ी मजदूरी किया जाता है और यहाँ अच्छा भी लगता है, साथ में घूमने के लिए।
3: नहीं, आप यहाँ अकेले रह रहे हैं या परिवार के साथ हैं?
4: जी नहीं, अकेले हैं।
3: अकेले हैं,
4: परिवार से आउट में जा रहे सर।
3: चलिए तो ठीक है, फिर फोन करिएगा, फिर बातें होंगी। और फिल्म धर्मवीर का गाना हमने पहुंचा दिया है आप तक, और अपने सुनने वालों को ये भी बता दें कि हमें अर्जुन सोनकर जी ने फोन किया था, उनकी कॉल ड्रॉप हो गई, और उससे पहले एक धर्मेंद्र जी ने भी फोन किया था, उनकी भी कॉल ड्रॉप हो गई। तो जो कॉल हमें मिली, जिनसे बातें हुई, उनकी पसंद का गीत हमने पहुंचा दिया है आप सभी तक। आप भी कोशिश करिए 73-76-80-40-90।

0: जी हाँ दोस्तों, कई दिनों से ऐसा हो रहा है कि लोगों की कॉल आती है लेकिन किन्हीं कारणों से ड्रॉप हो रही है। एक कॉल हमारे पास आई थी स्वाति सिंह की, उनकी कॉल ड्रॉप हो गई, और एक कॉल हमारे पास मौजूद है, इनसे बातें कर लेते हैं। हेलो।
1: हेलो सर, नमस्ते।
0: जी नमस्कार, आपका शुभ नाम
1: सर? हम तिरदेव लाइट वाले हरिपुर जलालाबाद से बोली थी
0: जी। जलालाबाद ये जिला कौन सा है?
1: जिला जो धारापुर में लगभग सलारपुर के सर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, यानी आप अयोध्या से ही हैं?
1: जी, 6 किलोमीटर के समय है।

0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल मालूम है। तो त्रिदेव जी बताइए गाना कौन सा सुनेंगे?
1: हम तो सनम रेखा सुनावा।
0: बिल्कुल सुना देंगे। कौन सा गाना?
1: वही हरे दुपट्टे वाली का कोनो गाना वाना इसे है।
0: विपिन सचदेव की आवाज में। ये पिक्चर आपने देखा था?
1: बहुत पहले पिक्चर आई थी सलमान खान के।
0: तो फिल्में देखने का आपको शौक है? अरे भैया जिंदगी भर आप फिल्में देखो।
1: अरे गुरु जी 47 साल में का देखा।
0: तब आखिर जिम्मेदारियों कुछ होते ना?
1: ना
0: घर परिवार है ना,
1: एकदम।
0: तो कब तक फिल्म देखो फिर? चलिए कम से कम ये शौक जिंदा है कि आप रेडियो सुन रहे हो और अपनी पसंद का गाना सुनने का मिल जा रहा है ना?
1: जी,
0: तो ठीक है, तो आपकी पसंद का गाना हम पहुंचा रहे हैं और फिर फोन करिएगा, फिर बातें होंगी।
1: ठीक सर, एकदम
0: धन्यवाद।
2: ओ हरे दुपट्टे वाले।

0: जाना। फिलहाल तो दोस्तों हमें आपसे मतलब है, और हो कोई भी, हमें तो चाहिए बस अपने अच्छे कॉलर, अच्छे श्रोता जो हमारे से अच्छे से बात कर सकें। और हमारे एक श्रोता लाइन पर आ चुके हैं, इनसे बातें कर लेते हैं। हेलो।
1: हेलो
0: जी, आपका शुभ नाम?
1: सर सौरभ तिवारी सर।
0: जी सौरभ जी, स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। कहाँ से फोन किया आपने?
1: सर अयोध्या।
0: अयोध्या से?
1: मोहपुरा।
0: अच्छा अच्छा, मोहपुरा से। तो आप अयोध्या के ही रहने वाले हैं या बाहर से कहीं से आए हैं?
1: नहीं, हम रहने वाले सर
0: प्रॉपर
1: अंबेडकर नगर से।
0: अंबेडकर नगर से? यहाँ इंजीनियर है। तो किस तरह का काम आपने ले रखा है इस समय?
1: सर गेट बना रहे हैं, जितने भी गेट है, एंट्रेंस गेट है राम जन्मभूमि।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, इस समय भीड़ भाड़ की क्या स्थिति है?
1: भीड़ भाड़ तो है सर, अच्छी बात, भीड़ भाड़ तो हमेशा ही रहती है।
0: नहीं, इस समय चूंकि धूप बहुत तेज हो रही है और गर्मी की वजह से लोग हो सकता है कुछ कम आ रहे हों।
1: नहीं सर, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आप फेरी बाजार पार्किंग में गाड़ी खड़ी है, वहां से रख ले, उसके आगे जितनी भी है कैनोपीज और जर्मन हैंगर, तमाम चीजें ट्रस्ट ने लगवा रखी
0: है। जी चलिए, अच्छी बात है। तो सौरभ जी, आज गाना कौन सा सुनेंगे आप?
1: सर गाना है धूप में निकला न करो रूप की रानी, भूरा रंग काला न करो मैं।
0: आपको आपको पता है कि ये गाना किस फिल्म का है?
1: सर फिल्म का नाम तो नहीं पता है सर।
0: नहीं पता है, इत्तेफाक से हमें इस फिल्म का नाम मालूम था, इसलिए गाना निकाल दिया है हमने। और आम तौर पर हम लोग फिल्म का नाम सुनने के बाद ही गाना निकाल पाते हैं, है ना? फिल्म सौरभ जी, आपकी पसंद गाना हमने आप तक पहुंचा दिया है, फिर फोन करिएगा, फिर बातें होंगी।
1: धन्यवाद
0: जी, शुक्रिया फोन करने के लिए। और दोस्तों, इससे पहले एक कॉल हमारे पास आई थी, नाम था पूनम, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी कॉल कट गई। तो आप भी कोशिश करते रहिए, जैसे आपकी कॉल आती है हम आपसे बातें करते हैं। और सुनिए फिल्म गिरफ्तार का ये गाना।

0: जी दोस्तों, बहुत सारे हमारे श्रोता ऐसे होते हैं कि अपनी पसंद का गाना तो बता देते हैं लेकिन फिल्म उन्हें नहीं मालूम होती है, और ऐसे में बड़ी मुश्किल होती है हम सभी के लिए। तो फिलहाल आप कोशिश यही करें कि पहले फिल्म का नाम बताएं और उसके बाद फिर अपनी पसंद का गाना बताएं।
1: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोकगीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
2: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
0: दोस्तों सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से और हमारे एक श्रोता लाइन पर हैं, इनसे बातें कर लेते हैं। हेलो।
3: हेलो
0: जी, आपका शुभ नाम।
3: हाँ सर नमस्ते, अंकलिमा बोल रहे हैं जिला।
0: जी सीमा जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। कितनी बार आपने इससे पहले कोशिश की है और आपकी कॉल लगी है कि नहीं?
3: नहीं लगा था सर।
0: लगा था
3: लगे, फिर फोन ही नहीं लगा।
0: और क्या करते हैं सीमा जी?
3: स्कूल के।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
3: बच्चों का खाना बनाते हैं।
0: अरे क्या बात है, बहुत अच्छा काम करती हैं। ये तो एक तरह से सेवक का काम है और बच्चों की सेवा, और साथ ही आपको इससे आय का भी जरिया बनता है। खैर आज गाना कौन सा सुनना चाहेंगी? आप गाने की बोल बता रहे हैं, फिल्म का नाम बताइए।
3: सर आप कोई भी सुनवा दीजिए।
0: कोई भी सुना दें, ये तो कोई बात नहीं हुई।
3: कुछ लोगों का नाम देना चाहेंगे।
0: गाना अभी क्लियर नहीं हुआ और नाम पहले ले रही है। जी नाम ले लीजिए।
3: सर घर में हमारे बड़े भैया पवन हैं और हमारी भाभी ने छोटी बहन पारुल है, और छोटा वाला भाई गगन, पापा जी हैं और हम हैं।
0: अच्छा तो सभी लोग, सभी लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं
3: सर? हाँ सर।
0: अच्छा ये कार्यक्रम आप कितने दिनों से सुन रही हैं?
3: सर बहुत दिन से सुन रहे हैं।
0: दो दिन से
3: नहीं, बहुत दिन से सुन रहे हैं।
0: बहुत दिन से सुन रही हैं, तो कोई कार्यक्रम अच्छा भी लगता है आपको?
3: ज्यादा सुनते हैं। पापा सुनते हैं ज्यादा।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए हम आपको सुनवा रहे हैं एक बहुत अच्छा सा गीत लता मंगेशकर की आवाज में, और शायद ये गाना भी आपको पसंद आएगा। जी पुरानी फिल्म का है लेकिन

0: जी दोस्तों, बहुत सारी कॉल्स हमारे पास आ रही है लेकिन कट जा रही है।
1: और देखिए ये कॉल भी कट गई। ये कॉल आई थी कपिल देव जी की और अगली कॉल के लिए हम प्रतीक्षा करते हैं, देखते हैं किसकी हो सकती है। हेलो।
2: हेलो
0: जी, आपका शुभ नाम?
2: जी सर, अमित कुमार बोल रहे हैं सर।
0: अमित कुमार?
2: जी सर।
0: जी अमित जी, कहाँ से फोन किया आपने?
2: जी सर, हमारा घर सर सुल्तानपुर है और रहते हैं रेहरा बाजार, जिला बलरामपुर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तो अमित जी गाना बता दीजिए, उसके बाद फिर बातें करते हैं।
2: सर हेलो,
0: बताइए।
2: सर नदिया के पार का सुना दीजिए।
0: नदिया के पार का गाना हमारे पास शायद आज नहीं है, क्योंकि हमने खोजने की कोशिश की और हमें मिला नहीं, तो दूसरा कोई गाना बता दीजिए।
2: जी सर,

0: और फिल्म का नाम ही नहीं मालूम
1: सर, कोई सुना दीजिए जो अच्छा लगे आपको।
0: ये तो कोई बात ही नहीं हुई।
1: मतलब आपकी तबीयत ठीक है सर?
0: बिल्कुल ठीक है। आप अपनी तबीयत के बारे में बताइए, आपकी तबीयत कैसी है? क्योंकि आपकी पसंद का गाना ही नहीं मिला तो फिर आपकी तबीयत ज्यादा ज्यादा जरूरी है।
1: जी सर, वहीं पे ससुराल है हमारा सर, वहीं अयोध्या में ही।
0: अच्छा अच्छा, तो फिर आपका आना जाना लगा रहता है? हाँ हाँ
1: जी जी, वहीं पे।
0: तो आपका आना जाना लगा रहता है?
1: जी जी सर, जी सर, बराबर आते जाते रहते हैं।
0: तो
1: ये मिसेज हमारी एनम है ना?
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: जी सर, तो यहीं रेरा में ही रहते हैं, रेरा ब्लॉक बलरामपुर। जी सर, तो यहाँ से आना जाना लगा रहता है।
0: आप खुद क्या करते हैं
1: सर?
0: आप क्या करते हैं
1: सर? अभी दरअसल हम एडवोकेट हैं सर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: प्रैक्टिस अभी नहीं कर पा रहे हैं, बाकी सब बार काउंसिल वाउंसिल का सब वो सब देख
0: हैं। बस यही, आपसे तो हमने आपके बारे में कुछ पूछा ही नहीं। आपको वकालत करनी है और सारी प्रक्रिया से आप गुजर चुके हैं, बस प्रैक्टिस करना शुरू करना है बस, है ना? चलिए अच्छी बात है।
1: ट्रांसफर यहाँ से करवा लें तब सोचे। अब यहाँ सर इंटीरियर है, बहुत मतलब दिक्कत होती है ड्यूटी।
0: मनकापुर से आगे रेहरा वजवार पड़ता है ना?
1: जी जी, मनकापुर के आगे पड़ता है।
0: जी
1: जी जी,
0: हमारा भी एक बार जाना हुआ था। खैर, तो अमित जी हमने गाना पहुंचा दिया है आप तक, लता मंगेशकर और शशि कपूर महेंद्र कपूर की आवाज में। फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर से। फिर फोन करिएगा, फिर बातें

0: गर्मी का कहर बढ़ रहा है और इसके साथ ही खतरा बढ़ रहा है लू का। लेकिन घबराएं नहीं, बस थोड़ी सी सावधानी बरतें।
1: जब भी बाहर निकलें, कुछ खा पी कर निकलें, साथ में पानी की बोतल जरूर रखें।
0: और हाँ, हल्के रंग के सूती कपड़े पहने, सिर को गमछे, टोपी या दुपट्टे से ढककर ही बाहर कदम रखें।
1: चक्कर आए, सिर में तेज दर्द हो या बहुत कमजोरी लगे तो इसे मामूली थकान न समझें, ये लू के लक्षण हो सकते हैं।
0: तुरंत छायादार जगह पर जाएं, ORS या नींबू पानी का घोल पिएं और नजदीकी डॉक्टर से सलाह लें।
1: याद रखिए, आपकी सतर्कता ही आपको इस तपती गर्मी से सुरक्षित रख सकती है।
0: खुद भी बचें और दूसरों को भी जागरूक करें।

0: दीवाने।
1: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
0: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए। मुझे वो दुकान भी मालूम है, उसने जहाँ से खरीदा था।
2: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
3: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाए वहाँ से सामान?
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
3: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
5: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
6: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
7: सुनत हूँ सखी, सुनत हूँ कार्यक्रम अंगनामा होए वाला है का खास?
8: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुनत है। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
7: हाँ, जहाँ ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कई सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर।
8: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मन पसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
9: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
10: जी हाँ दोस्तों, अगर हमारी सोच सकारात्मक हो तो मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं, और उसी सोच का नतीजा यह है कि लगातार कोशिश करते रहने के बावजूद, देखिए हमारे एक श्रोता लाइन पर आ ही गए, और वो कौन है अपना नाम खुद ही बता देंगे। हेलो।
11: हाँ सर नमस्ते।
10: जी नमस्कार, अपना नाम बता दीजिए।
11: अर्जुन कुमार सोनकर, छोटा रमना देवकाली रोड, अयोध्या सर।
10: जी कुछ देर पहले आपकी कॉल लगी थी और आपका
11: सर,
10: गाना
11: सर,
10: भी
11: बहुत तकलीफ हुई।
10: हाँ, आपकी आपका गाना निकाल लिया था हमने, फिलहाल कॉल ड्रॉप हुई और पुनः आप कोशिश करते रहे, फिर लग गई आपकी कॉल। तो अर्जुन जी, गाना कौन सा सुनेंगे आज?
11: फिल्म काला पत्थर का सर।
10: काला पत्थर का कौन सा गाना सुना दें?
11: काला पत्थर का कोई सा भी अच्छा सा गाना सुना दीजिए, सब तो अच्छे हैं।
10: काला पत्थर फिल्म में गाने सारे अच्छे हैं, और ये एक गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में है।
11: जी हाँ, बहुत अच्छे गीत है,
10: बहुत प्यारा गीत है, हमें लगता है कि सुनने वालों को भी पसंद आएगा। तो अर्जुन जी,
11: आपसे सबको पसंद है?
10: नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
11: अरे नहीं सर,
10: शुक्रिया इसके लिए। फिलहाल देखिए, ये गाना हमने लोगों तक पहुंचा दिया है, और
11: मेरे एक मित्र है बहुत खास सर।
10: जी
11: अशोक कुमार सोनकर सदर बाजार में रहते हैं सर।
10: हाँ हाँ, आप अक्सर उनका नाम लेते हैं।
11: हाँ, अशोक कुमार सोनकर है, सदर बाजार में रहते हैं।
10: तो उनको ये गाना
11: कह रहे थे एक बार मेरा भी नाम ले लिया करो। ठीक है भाई।
10: हाँ, वो तो उनसे कहिए, कोशिश वो भी करे ना।
11: कोशिश करते हैं सर, लेकिन नहीं हो पाता।
10: नहीं हो पाता, नहीं वो कोशिश करते ही नहीं है। आपने कोशिश किया, देखिए आपकी कॉल कल लगी थी कट गई, आज भी लगी कट गई, लेकिन फिर भी कॉल आपकी लगी गई।
11: हाँ,
10: तो कोशिश करते रहिए, जरूर लगेगी।
11: कोशिश करते रहो, लग जाएगी।
10: जी
11: हाँ सर।
10: तो ठीक है अर्जुन जी, आपकी पसंद का गाना हमने आप तक पहुंचा दिया है, फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
11: थैंक यू सर, धन्यवाद।
12: तेरी मस्ती के घेरे।
10: दोस्तों हमारे पास, जी हाँ दोस्तों, केवल 7 मिनट

0: चलिए दोस्तों, हमारे पास शेष 5 मिनट बचा है और देखते हैं कॉलर अगर आ जाते हैं इनसे तो बातें कर लेते हैं। हेलो
1: हेलो,
0: थोड़ा तेज बोलिए।
1: आवाज नहीं आ रही क्या?
0: हमें आवाज मिल रही है, आप बोलते रहिए लगातार।
1: हाँ तो ये बताएं, हाँ, नाम फिल्म का
0: हाँ। कौन सा गाना?
1: चिट्ठी आई है।
0: इतनी मरियल आवाज में आप बात कर रहे हैं जैसे लगता है ऐसे ही बोलते हैं क्या हमेशा?
1: हेलो,
0: हाँ हम कह रहे हैं ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही बातचीत करते हैं आप?
1: नहीं, आवाज नहीं जा रही है।
0: चलिए सुनिए अपनी पसंद का गाना।

0: दोस्तों एक कॉल हमारे पास आई थी बीकापुर से सुमन की, फिलहाल तो वो कॉल कट गई और एक कॉल फिर हमारे पास आई है, देखते हैं बात हो जाए तो अच्छी बात है। हेलो
1: जी सर।
0: जी आपका शुभ नाम?
1: जी अंशु नाम है सर।
0: अंशु आप रेडियो सुनती रहती हैं?
1: जी सुनते रहते, एक हाथ में अभी सुन, अभी एक हाथ से मोबाइल का आपका गाना सुन रहे थे, एक हाथ से कॉल लगा रहे थे।
0: इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कोशिश किया है, चलिए अच्छी बात है और अंततः आपकी कॉल लगी गई।
1: जी
0: हाँ, तो अंशु जी क्या करते हैं आप?

0: सर घर में ही रहते हैं, घर का काम वाम करते रहते हैं।
1: अच्छा, तो रेडियो तो आप इसके मतलब बराबर सुनती ही रहती होंगी।
0: जी सर, सर हम बहुत दिन से सुनते, जब मेरी शादी भी नहीं थी उससे पहले से सुनते थे आपकी का गाना वाला।
1: आपकी आवाज बहुत अच्छी है रेडियो के लिए।
0: जी सर।
1: हाँ, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी आ रही है और ऐसी आवाज़ रेडियो पर जब आती है तो बातचीत करने में बड़ा मज़ा आता है।
0: जी सर।
1: हाँ, लेकिन दुर्भाग्य है कि समय हमारे पास नहीं बच रहा है, तो अंशु जी फिर फ़ोन करिएगा, आपसे बातें होंगी और हमें खेद है कि हम आपकी पसंद का गाना भी नहीं सुनवा पा रहे हैं, तो फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अंशु जी। जी शुक्रिया फ़ोन करने के लिए।
0: जी सर, हम गाना सुना दे आपको, फिर आप जब बात करिएगा तो हमको सुनाइएगा फिर गाना मेरी पसंद का।
1: जी जी जी जी बिल्कुल। तो श्रोताओं, हमारे कार्यक्रम का समय फिलहाल समाप्त हो गया है और हमें इस कार्यक्रम को तकनीकी सहयोग दिया राजकुमार मौर्य जी ने और आपका दोस्त गिरिजेश निषाद अब चाहता है इजाजत। अभी आप सुन रहे थे सजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो अयोध्या। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है और अब आपको लिए चलते हैं अपने मुंबई केंद्र, सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

विविध भारती, आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत में। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपके दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: दोस्तों आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के एक कार्यक्रम जिसे हमारे मुंबई केंद्र से प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचारों का बुलेटिन प्रसारित किया जाएगा, प्रतीक्षा करें।
1: मन की बात।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमीनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमीनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक बंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमीनी की मौजूदगी में कोको डीमर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमीनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यनाथ, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने वाराणसी से भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रोत्साहन और संदेश के लिए आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साझा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन केंद्रों को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस शुभारंभ को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल की शुरुआत वाराणसी को स्पोक एयरपोर्ट, दिल्ली को हब एयरपोर्ट और लंदन को अंतिम गंतव्य के रूप में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज

प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसा क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया।